0: ସବୁଠି ଈଶ୍ୱର ବିରାଜମାନ ଏବଂ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କରି ସୃଷ୍ଟି। ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ନାହିଁ। ସୃଷ୍ଟିରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଯେ ଯେମିତି ଭାବନା ଆଣେ ସେ ସେହି ପ୍ରକାର ଫଳ ପାଏ। ଆକାଶବାଣୀ ବାରିପଦା ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଗଡ଼ିରେ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳ
1: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। श्री गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसकी घरेलू मांग पर आधारित अर्थव्यवस्था 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करती है। श्री गोयल ने कहा कि भारत की विनिर्माण क्षमता घरेलू और वैश्विक मांग की पूर्ति कर रही है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नीदरलैंड के कृषि मंत्री सिल्वियो एरकेंस के साथ द्विपक्षीय वार्ता में दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग पर चर्चा की। बैठक में दोनों देशों के बीच कृषि के क्षेत्र में जारी सहयोग की समीक्षा के साथ ही आपसी सहयोग के नए क्षेत्रों की खोज करके कृषि के क्षेत्र में सहयोग को मजबूती प्रदान करने पर बल दिया गया। दोनों पक्षों ने आधुनिक प्रौद्योगिकी, नवाचार और ज्ञान के आदान प्रदान के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाने के आपसी संकल्प को दोहराया। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दोनों पक्षों ने कृषि एवं बागवानी के क्षेत्रों में 25 उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना की प्रगति पर चर्चा की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोबोटिक्स चिकित्सा के विभिन्न क्षेत्रों में जांच, उपचार और चिकित्सा देखभाल का महत्वपूर्ण साधन बनने जा रहा है। डॉक्टर सिंह ने सोसाइटी ऑफ रोबोटिक सर्जरी SRS के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि रोबोटिक्स AI और नैनो विज्ञान से सटीक और व्यक्ति की जरूरतों के अनुरूप स्वास्थ्य सेवाओं को नया तंत्र विकसित में होगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में रोबोटिक्स चिकित्सा, रोबोटिक एंड्रोक्रोनोलॉजी और रोबोटिक कार्डियोलॉजी जैसे क्षेत्र उभर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक बागवानी केंद्र से रायलसीमा के किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कल आंध्र प्रदेश के अन्नमैया जिले में वैश्विक बागवानी केंद्र और भारतीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना रखी। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर आंध्र प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने किसानों के लिए बेहतर पानी, आधुनिक तकनीक और अच्छी सुविधाओं की जरूरत बताई। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय कृषि विद्यालय किसानों को नई तकनीक और खेती के बेहतर तरीकों की जानकारी देगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने केंद्र सरकार को बाल देखभाल अवकाश संबंधी सिफारिशें सौंप दी हैं। इनमें बाल देखभाल अवकाश को निजी क्षेत्र में लिंग भेद रहित बनाना, अनिवार्य सवैतनिक पितृत्व अवकाश और वर्ष 2030 तक 5 लाख शिशु देखभाल केंद्रों की स्थापना करना शामिल है। आयोग ने ये सिफारिशें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय को सौंपी हैं। आयोग ने अनौपचारिक गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को भी मातृत्व और बाल देखभाल लाभ प्रदान करने की सिफारिश की है। प्रधानमंत्री को मिले उपहारों की ई नीलामी का 8वां चरण 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि इस चरण में दिल्ली के विभिन्न पहलुओं को दिखाने वाली 30 यादगार स्मृति चिन्ह शामिल हैं। इन 30 स्मृति चिन्हों में 9 फोटो फ्रेम, 9 यादगार वस्तुएं और 6 मूर्तियां तथा प्रतिमाएं शामिल हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज गोयल ने बताया कि नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित खादी भवन सहित पूरे देश में विशेष छूट अभियान शुरू किया गया है। ये छूट 16 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी। इस दौरान खादी उत्पादों पर 20% और ग्रामोद्योग उत्पादों पर 10% की छूट मिलेगी। जापान में एशियाई खेलों में कल भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदक जीते। इनमें महिला

हॉकी, कुश्ती और तीरंदाजी में एक एक स्वर्ण के साथ मुक्केबाजी में तीन स्वर्ण पदक शामिल हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर एशियाई खेलों में 44 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य पदक सहित 76 पदक के साथ पांचवें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी कटक समय वर्तमान सकाल 6:00 बजे 55 मिनिट हो जाउ छी। संस्कृत रे संवाद रिले करी प्रचार करूछु आकाशवाणी दिल्ली रो।
1: एएम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ह्यः भारतीय विमान चालकेन कैप्टन स्मित मछार इत्यनेन सह दूरभाष माध्यमेन संवादं कृतवान्। सह चालकेन कृतस्य आक्रमणस्य प्रतिरोधं कुर्वता तेन फ्लाई दुबई विमाने दुबईतः तल अवीव नगरं प्रति गच्छताम् 80+ यात्रिणां प्राणाः रक्षिताः। कैप्टन मछार इत्यनेन प्रधानमंत्रिणे स्वस्य अनुभवस्य विस्तृत विवरणं प्रदत्तम्। सममेव घटनाक्रमे तस्मै साहस कुतः प्राप्तमिति कथितम्। प्रधानमंत्री तस्य साहसं प्रशंसितवान्, तस्य शीघ्र स्वास्थ्य लाभाय शुभकामनाः च अयच्छत्। श्रीमोदी अवदत् यत् संपूर्ण राष्ट्रं तस्य स्वास्थ्य लाभाय प्रार्थनां करोति। प्रधानमंत्री अवोचत् यत् कैप्टन स्मितः साहसेन यथा समयं उचित निर्णयेन क्षमताया धैर्येण च जनानां प्राणान् अरक्षत्। प्रधानमंत्री स्मितस्य साहसस्य प्रशंसां कुर्वन् अवदत् यत् देशः गर्वेण वक्तुं शक्नोति यत् भारतीयाः प्राणान् रक्षितुं स्वजीवनं संकटे स्थापयितुं सज्जाः भवन्ति। वार्तालापस्य समये भावुकः स्मितः अवदत् यत् प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तस्य सर्वाधिकः आदर्शः अस्ति, अथ च प्रधानमंत्रिणः दूरभाष संवादं प्रति गौरवानुभूतिः प्रकटिता।
2: आपकी हिम्मत ने, आपके धैर्य ने और आपकी सूझबूझ ने यानी फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में इतने निर्णय कर लिए आपने और इतने लोगों की जान बचाई और आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हम हिंदुस्तानी जान लेने वाले लोग नहीं है, जान बचाने वाले लोग। और आपने अपने शरीर पे इतना बड़ा घाव हुआ, आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूं। मित्र, अब मैं आपसे सुनना चाहूंगा।
3: मेरे लिए मैं सर से भी बोल रहा था, आप मेरे सबसे बड़े एडवोकेट हैं और मैं कौन से कॉल करके मेरी उपमा जाहिर कर रहे हैं, मुझे बहुत गर्व फील हो रहा है।
1: वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः अमेरिका देशस्य मिल्वोकी नगरे G20 वाणिज्य मंत्रीणां सम्मेलनस्य समापन दिने वैश्विक व्यापार विकृतिभ्यः निवारणार्थं WTO इत्यस्य अनुरूपं कार्याचरणाय आह्वानम् अकरोत्। संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमतायाः उत्पादनस्य च विषये प्रवदन् श्रीगोयलः अवदत् यत् भारतं विश्वस्य द्रुतगत्या वर्धमाना बृहत् अर्थव्यवस्था अस्ति, यत्र देशीय याचनाधारित अर्थव्यवस्था 4.1 अरब जनानां सेवां करोति। सः अवदत् यत् भारतस्य विनिर्माण क्षमतया तस्य देशीय वैश्विक आवश्यकतां पूरयति, तथा च भारतस्य G20 अध्यक्षेन अभिधीयमानेषु क्षेत्रेषु संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता नास्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
4: करस्पर्शेन सद्यः वार्ता प्राप्तये एक्स् पटले HAIR न्यूज अलर्ट्स् इत्यनुसरन्तु। आकाशवाणी समाचार इति व्हाट्सएप वाहिन्या च सह संयुज्यन्ताम्।
1: केन्द्रीय पत्तन नौवहन जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवालः ह्यः भारतीय नौवहन निगमं भारतं स्वावलंबी कर्तुं नौकायान निर्माणस्य समुद्रीय क्षमतायाः च वैश्विक स्पर्धात्मक

0: कलकतायां च प्रमुखां भूमिकां निर्वोढुम् आह्वयत्। पंजाब राज्य सीमा सुरक्षा बलेन ह्यः तरन तारण क्षेत्रे द्वौ पाकिस्तानी अवैधजनौ मारितम्। बीएसएफ इत्यस्यानुसारं ते अवैधरूपेण सीमायां प्रति आगतवन्तः। एशियन गेम्स क्रीडा महाकुंभे ह्यः भारतीय मुष्टामुष्टि क्रीडकैः मल्लस्पर्धिभिः धनुर्धरैः च स्वर्ण पदकानि षट् पदकानि विजितानि इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी कटक शुणंतु आजिर
2: संस्कृतरे संवाद रिले करि प्रचार कलु आकाशवाणी दिल्लीरु आकाशवाणी बारिपदा। श्रोताबंधु वर्तमान शुणंतु आजिर कार्यक्रम संपर्कित सूचना। सकाळ 7:25 प्रचार करिबो सांतळी अखला कार्यक्रम 8:15 एवं 8:45 प्रचारित हेबो कार्यक्रम गीतांजलि। दिन 12:00 झुमर संगीत सुनि परिबे। परिवेशन करिसेंति शिल्पी विदेशी महंत एवं साथी। आमर आजिर द्वितीय तथा सांध्य अधिवेशन रे संध्या 6:00 भक्ति गीत, 6:15 सुगम संगीत कार्यक्रम, संध्या 6:30 सूचना एवं संवाद कार्यक्रम, राति 7:00 प्रचारित हेबो आदिवासी संगीत कार्यक्रम रे मुंडारी गीत, 7:00 राति 8:00 हिंदी कथाचित्रर गीत, 8:30 विज्ञान वार्ता, राति 8:40 प्रचार करिबो गीत अतीत, 10:20 सुगम संगीत कार्यक्रम, राति 10:30 प्रचार करिबो एकक हिंदी कथाचित्रर गीत। श्रोताबंधु एथिला आज आम केन्द्ररु प्रचार करा जिबाकु थिबा कार्यक्रम संपर्कित सूचना आकाशवाणी मारिपदा। परवर्ती कार्यक्रम रिलीज करी सुनौछु आकाशवाणी कटक केन्द्ररु किछि क्षण मध्यरे।

0: आकाशवाणी कटक समय सकाळ 7:15 शुणंतु ओडिया रे संवाद।
1: आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती सत्यव्रत बेहुरा। विश्वरे शांति प्रतिष्ठा दिगरे प्रधानमंत्री मोदी उद्यम को रूस राष्ट्रपति प्रशंसा। विश्व जोगाण श्रृंखल भारत एक विश्वसनीय सहयोगी होइपारिछि कहिले केन्द्र वाणिज्य और शिल्प मंत्री। कृषि क्षेत्र समेत विभिन्न क्षेत्र में सहयोग वृद्धि निमन्ते नेदरलैंड्स प्रतिपक्षों सह केन्द्र कृषि मंत्री आलोचना एवं एशिय क्रीड़ा प्रतियोगिता रे 6 स्वर्ण पदक सह तालिकार पंचम स्थान रे भारत। 44 वर्ष परे प्रथम थर लगी भारतीय महिला हॉकी दलर स्वर्ण पदक हासिल। शुभेच्छा जणाइले राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। विश्वरे शांति प्रतिष्ठा दिगरे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी निरंतर प्रचेष्टा को रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रशंसा करिछन्ति। मस्कोरे आयोजित एक समारोह रे उद्बोधन दे श्री पुतिन एहि मतव्यक्त करिछन्ति। पुतिन बिबृति प्रत्येक भारतीयों लगी गर्वर विषय बोली स्वराष्ट्रमंत्री अमित शाह कहिछन्ति। श्री शाह सामाजिक गणमाध्यम पोस्टरे कहिछन्ति प्रधानमंत्री मोदी नेतृत्व में भारत एवं विश्व शांति प्रक्रिया एक विश्वस्त मुखपात्र पलटिछि। गत किछि वर्ष धरी समग्र विश्व में युद्ध और द्वंद्व भली स्थिति उपजिथिबा बेले एसबुर समाधान युद्ध क्षेत्र नुहे बरं आलोचना और कूटनीति बोली श्री शाह कहिछन्ति। युद्ध हेउ बा प्राकृतिक विपर्य प्रधानमंत्री मोदी नेतृत्व में भारत अन्य राष्ट्र को सर्वदा साहाय्य और सहायता जोगाई आसी। एहा भारतर पुरातन प्रथा वसुधैव कुटुंबकम को एक नूतन परिचय प्रदान करिवारे सफल होइछि। एही सबु कारण जोगु विश्व सम्मुखीन होउथिबा समस्या प्रसंगरे भारतर मतामत तथा प्रधानमंत्री मोदी परामर्श सर्वदा गुरुत्व बहन करिथाय बोली श्री शाह कहिछन्ति। G20 वाणिज्य मंत्री सम्मेलन में भारत विश्व वाणिज्य संगठन नीति अनुजाई विश्व वाणिज्यिक प्रतिबंधक गुड़िक दूर करने लगी आह्वान देछि। वाणिज्य और शिल्प मंत्री पीयूष गोयल यार अत्यधिक सामर्थ्य एवं उत्पादन वृद्धि नहीं कहते वाणिज्य श्रृंखल क्षेत्र में देखादेवा समस्या नहीं भारत उद्वेग प्रकाश कर विश्व वाणिज्य संगठन मध्यम यार न्यायिक समीक्षा पर आह्वान दे। अमेरिका रे अनुष्ठित G20 वाणिज्य मंत्री सम्मेलन में श्री गोयल कहते शिल्प सामर्थ्य केवल एक समस्या नुहे भौगोलिक क्षेत्र में समस्या रही। से कहते भारत विश्वर द्रुततम अभिवृद्धिशील अर्थनीति परिणत हो 1.4 बिलियन जनसंख्या विशिष्ट अर्थनीतिर परिचालना क्षेत्र में घर चाहिदा पूरण करने क्षेत्र में सफल हो। श्री गोयल कहते विश्व जोगाण श्रृंखल क्षेत्र में भारत एक विश्वसनीय सहयोगी भाव निजक प्रमाणित करदिल्ली चली द्विवार्षिक नौसेना कमांडर सम्मेलन द्वितीय संस्करण शेष हो। गत सेप्टेम्बर 29 चलित मास 1 तारीख पर्यंत अनुष्ठित सम्मेलन में प्रस्तुति परिवहन रक्षणाबेक्षण तालीम एवं मानव संबल परिचालना आदि प्रसंग उपरे विस्तृत आलोचना होता। एथिरे विकसित विश्व सुरक्षा परिवेश एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता वृद्धि पाउथिबा भूमिका उपरे ध्यान केन्द्रित करा जायथिला। केन्द्र इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी राष्ट्रमंत्री जितिन प्रसाद सेमिकंडक्टर कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं क्वांटम प्रजुक्ति विद्यार व्यवहार को आहुरी दृढ़ करिबा उपरे गुरुत्व देथिले। प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारतीय नौसेनार भूमिका उपर गुरुत्वारोप कर देश में 75% रु अधिक स्वदेशी प्रतिरक्षा सामग्री व्यवहार होता कहते। सम्मेलन में प्रतिरक्षा मुख्य जनरल NS राजा सुब्रमणि सशस्त्र बाहिनी मध्यरे अधिक समन्वय उपरे गुरुत्वारोप करते। केन्द्र कृषि और कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान तांको नेदरलैंड्स प्रतिपक्ष सिल्वियो एरकेन्स को सह नुआदिल्ली रे विभिन्न द्विपाक्षिक प्रसंग नहीं आलोचना करिछन्ति। बैठक में कृषि क्षेत्र में सहयोग समेत उभय देश मध्य नूतन क्षेत्र में सहयोग वृद्धि निमन्ते आलोचना होइछि। उभय देश आधुनिक प्रजुक्ति विद्या नव

0: मोहिंग गात ए मोहिंग गात ओ काय नामगो
1: ये दोन का मांडराव कना है
0: दोमे बो आसुन कान दो मसे काटी इसकीर ताना कतिंग में
1: इन दो यहाँ निस्किर के माँ बन निस्किर दाढ़ी आमा इन दो
0: तबे डाक्टर ओड़ा खोन के रान ताना गुई में दो
1: डॉक्टर नहीं डॉक्टर इन्हा डॉक्टर बनो तिन्हा बुढ़िया मामा ताको ठेनिंग चला कना दिशम पता नेल नेल तिंग हिरे गुको लगी
0: इन बेसलेन गेसे उन दो बना हो

0: ଆକାଶବାଣୀ ବାରିପଦା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରିଲେ କରି ଶୁଣାଉଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत ने व्यापार बाधाओं, डंपिंग और अनुचित मूल्य निर्धारण के समाधान के लिए विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप उपायों की मांग की। अमेरिका में तेल की कीमत में रिकॉर्ड बढ़त के बाद G7 देशों का 10 करोड़ बैरल डीजल और कच्चा तेल जारी करने का फैसला। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण का स्वागत किया, कहा इससे सौर ऊर्जा क्षेत्र में भारत की वैश्विक नेतृत्व की स्थिति मजबूत होगी। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज उज्जैन में 255 करोड़ रुपए के डेयरी संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। प्रतिदिन 3 लाख लीटर दूध प्रसंस्करण की क्षमता। और जापान एशियाई खेलों में भारत की कुमकुम मोहुद ने महिला रिकर्व तीरंदाजी का स्वर्ण पदक जीता। पुरुष हॉकी के फाइनल में आज भारत का सामना मलेशिया से। भारत ने व्यापार बाधाओं, डंपिंग और अनुचित मूल्य निर्धारण के समाधान के लिए विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप उपायों की मांग की है। अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर श्री पीयूष गोयल ने कहा कि कुछ देशों में सरकार की मदद से जरूरत से ज्यादा उत्पादन हो सकता है। इससे दूसरे देशों के बाजारों में सामान बहुत कम कीमत पर बेचने के कारण डंपिंग की समस्या उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए WTO के नियमों के तहत एंटी डंपिंग शुल्क और अन्य जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि देश 140 करोड़ लोगों की जरूरत को पूरा करते हुए भरोसेमंद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बन गया है। एक रिपोर्ट।
2: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि G20 देशों के साथ भारत का व्यापार पारदर्शी, भेदभाव रहित और नियम आधारित व्यवस्था पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का प्रावधान इस व्यवस्था की महत्वपूर्ण गारंटी है, जिसके अंतर्गत छोटे और बड़े सभी कारोबारियों के लिए समान शर्तें लागू होती हैं। जबरन मजदूरी को समाप्त करने के विषय पर श्री गोयल ने कहा कि जबरन श्रम के उन्मूलन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पूर्ण और बिना शर्त है। उन्होंने विश्व व्यापार संगठन WTO को केंद्र में रखते हुए निष्पक्ष, समान, भेदभाव रहित और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने विकासशील देशों को विकास और खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी नीतिगत गुंजाइश देने तथा सर्वसम्मति से फैसले लेने की व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया। इस बीच श्री गोयल ने ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया सहित कई देशों के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। आरजू के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नीदरलैंड की कृषि मंत्री सिल्वियो एरकेंस के साथ दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग पर चर्चा की है। दोनों देशों ने आधुनिक प्रौद्योगिकी, नवाचार और उत्पादकता बढ़ाने का आपसी संकल्प दोहराया। कृषि मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने कृषि और बागवानी क्षेत्रों में 25 उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना की प्रगति पर चर्चा की। दोनों देश एक प्रभावी और स्पष्ट रूपरेखा तैयार करने और इसके कार्यान्वयन के लिए सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों को रेखांकित करने वाली कार्ययोजना के माध्यम से बीज के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर सहमत हुए हैं। कृषि नवाचार के क्षेत्र में दोनों देश महत्वपूर्ण प्रगति और विकास को मान्यता देते हुए सहयोग के संभावित क्षेत्रों की पहचान करने पर भी सहमत हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक बागवानी केंद्र से रायलसीमा के किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कल आंध्र प्रदेश के अन्नमया जिले में वैश्विक बागवानी केंद्र और भारतीय कृषि विद्यालय की आधारशिला रखी। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर आंध्र प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा दे रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय कृषि विद्यालय किसानों को नई तकनीक और खेती के बेहतर तरीकों की जानकारी देगा। वैश्विक बागवानी केंद्र में 10 जिले शामिल होंगे। यहां आम, केला, टमाटर और अनार जैसी फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा। इस परियोजना को 3 चरण में पूरा किया जाएगा। इसमें करीब 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। G7 देशों ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमत पर नियंत्रण के लिए अगले 4 महीने में 10 करोड़ बैलर कच्चा तेल और डीजल जारी करने का निर्णय लिया है। अमेरिका में डीजल की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। अमेरिका में नवंबर में मध्यावधि चुनाव के कारण राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार पर दबाव बढ़ गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यूरोपीय देश अपने तेल भंडार से

0: बड़ी मात्रा में डीजल और कच्चा तेल जारी करेंगे।
1: Earlier I spoke with members of the G7 nations and I'm pleased to report that we have reached an agreement for Europe to release massive amounts of diesel fuel from their heavily stocked reserves and that's starting immediately.
0: ये फैसला डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच हुई बातचीत के बाद लिया गया। फ्रांस के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी इस पूरी प्रक्रिया का समन्वय करेगी और ईरान से जुड़े 8 महीने से चल रहे युद्ध के बीच अमेरिका और दूसरे देशों में ईंधन की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भारत में हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण को मंजूरी मिलने का स्वागत किया है। केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए 1,86,405 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसमें 54,082 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता शामिल है। एक रिपोर्ट।
2: हरित ऊर्जा गलियारा के तीसरे चरण का उद्देश्य बिजली के ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत करना और बैटरी स्टोरेज की सुविधा बढ़ाना है। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन कार्यकारी सचिव साइमन स्टील ने कहा कि इस योजना से भारत अपनी बढ़ती अक्षय ऊर्जा क्षमता का बेहतर इस्तेमाल कर सकेगा। इससे देश की बढ़ती बिजली जरूरत पूरी करने में मदद मिलेगी। श्री साइमन ने कहा कि मजबूत बिजली नेटवर्क और बैटरी स्टोरेज से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी तथा रोजगार के अवसर सृजित होंगे। हरित ऊर्जा गलियारा के तीसरे चरण के अंतर्गत राज्यों के भीतर बिजली पहुंचाने की व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज उज्जैन में 255 करोड़ रुपए के डेयरी संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। इस डेयरी संयंत्र की प्रसंस्करण की क्षमता प्रतिदिन 3 लाख लीटर दूध की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दूध उत्पादन और डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश में गौ पालक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है।
4: सम्मेलन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह पशुपालन के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाली गोपालक दीदियों को सम्मानित करेंगे और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना के हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र वितरित करेंगे। सम्मेलन में 35,000 से ज्यादा गोपालक और दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े सदस्य शामिल होंगे। भोपाल के अलावा सीहोर, बैतूल, राजगढ़, हरदा, गुना, अशोकनगर, शाजापुर, विदिशा समेत कई जिलों से गोपालक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन में भोपाल और इंदौर दुग्ध संघ से जुड़े दूध उत्पादकों को बोनस राशि भी दी जाएगी। इस कार्यक्रम में 255 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले डेयरी प्लांट और भोपाल में मिल्क प्रोडक्ट से जुड़ी सुविधा समेत कई परियोजनाओं की शुरुआत भी होगी। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात ने आज 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। मन की बात का पहला कार्यक्रम 3 अक्टूबर 2014 को विजयादशमी के दिन प्रसारित हुआ था। हाल ही में प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित किया। मन की बात के जरिए प्रधानमंत्री देश के लोगों से सीधा संवाद करते हैं। ये कार्यक्रम देश के अलग अलग हिस्सों की उपलब्धियों और सामाजिक बदलाव की कहानियों को सामने लाता है। मन की बात ने कई सामाजिक मुद्दों को लोगों तक पहुंचाने और उन्हें जन भागीदारी से जोड़ने में भी भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम बताएंगे कि कैसे ग्रामीण भारत की महिलाएं अब खेती के पारंपरिक काम तक सीमित नहीं हैं, वे आधुनिक कृषि तकनीक के संचालन और सेवाएं देने के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। इस बदलाव में नमो ड्रोन दीदी योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस बारे में सुनते ही रिपोर्ट।
5: महिलाओं को कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीक से जोड़ने के उद्देश्य से इस योजना को नवंबर 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी दी गई। योजना के लिए वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक 1,261 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके तहत चयनित महिलाओं को कुल 15,000 कृषि ड्रोन उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना का उद्देश्य महिलाओं को ड्रोन सेवा प्रदाता के रूप में

0: जीविका के नए अवसर देना है। ये महिलाएं किसानों को ड्रोन के माध्यम से तरल उर्वरकों और कीटनाशकों के छिड़काव की सेवाएं किराए पर उपलब्ध करा रही हैं। इससे खेती किसानी के कामों में दक्षता बढ़ाने और परिचालन लागत कम करने में सहायता मिल रही है। योजना के तहत चयनित महिलाओं को ड्रोन और उपकरणों की लागत का 80% तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। शेष राशि के लिए ऋण सुविधा का भी प्रावधान है। ड्रोन पैकेज में प्रशिक्षण भी शामिल है। उर्वरक कंपनियों ने वर्ष 2023-24 में अपने संसाधनों से महिलाओं को 1094 ड्रोन वितरित किए। इनमें से 500 ड्रोन नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत उपलब्ध कराए गए। राजस्थान में 50 महिलाओं को ड्रोन उपलब्ध कराए गए हैं। सवाईमाधोपुर जिले की नमो ड्रोन दीदी पूजा ने बताया कि इस ट्रेनिंग से उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है।
1: मेरा नाम पूजा जागम है, ग्राम पंचायत शामपुरा, डिस्ट्रिक्ट सवाईमाधोपुर, राजस्थान से नमो ड्रोन दीदी बात कर रही हूँ। मेरे को ड्रोन मार्च 2024 में अप्रूव हो गया था, जब से मैं ड्रोन उड़ा रही हूँ। और मैंने गुड़गांव में 15 दिन की ट्रेनिंग ली थी, वहाँ से मैंने ड्रोन चलाना सीख कर मैंने अपने गांव में मुझे गवर्नमेंट की तरफ से ड्रोन मिला हुआ है। उससे मैंने गेहूँ में, चावल में, इनमें सब में कीटनाशक छिड़काव किया है और उससे मैंने लगभग 40-45 हजार रूपए तक की इनकम कर ली।
0: कुल मिलाकर नमो ड्रोन दीदी योजना खेतों में तकनीक के इस्तेमाल के साथ साथ ग्रामीण महिलाओं को नए कौशल, नई जिम्मेदारी और आय के नए अवसर उपलब्ध करा रही है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
2: और अब एशियाई खेलों की खबरों के साथ हैं चंद्रशेखर शर्मा।
3: जापान एशियाई खेलों में आज भारत की कुमकुम मोहोद ने महिला रिकर्व तीरंदाजी का स्वर्ण पदक जीत लिया है। पुरुष हॉकी के फाइनल में आज भारत का सामना मलेशिया से होगा। कल भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदक जीते। इनमें मुक्केबाजी में 3, महिला हॉकी, कुश्ती और तीरंदाजी में 1-1 स्वर्ण पदक शामिल हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर एशियाई खेलों में 44 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही भारत ने 2028 में लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पदक तालिका में भारत 17 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य सहित 77 पदक के साथ 5वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी है।
2: मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में आज तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
4: धन्यवाद मुकेश। फ्लाई दुबई विमान के कैप्टन स्मिथ मच्छार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी से बोले स्मिथ, मैंने ठान लिया था कि इस विमान में किसी को मरने नहीं दूंगा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, दर्द में हनुमान चालीसा पढ़ते रहे कैप्टन स्मिथ, गिरते विमान के बीच लगाया आखिरी जोर। अमर उजाला का शीर्षक है, अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहा था, दूसरों को मरने नहीं दे रहा था। पत्र के अनुसार पीएम से स्मिथ बोले, आप मेरे आदर्श हैं। पंजाब केसरी की सुर्खी है, नए वोटरों के नाम जुड़ेंगे, छोटे मतदाता भी शामिल होंगे, राज्यों में विशेष अभियान चलेगा, बीएलओ घर घर जाकर करेंगे सत्यापन। हिंदुस्तान का शीर्षक, यूक्रेन युद्ध खत्म करने को भारत के पास सही समझ, व्लादिमीर पुतिन बोले, हर बार युद्ध खत्म करने का मुद्दा उठाते हैं मोदी। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, ट्रेड डील पर मोदी ट्रंप फिर करेंगे बात, अमरीकी प्रतिनिधि जेमिसन ग्रियर बोले, डील के मुद्दे पहचाने, समाधान पर काम जारी। जनसत्ता के अनुसार यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबेहा ने कहा कि युद्ध खत्म करने को भारत का प्रस्ताव सबसे बढ़िया। दैनिक भास्कर ने एक्सक्लूसिव खबर में दिया है, अफगान बॉर्डर पर 30 पोस्ट से भागी पाकिस्तान की सेना, अब वहां तालिबानी राज। खैबर पख्तूनख्वा सूबे में अफगान में हमले में और तेज। पत्र के अनुसार पाकिस्तान सैनिक खौफ के कारण अफगान बॉर्डर पोस्टिंग से बच रहे हैं। राजस्थान पत्रिका के अनुसार एनसीईआरटी पढ़ेगी सत्यमेव जयते और सेंगोल का इतिहास, सामाजिक विज्ञान पुस्तक का दूसरा भाग जारी, महात्मा गांधी के रामराज का जिक्र। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, एशियाई खेलों में गोल्डन सिक्स के साथ पदक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंचा भारत, स्वर्णिम शुक्रवार, हरियाणवी खिलाड़ी फिर दमदार।
2: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत ने व्यापार बाधाओं, डंपिंग और अनुचित मूल्य निर्धारण के समाधान के लिए विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप उपायों की मांग की। अमेरिका में तेल की कीमत में रिकॉर्ड बढ़त के बाद G7 देशों का 10 करोड़ बैरल डीजल और कच्चा तेल जारी करने का फैसला। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण का स्वागत किया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह उज्जैन में 255 करोड़ रुपए की डेयरी संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। और जापानी एशियाई खेलों में भारत की कुमकुम मोहोद ने महिला रिकर्व तीरंदाजी का स्वर्ण पदक जीता। पुरुष हॉकी के फाइनल में आज भारत का सामना

0: मलेशिया से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हिंदी रे संवाद रिले करी प्रचार कलु आकाशवाणी दिल्ली रो आकाशवाणी बारीपदा आरंभ करुछु गीतांजलि कार्यक्रम।

पीठ परिक्रमा। आज विषय रही षोल पूजार विशेषत्व। प्रयोजना प्रदीप्त श्रीचंदन। कार्यक्रम आकाशवाणी कटक केन्द्र द्वारा प्रस्तुत।

0: जेट समर्सिबल मनोब्लॉक आउ होंडा कंपनी रो जनरेटर पंप सेट पावर विडर घास कटा जंत्र पेट्रोल डीजेल किरोसिनी पंप सेट रे 10,000 पर्यंत एवं होंडा पावर विडर रे 30,000 पर्यंत सरकारी रियायती सहित जेट सब रकम सुविधा मिलुची
1: केठे मिलुची हेते सुविधा
2: जानि न किहो बारीपदार अति परिचित दुकान पोरा
3: ठिकणा होची मेसर्स बाबूलाल अगरवाला मेन ट्रैफिक स्क्वायर तिनीकुनिया छक बारीपदा
1: ताला जीबा ना की कहजो
2: चलो
4: चासी भाई और भोनी मानंक पाई जरूरी सूचना राज्यर समस्त पैक्स लैंप्स एवं खुचरा विक्रय केन्द्र गुड़ी करे यूरिया डीएपी एमओपी समेत समस्त प्रकार सार पर्याप्त परिमाण में महजूद रही राज्य में सारर कौन अभाव नहीं तेणु अजथा भयभीत न हो कि आगुआ अधिक सार महजूद न करी केवल फसल वर्तमान आवश्यकता अनुयायी सार क्रय करंतु एथिपाई निज आधार कार्ड देखाई पीओएस मेसीन मध्यम सरकारी धार्य मूल्य सार क्रय करंतु एवं निश्चित भाव रसीद संग्रह करंतु गुजबरे विश्वास करंतु नहीं सार कलाबजारी को रोकंतु मां माटीर सुरक्षा पाई जैविक सार प्रयोग करिबा पाई भूलंतु नहीं कृषि और कृषक सशक्तिकरण विभाग ओडिशा सरकार
5: स्वर्गीय अनुभूति प्रेम भाग्यरे थिले मिलिथाए प्रकृत प्रेम निच्छक प्रीति ईश्वरंक आशीष परे निच्छक प्रीति ईश्वरंक अनन्य उपहार परे

0: पद्मावत फिल्म का गीत आप सुन रहे थे श्रेया घोषाल स्वरूप खान की आवाजों में। एम टूरिस्ट के बोल थे संजय लीला भंसाली की तरफ थी।
1: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
2: किसका है ये तुमको इंतजार में होना।
1: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
3: अगर तुम मिल जाओ।
1: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
4: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
0: श्रोताओ, सुरबहार की तान सी है विविध भारती की परवाज और आज 3 अक्टूबर है विविध भारती की सालगिरह का जश्न हम मना रहे हैं। दिन भर है कार्यक्रम, तो रहिए विविध भारती के संग और सुनते रहिए हमारे विशेष कार्यक्रम। और आपको बता दें कि बोहेमिया चेकोस्लोवाकिया में अप्रैल 1907 यानी 1907 में जन्मे वाल्टर कॉफमैन, जो एक संगीत शास्त्री संगीत शिक्षक के साथ साथ एक कंपोजर भी थे, कई देशों में गए और समय बिताया। 1935-1946 के बीच कॉफमैन भारत में रहे। फिल्म उद्योग बम्बई की एक कंपनी में संगीतकार रहे। कुछ समय बॉम्बे चैम्बर म्यूजिक सोसाइटी में बतौर म्यूजिक डायरेक्टर काम किया उन्होंने और 1946 तक ऑल इंडिया रेडियो बम्बई में डायरेक्टर ऑफ म्यूजिक बन गए। कॉफमैन ने आकाशवाणी की संकेत ध्वनि यानी धुन बनाई, जिसमें तानपुरा, वायलिन और वायोला है।

0: प्रेम रतन धन पायो, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे पलक मुछाल और साथियों की आवाजों में। इरशाद कामिल के बोल थे, हिमेश रेशमिया का संगीत था।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
3: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
1: तो आप सब जुड़िए, सुनिए दिन में 2:30 बजे से 4 बजे तक और शामिल होइए विविध भारती की सालगिरह के जश्न में।

सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है। और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला आनंद। तो सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव।

कुछ खास आवाज और इनके नाजो अंदाज से सजा है आज का हमारा ये विशेष कार्यक्रम जो 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह के जश्न के अवसर पर आप तक पहुंचेगा। रहिए विविध भारती के संग। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, श्रोताओं चित्रलोक कार्यक्रम में फिर हाजिर होते हैं।

विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। और विविध भारती की अगर बेशकीमती सिग्नेचर ट्यून की बात की जाए, यानी संकेत धुन की बात की जाए श्रोताओं, तो कुछ विद्वानों का मानना है कि ये ध्वनि ब्रह्मांड के गूंजते ओमकार नाद का स्वर है। वाल्टर कॉफमैन पश्चिमी क्लासिकल संगीत में दक्ष थे। 1957 में कॉफमैन स्थायी रूप से अमेरिका चले गए और इंडियाना यूनिवर्सिटी ब्लूमिंगटन के संगीत प्रोफेसर बन गए। उन्होंने नई संगीत शैलियों की रचना की। उनकी लिखी पुस्तक रागाज ऑफ नॉर्थ इंडिया भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक बेशकीमती किताब मानी जाती है। आकाशवाणी के विलक्षण सिग्नेचर ट्यून की दिव्यता अद्भुत है श्रोताओं। सचमुच कुछ चंपई रंग लिए हुए ये धुन जब सुबह बिखरती है तो नूर बरसाती है।

तेरे बिन फिल्म का ये गीत आप सुन रहे हैं वजीर फिल्म का ये गीत सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में विधु विनोद चोपड़ा की रचना शांतनु मोइत्रा की तर्ज है।

0: वजीर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे श्रोताओं, यही है आज के चित्रलोक कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। आंखों की सिलवटें कहती हैं उम्र की एक दहलीज पार कर आए हैं, लेकिन विविध भारती के आंगन से गीतों की वही झनकार अब भी आती है, तो दिल से यही दुआ निकलती है कि तू शाद रहे, तेरा आंगन शहनाइयों की गूंज और गीतों की मधुरतान से आबाद रहे। श्रोताओं, विविध भारती के प्रसारण को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए शुरू से ही आज तक प्रयास किया जाता रहा है, और इसमें जब आपका साथ होता है तो विविध भारती एक नए मुकाम को छूती है, और आज भी विविध भारती की सालगिरह पर बहुत सारे कार्यक्रम आपके लिए खास पेश किए जाएंगे। तो चित्रलोक कार्यक्रम से संगीता श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत, लेकिन रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के संग।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, आज के फनकार। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

0: biz Aycin'de bu ya.
1: स्वागत है दोस्तों आप सबका एशियन गेम्स 2026 की ताजा अपडेट में। आज की पहली अपडेट में मेरे साथ हैं साक्षी मांडवाल और मैं हूं मोहम्मद शाहिद आजमी। आज की सुबह बेहद सुहानी कह सकते हैं, बेहद खूबसूरत सुबह कह सकते हैं। भारत ने दो

0: भारत को गोल्ड मेडल मिला है। जी, अब भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्फ का गोल्ड मेडल जीत लिया है, और वो भी जीता है किस खिलाड़ी ने, प्रणवी ने जीता है। जी हाँ, प्रणवी उर्फ ने महिला व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीत लिया। एशियन गेम्स से पहले पदक की प्रबल दावेदारों में उनका नाम हालांकि नहीं शुमार था, लेकिन प्रणवी ने अपने प्रदर्शन से सभी को चौंकाते हुए भारत के लिए महिला गोल्फ का पहला व्यक्तिगत जो सोना है, गोल्ड है एशियन गेम्स का, वो दिला दिया। ये उपलब्धि भारतीय गोल्फ इतिहास में एक नया अध्याय कह सकते हैं। बिल्कुल साक्षी,
1: जरूर शायद, एंड अपने श्रोताओं को भी बता दें कि इससे पहले जो गोल्फ के अंदर इंडिविजुअल गोल्ड आया था वो शिव कपूर लाए थे 2002 में, तो यानी 24 साल का इंतजार आज जाकर समाप्त तो होता है विद दिस ब्यूटीफुल गोल्ड दैट प्रणवी उर्फ हैज बॉट फॉर द कंट्री। एंड अलोंग विद दैट, प्रणवी अदिति अंतीक्षा आल्सो क्लिंच्ड द सिल्वर मेडल इन द वुमेन्स टीम इवेंट इन गोल्फ। चलिए आपको दूसरी तरफ भी लेकर चलते हैं, दूसरी खबर की तरफ जो आने वाली है आर्चरी की दुनिया से, जहाँ आज हिस्ट्री बन गई। कुमकुम महोद हैज क्रिएटेड हिस्ट्री, शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन्स रिकर्व आर्चर टू विन अ गोल्ड मेडल एट द एशियन गेम। जी हाँ, पहली महिला भारतीय आर्चर जिन्होंने गोल्ड दिलवाया एशियन गेम्स में भारत को। इन अ थ्रिलिंग फाइनल शी बीट फॉर एन ओपोनेंट हू रीजन बाय अ शूट ऑफ। इंडियाज फाइनल डे एट द एशियन गेम्स 2026 बिगिंस ऑन अ गोल्ड नोट। शी हैड एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी डेब्यू कैंपेन फॉर इंडिया एट द एशियन गेम्स। शी फिनिश्ड विद टू गोल्ड्स एंड वन सिल्वर मेडल। दोस्तों, मैं बात कर रही हूं कुमकुम महोद की। एंड एज पार्ट ऑफ द वुमेन्स टीम शी वन द फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन दिस इवेंट। हर मिक्स्ड टीम सिल्वर वाज आल्सो द फर्स्ट मेडल फॉर इंडिया इन दैट कैटेगरी। अल्टीमेटली शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन अ गोल्ड मेडल इन अ रिकर्व इंडिविजुअल इवेंट।
0: जी बिल्कुल, बात करते हैं कुश्ती की, जहां मैट पर उठा पटक जारी है। दो पहलवान जहां बाहर हो गए, वहीं तीन पहलवान अभी भी मेडल की रेस में बने हैं। भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने पुरुषों की फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए कजाकिस्तान के नूरदान एतानवो को 12-1 के बड़े अंतर से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। इससे पहले अमन सहरावत ने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जापान के यामातो ओगावा को 20-9 से हराया था। मुकाबले के पहले हाफ में अमन 8-9 से पीछे थे, लेकिन दूसरे हाफ में उन्होंने जबरदस्त पलटवार करते हुए 12 अंक जुटाए और तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर मुकाबला अपने नाम कर लिया। उधर अंतिम पंगाल भारत की सनसनी क्वार्टर फाइनल मुकाबले में उज्बेकिस्तान की एस्पोनसीवा साकिब जमाल को 8-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। अंतिम ने इससे पहले आज की अपनी पहली जो प्री क्वार्टर फाइनल पहुंचती है उसमें कजाकिस्तान की सुयाला अमरीबेकोवा को 9-0 से शिकस्त दी थी, जबकि 74 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में भारत के सागर जगलान को क्वार्टर फाइनल मुकाबले में हार कर सामना करना पड़ा। वहीं सागर को ईरानी पहलवान जो मौजूदा चैंपियन है योनेस इमादगोजोई ने 10-0 से हराया था। अब सागर उम्मीद करेंगे कि उनके जो विरोधी पहलवान है वो फाइनल पहुंचे और चेस खेले। उधर 57 किलोग्राम महिला वर्ग में जिस तरह मनीषा अपना क्वार्टर फाइनल मुकाबला हार गई, हालांकि प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में उन्होंने शानदार तरीके से जीत दर्ज की थी।
1: जी, और टैक्वांडो में आपको बता दें कि कशिश मलिक हैज बोर्ड आउट ऑफ द वुमेन्स 56 केजी राउंड ऑफ 16 इवेंट एट द एशियन गेम्स। शी वाज डिफीटेड बाय किम यूजन ऑफ साउथ कोरिया इन दिस राउंड। ज्योति राज यादव नाउ रिमेन्स इंडियाज ओनली होप इन द स्पोर्ट एज शी गेट्स रेडी फॉर अ राउंड ऑफ 16 मैच। और इन द सेमीफाइनल उनका मुकाबला हुआ जू जिंगी ऑफ चाइना से। वही वुमेन्स 67 राउंड केजी राउंड ऑफ 16 में ज्योति यादव, जिनका मुकाबला हुआ कन्नलक छोचुलिन से, वहां पर भी ज्योति यादव को हार का सामना करना पड़ा 15-4, 15-2 से, यानी 0-2 से शी लॉस्ट दैट राउंड। शी हैज दस बीन नॉक्ड आउट एंड इंडियाज कैंपेन इन दिस स्पोर्ट आल्सो एंडेड विद दिस लॉस।
0: अगली खबर की तरफ चलूं, उससे पहले बता दूं कि दीपक पुनिया भी अभी भी बने हुए, उन्होंने अपना पहला मुकाबला जीता था, वो सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। वहीं ताइक्वांडो की बात करते हैं, महिलाओं के 67 किलोग्राम भार वर्ग के राउंड ऑफ 16 में मुकाबला जो था वो ज्योति का, जैसा कि अभी साक्षी ने बताया, उन्होंने जीत हासिल की है। जी हाँ, आज की जो शुरुआत हुई साक्षी बेहद शानदार रही, दो गोल्ड आए। वहीं कुश्ती में तीन पहलवान अभी भी पदक की तरफ बढ़े हैं, यानी आने वाला जो अगला घंटा वो भी अब बेहद खास होने वाला है।
1: जी, एंड अ वेरी क्विक रैप अप ऑन हाउ द मेडल टेबल प्रेजेंटली स्टैंड्स एट द लास्ट डे ऑफ द ऑनगोइंग एशियन गेम्स। भारत इस समय है 5वें स्थान पर। आज दिन की शुरुआत में कुल उसके पास 77 मेडल्स, जिसमें 17 गोल्ड, 25 सिल्वर, 35 ब्रॉन्ज है। लेट्स सी हाउ द डे एंड्स फॉर इंडिया। फॉर नाउ दिस इज मी साक्षी मांडवाल एंड मोहम्मद शाहिद आजमी साइनिंग ऑफ। हम आपके साथ एक बार फिर से सुबह के 10:30 बजे जुड़ेंगे विद ऑल द लाइव अपडेट्स एंड ऑल्सो एन अपडेट ऑन द इंडिया पाकिस्तान फाइनल क्रिकेट मैच।

0: एशियन गेम्स 2026 आईटी नगोया।
1: अभी आप सुन रहे थे एशियन गेम्स 2026 की लाइव अपडेट।

ज्योति प्रकाश दत्ता यानी जेपी दत्ता का जन्म 3 अक्टूबर 1949 को एक पंजाबी परिवार में हुआ। आपके पिता श्री ओपी दत्ता फिल्म निर्देशक और कहानीकार थे, यानी जेपी दत्ता को फिल्मी माहौल विरासत में मिला। तो ये तो शायद उनके बचपन में ही तय हो गया होगा कि उन्हें फिल्मों में ही अपना करियर बनाना है।

जेपी दत्ता को वॉर फिल्में बनाने में महारत हासिल है और इसीलिए उन्हें 1998 में नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन फ्रॉम प्रेसिडेंट फिल्म बॉर्डर के लिए सम्मानित किया गया।

बॉर्डर फिल्म का ये गीत संदेश आते हैं, ये आज भी फौजी भाइयों के बीच ही नहीं उनके परिवारजनों और तमाम देशवासियों के बीच ये गीत बहुत लोकप्रिय है। जेपी दत्ता द्वारा बनाई गई, निर्देशित की गई वॉर फिल्में हैं बॉर्डर, LOC और बॉर्डर 2। जेपी दत्ता ने बंटवारा, यतीम और गुलामी जैसी जो फिल्में बनाई वो भी लीक से हटकर फिल्में रही हैं। जेपी दत्ता द्वारा बनाई फिल्म रेफ्यूजी, इस फिल्म से अभिषेक बच्चन और करीना कपूर ने अपना करियर शुरू किया। रेफ्यूजी में सीमा विवाद को जेपी दत्ता ने बहुत ही खूबसूरती के साथ अपनी फिल्म रेफ्यूजी में पिरो दिया और दर्शकों के सामने एक अलग तरह की फिल्म के रूप में पेश किया।

0: फिल्म निर्माता और निर्देशक जेपी दत्ता पर केंद्रित रमेश गोखले द्वारा प्रस्तुत आज के इस कार्यक्रम में आलेख और स्वर अमरकांत का था। अब नमस्ते।
1: आज के फनकार।

0: अभी आप सुन रहे थे पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओ, अब कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। भारत ने व्यापार बाधाओं, डंपिंग और अनुचित मूल्य निर्धारण के समाधान के लिए विश्व व्यापार संगठन

0: के अनुरूप उपायों की मांग की है। अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कुछ देशों में सरकार की मदद से जरूरत से ज्यादा उत्पादन हो सकता है। इससे दूसरे देशों के बाजारों में सामान बहुत कम कीमत पर बेचने के कारण डंपिंग की समस्या उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए WTO के नियमों के तहत एंटी डंपिंग शुल्क और अन्य जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि देश 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करते हुए भरोसेमंद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बन गया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज उज्जैन में 255 करोड़ रुपए के डेयरी संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। इस डेयरी संयंत्र की प्रसंस्करण की क्षमता प्रतिदिन 3 लाख लीटर दूध है। हमारे संवाददाता ने बताया कि दूध उत्पादन और डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश में गौ पालक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक बागवानी केंद्र से रॉयलसीमा के किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कल आंध्र प्रदेश के अन्नमैया जिले में वैश्विक बागवानी केंद्र और भारतीय कृषि विद्यालय की आधारशिला रखी। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर आंध्र प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा दे रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय कृषि विद्यालय किसानों को नई तकनीक और खेती के बेहतर तरीकों की जानकारी देगा। वैश्विक बागवानी केंद्र में 10 जिले शामिल होंगे। इस परियोजना को 3 चरणों में पूरा किया जाएगा और इस पर 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात ने आज 12 साल पूरे कर लिए हैं। मन की बात का पहला कार्यक्रम 3 अक्टूबर 2014 को विजयादशमी के दिन प्रसारित हुआ था। हाल ही में प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित किया। मन की बात के जरिए प्रधानमंत्री देश के लोगों से सीधे संवाद करते हैं। G7 देशों ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमत पर नियंत्रण के लिए अगले 4 महीने में 10 करोड़ बैरल कच्चा तेल और डीजल बाजार में जारी करने का निर्णय लिया है। अमेरिका में डीजल की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि यूरोपीय देश अपने तेल भंडार से बड़ी मात्रा में डीजल और कच्चा तेल जारी करेंगे। संयुक्त राष्ट्र ने भारत में हरित ऊर्जा गलियारा के तीसरे चरण को मंजूरी मिलने का स्वागत किया है। केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए 1,86,405 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसमें 54,082 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता शामिल है।
1: हरित ऊर्जा गलियारा के तीसरे चरण का उद्देश्य बिजली के ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत करना और बैटरी स्टोरेज की सुविधा बढ़ाना है। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन कार्यकारी सचिव साइमन स्टील ने कहा कि इस योजना से भारत अपनी बढ़ती अक्षय ऊर्जा क्षमता का बेहतर इस्तेमाल कर सकेगा। इससे देश की बढ़ती बिजली जरूरत पूरी करने में मदद मिलेगी। श्री साइमन ने कहा कि मजबूत बिजली नेटवर्क और बैटरी स्टोरेज से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी तथा रोजगार के अवसर सृजित होंगे। हरित ऊर्जा गलियारा के तीसरे चरण के अंतर्गत राज्यों के भीतर बिजली पहुंचाने की व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: जापान के आईची नायोगया में एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। तीरंदाजी में आज सुबह कुमकुम मोहद ने महिला सिंगल्स रिकर्व में स्वर्ण पदक जीता। फाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया की खिलाड़ी को शूट ऑफ में पराजित किया। इस समय स्वर्ण पदक के लिए पुरुष क्रिकेट में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से हो रहा है। टॉस जीतकर भारत ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। इसके अलावा आज दोपहर पुरुष हॉकी में स्वर्ण पदक के लिए भारत और मलेशिया आमने सामने होंगे। इससे पहले कल भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदक जीते। इनमें मुक्केबाजी में 3, महिला हॉकी, कुश्ती और तीरंदाजी में 1-1 स्वर्ण पदक शामिल है। पदक तालिका में भारत 17 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य पदक सहित 77 पदक के साथ 5वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: लेकिन दिव्या अपनी खुशी का इजहार किससे करे, जब साइबर क्राइम जैसे विषय पर उसे डॉक्यूमेंट्री बनाने की सलाह दी गई थी तो वो कितना घबराई थी। उफ, कितना खौफनाक विषय। एक बार तो उसने ना ही कर दिया था, लेकिन जब प्रणव सर ने उसे छोटी सी बाइट बनाने को कहा तो दोस्तों ने भी फोर्स किया तो उसने ये प्रोजेक्ट ले लिया, जबकि राइमा ने महिलाओं की सुरक्षा विषय पर बाइट बनाई थी। इरफान ने स्वच्छता अभियान को चुना। पूरी क्लास भर में साइबर क्राइम जैसे विषय पर दिव्या ने पायलट प्रोजेक्ट बनाया। प्रोजेक्ट बनाने के दौरान दिव्या को कितनी दिक्कतें पेश आई थीं। क्राइम से जुड़े लोगों की पड़ताल करना, उनसे बातें करना, उन्हें कन्विंस्ड करना, फिर उन पर अपनी मनोवैज्ञानिक रिसर्च कर राय बनाकर लिखना, उफ कितने पापड़ बेलने पड़े थे। पुलिस स्टेशन जाकर चक्कर काटने पड़े थे। जब पहली बार पुलिस से इस संदर्भ में बातचीत करने की कोशिश की तो उसने साफ इनकार कर दिया, लेकिन दिव्या भी कहां हार मानने वाली थी। फ्रेंडशिप क्लब एडल्ट साइट पर जाकर जूझती रही और अपना रिसर्च वर्क करती रही। अनगिनत कागज लिखे और फाड़े। एक बार तो उसे पुलिस वालों का विरोध भी सहना पड़ा। इस जद्दोजहद के बाद अपने दूसरे सब्जेक्ट की विधिवत पढ़ाई करना भी जारी रहा। आखिरकार दिव्या के अथक परिश्रम ने रंग लाया और पायलट प्रोजेक्ट तैयार हुआ। उसके सपनों की किताब का पहला अध्याय लिखा गया और उसके नाम डॉक्यूमेंट्री अलॉट हुई।

शूटिंग में उसे बहुत सारी समस्याएं हुई। सब्जेक्ट खौफनाक था, चुनौती बड़ी थी। शूटिंग के लिए पुलिस डिपार्टमेंट के सुपरिंटेंडेंट जब आते तो वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती कि कुछ ऐसा हो कि शूटिंग कैंसिल हो जाए, जबकि इस मुश्किल

डॉक्यूमेंट्री को पूरा करने का उसने प्रण खुद ही किया था। सचमुच उसकी प्रार्थना सुन ली जाती, शूटिंग कैंसिल भी हो जाती। एसपी की शूटिंग के दौरान कुछ अलग तरह की समस्याएं होती, जैसे कि सवालों का चुनाव भी वो स्वयं ही करते थे। शुरुआती दिनों में तो मारे घबराहट और डर के रातों को नींद नहीं आती थी। मदद के लिए 5 टीचर्स का पैनल बना था, उसमें आपस में ही पॉलिटिक्स होती थी। हर टीचर खुद क्रेडिट लेना चाहता था। सही मायनों में तो प्रणव सर, जो उसके मेन गाइड हैं, उन्होंने ही काफी सहायता की। रात रात भर जाग जाकर इस डॉक्यूमेंट्री की एडिटिंग मिक्सिंग की। टीचर्स का ये पैनल और अच्छे दोस्तों का सहयोग और साथ न मिलता तो दिव्या डॉक्यूमेंट्री तो क्या छोटा मोटा प्रोजेक्ट भी नहीं बना पाती।

बचपन से लेकर अब तक के उसके जीवन की ये पहली घटना है जिस पर उसे अपने आप पर गर्व हो रहा है। उसे याद आ गए वो दिन जब क्लास में हर कॉम्पिटिशन उसके लिए सजा थी। वो परफॉर्म ही नहीं कर पाती थी, नजरें नीचे झुकी हुई होती और मम्मी का चेहरा आंखों के सामने होता था। चाचा की बंदिशें आवाज को जब्त कर लेती थीं। काश आज वो अपने घर में होती तो कितना अच्छा होता। घर वालों की याद आते ही दिव्या मायूस हो गई। एक ऐसी तलहटी में पहुंच गई जहां जाने का रास्ता तो है लेकिन वहां से लौटना नामुमकिन।

वो दिन जहन में ताजा हो गया। सूर्यास्त हो रहा था। दिव्या उदास होकर रूठकर कमरे में बंद हो गई थी। वॉल साइज विंडो पर लगे पर्दे झटके से खींचकर कमरे में अंधेरा कर एसी चलाकर चादर तान कर लेट गई थी। 7 बजे यहाँ सूर्यास्त होता है, 8 बजे लोग दफ्तर से घर लौटकर शाम की चाय पीते हैं। ये कोई सोने का वक्त है। उठो दिव्या, दिव्या उठो, कहते हुए पारो ने चादर खींचकर परे सरका दिया। वो सिराने बैठकर दिव्या को दुलराती हुई बोली, भूख हड़ताल से तुम अपने मन की करवा लोगी। दिव्या तमक कर उठ बैठी। तो फिर तो क्या करूं मम्मी, क्या करूं कि मेरी डिमांड पूरी होगी? आखिर इस घर में जरा भी अपनी मर्जी के करने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। कॉलेज की 10 लड़कियां हिस्सा ले रही हैं उस कैटवॉक शो में। मम्मा मैं अकेली नहीं हूं, उस शो में सिर्फ 1000 रुपए ही तो फीस है, आखिर क्यों नहीं जाने दे रहे हैं आप लोग? सवाल रुपए का नहीं है, ड्रेस का है, ड्रेस का। फैशन टीवी की नेकेड लड़कियों की तरह तुम भी पूरा बदन हिलाकर बिल्ली चाल चलोगी? हैं मम्मी, बिल्ली चाल नहीं, कैटवॉक। अरे तो कैटवॉक कर मिस वर्ल्ड मिस इंडिया बन जाओगी। क्या कहेंगे हम लोग अपनी सोसाइटी वालों से? सोसाइटी वाले अब दूर हो गए हैं ना, अब तो चौल की दुनिया से हम टावर में रहने आ गए हैं। अब भी सोसाइटी वालों का आखिर कैसा डर, कैसा खौफ? मम्मी ये सिर्फ फैशन शो है, स्टेज पर कैटवॉक करना है। अरे इस पर हमें प्राइज मिलेगा, आजकल स्कूल कॉलेज में इस तरह के कॉम्पिटिशन होते रहते हैं। पता है लास्ट ईयर रीना ने जीता था ये अवार्ड, उसे तो आप जानती है ना कितनी अच्छी है रीना। अरे बिटिया हमने हामी भर दी तो तेरे पापा नहीं मानेंगे, जैसे तैसे तेरे पापा को भी मना लिया ना तो तेरे चाचा को खबर लग गई ना तो वो पढ़ाई छुड़वा कर तेरी शादी करवा कर ही दम लेंगे। हाँ अपने पापा को तो तू अच्छी तरह से जानती है ना, चाचा के खिलाफ एक को लफ्ज नहीं सुनते वो। दिव्या के लिए इस तरह का संघर्ष रोजमर्रा में शुमार हो गया था। अपनी एक भी बात मनमाने के लिए उसे ऐसे ही रोजाना जूझना पड़ता था। ये ड्रेस मत पहनो, स्लीवलेस नहीं चलेगा, शॉर्ट्स मिनी स्कर्ट पहनना तो अलाउड ही नहीं था, सिर्फ कॉलेज जाते वक्त जीन्स और टॉप पहनने की बड़ी मुश्किल से इजाजत मिल सकी थी, लेकिन साथ में स्टॉल या दुपट्टा डालना जरूरी था। कॉलेज के शुरुआती दिनों में दिव्या घर से सलवार सूट पहनकर निकलती और रायमा के घर चेंज कर जीन्स टॉप पहनती और उसके बाद कॉलेज जाती। एक दिन चाची ने

इकलिया तो खूब हंगामा हुआ। पापा की हर बात मानने वाली मम्मी ने इस बार मर्म को समझा और उन्होंने वेस्टर्न पोशाक पर मुहर लगा दी थी, पर शर्त ये कि गला डीप नहीं होना चाहिए। कॉलेज जाते वक्त किसी लड़के से मेल जोल नहीं करना, हाथ नहीं मिलाना, किसी की बाइक पर लिफ्ट नहीं लेना जैसी नसीहतों की घुट्टी मम्मी रोज पिलाती थी। कॉलेज के फंक्शन में डांस और गाने में पार्टिसिपेट करने का सोचना भी पाप था। दिव्या के घर में कॉलेज का मतलब सिर्फ पढ़ाई, किताबें, इम्तिहान पास करना, एक्स्ट्रा करिकुलर की कोई जगह नहीं थी इस घर में। गुड गर्ल बनकर सिर झुकाकर कॉलेज जाना और घर लौटकर रोजाना आने वाले मेहमानों का स्वागत करना और बड़ी निपुणता से घर के कामकाज करना, यही उसकी बेहतरीन जिंदगी थी। अपनी राय दी नहीं कि 10 मिनट का भाषण सुनने को मिल जाता था। कभी कभी रायमा की बिंदास बातें उसे सही लगती थीं। सब कुछ अपनी मर्जी से करो, घर वाले कन्विंस ना हो तो उनसे बहाने बनाओ। वो तो अक्सर लड़के लड़कियों के ग्रुप के साथ ट्रैकिंग पर चली जाती थी, उसके घर वाले राजी भी हो जाते थे। दिव्या के घर वाले इतने पारंपरिक और रूढ़िवादी हैं कि अभी भी गांव वाली मानसिकता उनके भीतर गहरी जड़ें जमाए हुए हैं। अरे, समय के साथ विचारों की रिसाइक्लिंग करना बहुत जरूरी है। विचार, उसूल, ये सब दिव्या के घर वालों के लिए महज किताबी अल्फाज हैं। वक्त पर खाना खाना, पैसे कमाना, साल में एकाध बार कहीं परिवार के साथ घूमने जाना, यही शानो शौकत की जिंदगी है इनके लिए। उनके मुताबिक दिव्या को ये सब तो मिल रहा है। पारो दिव्या को समझाकर परेशान हो गई। दुखी होकर वो कमरे से चली गई। उनके जाते ही दिव्या उठी, अपने कटे बालों में बैकपिन लगाते हुए आईने के सामने खड़ी हो गई। आगे पीछे मुड़कर गर्दन टेढ़ी करके हर तरफ से अपने को निहारती हुई अपने ही रूप पर मुग्ध होती रही। रंग सांवला है तो क्या हुआ, रूप और फिगर तो है ना खूबसूरत और चार्मिंग। दिव्या ने वार्डरोब से अपनी टाइट फिट साइड कट मैक्सी निकालकर पहनी, हल्का मेकअप किया और इस तरह मटक कर हाथ हिलाकर बोलती रही जैसे टीवी की कोई वीजे हो। अगर मम्मी पापा राजी हो गए तो पक्का कॉलेज क्वीन का खिताब उसे ही मिलेगा। सोचते हुए आंखें मूंद कर थोड़ी देर के लिए दिव्या अपनी बिल्डिंग की 12वीं मंजिल की कायद से बाहर निकलकर फैशन शो के भव्य स्टेज पर पहुंच गई थी, जहां सामने बड़े बड़े फिल्म स्टार्स बैठे थे। दर्शकों का हुजूम था, तालियों की गड़गड़ाहट थी। अक्सर ही दिव्या सपनों की एक चमकीली दुनिया में खो जाती थी, जहां युवा मन के रोशन चिराग होते हैं और हर ख्वाब मुकम्मल होता है। हर रास्ते की तयशुदा मंजिल होती है। रास्ते में आई हर अड़चन और रुकावट को युवा मन चुटकियों में दूर भगाना चाहता है। भीड़ के महासागर में मन माफिक मंजिल तक पहुंचने के लिए रुकावटों के पत्थर को दूर भी भगाना पड़ता है। सपने पूरे करने के पीछे के संघर्ष को युवा मन उस वक्त कहां समझ पाता है। उमंग और उत्साह में डूबी दिव्या ने भी संजोया मखमली ख्वाब। ख्वाब की मास कम्युनिकेशन में 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करेगी। इसके लिए उसे चाहे जो करना पड़े, घर वालों का विरोध भी वो अफोर्ड कर लेगी।

0: कंग्रेचुलेशंस। अरे किन ख्यालों में खोई हो बार्बी डॉल। इरफान दिव्या से हाई फाई करते हुए बोला। दिव्या अपने कॉलेज के दिनों से छम से कूदकर वापस आ गई हॉस्टल के लॉन में, जहां सर्दी की नरम धूप का एक टुकड़ा दिव्या के नीले स्वेटर पर अटक गया था। क्यारियों में दुपहरिया खिलकर मुस्कुरा रही थी। हॉस्टल की दीवारों पर लटके बोगनविलिया रानी गुलाबी रंग से नहाकर और ताजा हो गए। दिव्या, यू आर वेरी लकी। तुम्हारा प्रोजेक्ट खूब खूब लाइक किया गया है, और पता है रावत सर लास्ट मीटिंग में तुम्हारी और तुम्हारी बनाई डॉक्यूमेंट्री की चर्चा कर रहे थे और तारीफ भी कर रहे थे। दिव्या बुत बनी बैठी रही, कोई जवाब नहीं दिया उसने। दिव्या के मन में इस समय यादों का भूचाल सा आया हुआ है। हॉस्टल में आए 3 साल हो गए हैं, घर वालों को लेकर वो कभी भी इतनी व्यग्र नहीं हुई, पर आज मम्मी जैसे सामने हैं। सौम्या दी की नसीहतें सामने हैं। दिव्या स्मृतियों की रेतीली आंधी और तपिश से झुलस गई है। उड़ती हुई रेत से
1: द एशियन गेम्स 2026 अपडेट्स।
2: एशियन गेम्स 2026 आईटी नगोया।
3: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी। मैं साक्षी माडवाल, मेरे साथ दोस्तों इस वक्त यहाँ पर मौजूद है मोहम्मद शाहिद आजमी, और हम लेकर आ गए आपके लिए सुबह के 10:30 बजे की लाइव अपडेट्स ऑफ द ऑनगोइंग एशियन गेम्स 2026 की। आज है आखिरी दिन ऑफिशियली अगर देखा जाए तो खेलों का, खासतौर से इंडियन रिप्रेजेंटेशन का, व्हेन इट कम्स टू द ऑनगोइंग एशियन गेम्स 2026। बिकॉज़ टुमारो द एशियन गेम्स कम्स टू इट्स फॉर्मल ऑफिशियल क्लोजर। बट अगर आज की सुबह की बात करें तो बहुत अच्छी शुरुआत आज भारतीय खिलाड़ियों ने दी, खासतौर से गोल्फ को। सबसे पहले मैं बताती हूँ जहाँ प्रणवी उर्स ने आज हिस्ट्री बना दी बाय क्लिंचिंग द गोल्ड फॉर इंडिया एट द एशियन गेम्स 2026। प्रणवी, अदिति, अंतीक्षा, द एंटायर टीम ऑल्सो देन वेंट ऑन टू गेट द सिल्वर मेडल इन द वुमेन्स टीम इवेंट इन गोल्फ। नो इंडियन हैज एवर वन एन इंडिविजुअल गोल्ड इन गोल्फ सिंस शिव कपूर रिटायर्ड इन 2002। यानी 24 साल के इंतजार के बाद आज जाकर वो इंतजार समाप्त हुआ एक इंडिविजुअल गोल्ड का गोल्फ में, जो प्रणवी

0: भारत के लिए एशियन गेम्स में लेकर आई। इसके साथ आपको ये भी बताया, प्रणी मयूर्स हेल्ड हर नर्व्स टू विन द वुमेन्स इंडिविजुअल गोल्ड मेडल फिनिशिंग द 4 राउंड कॉम्पिटिशन एट 15 अंडर पार। शी मेड पार ऑन द फाइनल होल एज सिंगापुर शैनन टैन एंड चाइनाज यिन रोनिंग हु फिनिश्ड ऑन 14 अंडर शेयर द सिल्वर मेडल। Aditi Ashok and Deeksha Dagar celebrated by dousing Pranavi with water on the course after a memorable victory.
1: जी, अब एक और अच्छी खबर श्रोताओं को बताएं। नागोया में भारत की 70,000 की तीरंदाज कुमकुम अनिल मोहोद ने आज ऐसा निशाना साधा कि इतिहास बन गया। एशियन गेम्स में पहली बार किसी भारतीय महिला ने रिकर्व व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। कुमकुम ने रोमांचक फाइनल मुकाबले में कोरिया की येजिन ओह को 6-5 से हराया। मुकाबला इतना करीबी रहा कि फैसला शूट आउट में हुआ, जहां कुमकुम ने 10-8 से बाजी मारकर सोना अपने नाम किया। स्कोर लाइन की बात कर लेते हैं तो कुमकुम ने 27-29, 29-29, 30-29, 27-28, 30-28 और शूट ऑफ में 10-8 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। और यह कुमकुम का इस एशियन गेम्स में तीसरा पदक है। महिला टीम रिकर्व में स्वर्ण जबकि मिश्रित टीम में रजत पदक, अब व्यक्तिगत में स्वर्ण पदक हासिल कर लिया। 17 साल की कुमकुम का यह एशियन गेम्स का जो पदक है उन्हें LA यानी लॉस एंजलिस ओलंपिक का टिकट भी दिला गया है।
0: Right, and now a quick update on cricket, where the India versus Pakistan gold medal match is underway currently. India won the toss today and chose to bat first. Batting, India so far has put, or rather made, 75 runs for the loss of 2 wickets in 5.2 overs, the current run rate being 14.06 per over. India lost 2 quick early wickets of Vaibhav Suryavanshi at 15 and Sanju Samson at just 2 runs. But Abhishek Sharma, who's presently on 46 and 16 overs, and Shreyas Iyer, who has just come on to the ground and has made 3 runs in 4 balls, have been able to solidify and give India a steady start and momentum. Also, Abhishek Sharma presently is just 4 short of his half century. India definitely in a commanding position in the 6th over as of now in this match.
1: कुश्ती की बात कर लेते हैं। साक्षी, कुश्ती के अखाड़े से भारत के लिए शानदार खबर आई है। भारतीय पहलवानों ने दमदार प्रदर्शन करते हुए 2 वर्ग के फाइनल में जगह बना ली, जबकि 2 पहलवान कांस्य पदक के लिए मुकाबला करेंगे। महिला 53 किलोग्राम फ्री स्टाइल में अंतिम पंगाल ने शानदार वापसी करते हुए फाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल मुकाबले में अंतिम शुरुआत में ईशुन ने 1 से पीछे चले थे, लेकिन उन्होंने जबरदस्त पलटवार करते हुए कुछ ही सेकंड में 6-1 कर दिया और इस शानदार जीत के साथ अंतिम ने अपना पदक पक्का कर लिया। अब वो स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला करेंगे। वही अमन सहरावत, अपनी ख्याति के अनुसार उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में सेमीफाइनल में कमाल की वापसी करते हुए फाइनल का टिकट उन्होंने हासिल किया। ताजिकिस्तान के अयाला बोलोस्क्यूपी के खिलाफ अमन पहले पीरियड में 2-6 से पीछे थे, लेकिन दूसरे पीरियड में भारतीय पहलवान ने ऐसा पलटवार किया कि मुकाबले का रूप पूरी तरह से बदल दिया। अमन ने दूसरे पीरियड में 12 अंक बटोरे और आखिर में मुकाबला 14-8 से जीत लिया। उधर सागर जगलान ने शानदार जीत दर्ज की और पुरुषों के 74 किलोग्राम फ्री स्टाइल के रेपचेज मुकाबले में जीत दर्ज करते हुए अब कांस्य पदक के लिए मुकाबला खेलेंगे। यहाँ पे इन्होंने 7-3 से जीत दर्ज कर ली। लेकिन एक और मुकाबले की बात कर लेते हैं। 97 किलोग्राम फ्री स्टाइल में दीपक पुनिया को सेमीफाइनल में करीबी मुकाबले में हार मिली। उज्बेकिस्तान के शोर्टेट्स के खिलाफ 9-8 से उन्होंने जो 8-9 से शिकस्त मिली थी, उसके बाद अब वो ब्रॉन्ज मेडल का मुकाबला करेंगे।
0: Right, and a quick update on the medal table. Presently, India is in the fifth position with a total of 79 medals, जिसमें 18 gold, 26 silver और 35 bronze medal है। जी हाँ, एक और gold medal भारत अपने नाम भी कर चुका है, इसलिए हमारी position medal table पर अब 5वीं।
2: दिव्या खुद को तपते रेगिस्तान में पाती है, जहां दूर तक वीराना है। मालूम है नियत दूरी तय करने पर उसे लोग मिलेंगे, शहर मिलेगा, पर उस दूरी तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत और बहुत लंबा संघर्ष है। हॉस्टल के कलीग्स, दोस्तों और टीचर्स के साथ के बावजूद वो खुद को मरुस्थल में जैसे अकेला पाती है। कामयाबी मिल जाना भी कई बार बेहद एकाकी बना देता है। कामयाबी कई बार अपनों से भी दूर कर देती है।
3: What happened, दिव्या?
2: क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? अरे अब तो डॉक्यूमेंट्री से भी पैसे आ जाएंगे ना, तुम्हारी कड़की के दिन भी अब खत्म होने वाले हैं। रिलैक्स्ड, अब सिर्फ स्कॉलरशिप के भरोसे नहीं जीना होगा तुम्हें। नहीं यार, खुश हूं, खुश हूं, बहुत खुश हूं मैं। आज पता है, आज मुझे घर वालों की बहुत तलब लगी है।

0: की बहुत याद आ रही है। खैर छोड़ो। अरे तो तू उन्हें फोन करके बता दे कि तू बहुत खुश है, तुझे कितनी बड़ी कामयाबी मिली है, वो लोग भी खुश होंगे ना। नहीं नहीं इरफान, उनकी नाराजगी और बढ़ जाएगी। उन्हें पता नहीं है कि हम यहां रात रात भर बॉयज और गर्ल्स साथ साथ काम करते हैं, एक दूसरे को हग करते हैं, एक दूसरे से हाई फाई करते हैं, लेकिन हम सब सिर्फ एक दोस्त हैं, रियल फ्रेंड्स। वे कभी नहीं समझेंगे मेरी प्रॉब्लम, कभी नहीं समझेंगे। पता है फाइनल एडिटिंग वाले दिन मैं, रायमा और प्रणव सर ने एक ही रूम शेयर किया था, बस थोड़ी देर के लिए झपकी ली थी बारी बारी से। उन्हें इन सब की भनक भी लग जाए ना तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वैसे भी मैं कौन सा उनके लिए जिंदा हूं, कहां जिंदा हूं मैं उनके लिए। उस दिन मम्मी ने मुझे कह दिया था तू हम सबके लिए मर चुकी है, मर चुकी है तू हम सबके लिए।
1: छोड़ ना यार, अब आगे की सोच। 2 महीने बाद फंक्शन है, ड्रामा का थीम तैयार हो गया है। इस बार एक ड्रामा और साथ में एक कोरस सॉन्ग भी तैयार कर लेते हैं, ठीक है? हाँ यार, इट्स गुड आइडिया। पिछले साल का फंक्शन अप टू द मार्क नहीं था, इस बार हम लोग कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं तो बस 2 साल और बिताकर यहां से सीधा मुंबई वापस लौटूंगी। मम्मी पापा से दूर आई हूं उन्हें नाराज करके, तो कुछ बनकर ही उनके पास जाऊंगी। मुझे तो टेलीविजन चैनल में काम करना है, बस इतना सा ख्वाब है। हाँ पर तुझे प्रॉब्लम क्या है? मैंने तो सुना है तेरी बनाई वो साइबर क्राइम वाली डॉक्यूमेंट्री चैनल के लिए अप्रूव हो गई है, वो भी एंटरटेनमेंट चैनल के लिए। हाँ यार, अभी तो सिर्फ अप्रूव हुई है ना, टेलीकास्ट नहीं हुई है। मेरे सीरियल्स जब कई चैनल पर टेलीकास्ट होंगे तब वो मेरी कामयाबी की पहली सीढ़ी होगी। वैसे एक चैनल ने हम सब की डॉक्यूमेंट्री का एक मोंटाज दिखाया था, रायमा बता रही थी मुझे।

इरफान ने घड़ी देखी, उसके लेक्चर का टाइम हो रहा था, वो वहां से चला गया। इरफान के जाते ही दिव्या फिर स्मृतियों की कटीली सघन झाड़ियों में उलझ गई। गोया कोई ऐसी मखमली याद नहीं है जिसके दामन में वो सिर रखकर सुकून पाए, वो नरम स्पर्श से सहलाए। उसकी हर याद कसैली है। बारहवीं की पढ़ाई के दौरान दिव्या ने कभी इंडिपेंडेंट होकर कुछ नहीं किया। बड़ा मन होता था डांस में नाटक में हिस्सा लेने का, पर सब कुछ प्रतिबंधित था। तीन भाई बहनों में सौम्या दी सबसे बड़ी, उसके बाद दिव्या और सोनू छोटा। दिव्या के सामने सौम्या दी एक प्रतिमान की तरह थी। हर बात में सौम्या दी का उदाहरण दिया जाता था, सौम्या की तरह बनो, उसे देखो, उसने भी तो पढ़ाई की है, वगैरह वगैरह। दिव्या के घर वालों के मुताबिक सौम्या की अच्छाई के कुछ पैमाने निर्धारित थे जो दिव्या को कतई गवारा नहीं थे। दिव्या ने जब भी पढ़ाई के अलावा अपने देखे सपनों का जिक्र किया तो सौम्या का उदाहरण सामने पेश कर दिया जाता था। एक बार जब दिव्या ने ऊंची आवाज में कह दिया, सौम्या दी को आखिर क्या मिला, हाँ आधी अधूरी पढ़ाई कर ली, क्या मिला, अब वो अपने घर में ही नौकर से भी बदतर हालत में जी रही हैं। क्या फायदा हुआ इस जिंदगी का, मुझे नहीं बनना है सौम्या, सौम्या सौम्या सौम्या, मुझे टीवी चैनल और फिल्म में काम करना है, मुझे सौम्या दी नहीं बनना है। वाक्य पूरा होता इससे पहले ही मम्मी का जोरदार चाटा गाल पर लगा था। उस दिन दिव्या कमरा बंद करके खूब रोई थी। सौम्या दी को फोन लगाकर बोला था, दी ये क्या किया तूने, तूने कभी घर में किसी बात का विरोध ही नहीं किया, गऊ की तरह तू सहती रही, अभी भी सह रही है। सब चाहते हैं मैं भी सौम्या बनूं, पर मैं नहीं बन सकती दी। तू अपनी जिंदगी से खुश नहीं है, फिर भी दिखाती है कि सब कुछ ठीक है, तू बहुत खुश है, तुझे क्या मिलता है सौम्या दी ये नाटक करने में। दी सब ठीक और अच्छे जीवन में फर्क है, जो दीवार तू नहीं तोड़ सकी ना, मैं उसे तोड़कर बाहर निकलकर दिखाऊंगी, मैं उस दीवार से बाहर जाना चाहती हूं।

बारिश का मौसम था। वनडे पिकनिक पर कॉलेज की टीम माल्शेज घाट जा रही थी। कई दिनों की सिफारिश के बाद दिव्या को परमिशन तो मिल गई, पर उससे पहले उसे घर की अदालत के मुकदमे में तमाम जिरह पर खरा उतरना पड़ा था। कितने लोग, कौन कौन जा रहे हैं मां? वो लड़के संस्कारी और कुलीन तो है ना? लड़कों से जरा डिस्टेंस मेंटेन रखना। हाँ, वे हाथ मिलाने के बहाने लड़कियों के करीब आते हैं और फिर दोस्ती की कड़ी जोड़ लेते हैं। समझ में आ रही बात ना? पर हमारे यहाँ लड़कों से लड़कियों की दोस्ती नहीं चलती। हम खानदानी लोग हैं। वैसे भी तुम्हें मजबूरी में को एजुकेशन में पढ़ाया जा रहा है, इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना। समझाइश की ये पुड़िया चाचा ने थमाई थी। चाची ने कपड़ों पर सवाल उठाया था। झरने में भीग जाओगी, पारदर्शी कपड़ों पर लड़कों की नजर फिसलती है। मोटे कपड़े का कॉटन सूट पहनना। समझ गई बच्ची? बाइक पर तुम्हारे चाचा के साथ बैठकर हम भी इतना घूमे हैं, लेकिन मजाल क्या कि सिर का पल्लू कभी उतर गया हो। चाची ने ज्ञान की घुट्टी कुछ यूं पिलाई थी। दिव्या ये कहने से नहीं चूकी। चाची, जब विनोद भैया घर से इतनी दूर मनाली 4 दिन के ट्रिप पर गए थे तो ग्रुप में लड़कियां ज्यादा थीं, पता है आपको? लेकिन विनोद भैया से इतनी जिरह किसी ने नहीं की थी, क्योंकि वो इस घर के सुपुत्र हैं, है ना चाची? जिस घर में सवाल पूछने की मनाही हो, वहां इस जरूरत की सजा के तौर पर दिव्या को सबके सामने थप्पड़ खाना पड़ा था। जन्म देने वाली मम्मी का तो सबसे बड़ा हक बनता था। वो हाथ पकड़कर बेडरूम में खींचती हुई ले गई थीं, लेकिन अंदर जाकर उन्हें जाने क्या हुआ कि वो पुचकारने लगीं। बेटी, कुदरत ने जो लड़की और लड़के में फासला बनाया है ना, उसे कोई नहीं पाट सकता है। हम संस्कारी लोग इतना आगे नहीं बढ़े हैं बेटा। हम कितनी भी सभ्यता सीख लें, हमारी सोच तुम्हारी पीढ़ी की तरह मॉडर्न और खुली नहीं हो सकती है ना। हमें पता है तू दोहरी जिंदगी

जिंदगी जीती है, घर में अलग और कॉलेज में अलग। घर की दहलीज पार करते ही पूरी संस्कृति तेरी बदल जाती है। पर बेटी हम क्या करें, हम तो मजबूर हैं ना, हम भी तो हिंदी में एमए किए हैं, फैशन डिजाइनिंग में डिप्लोमा भी किए थे, लेकिन क्या मिला? वही खाना बनाना खिलाना, घर वालों के काम करना। हम लड़कियों को अपनी राय या सिद्धांत बनाने की आजादी हमारे समाज ने अभी भी हमको नहीं दी है। तेरे पापा और तेरे चाचा की सोच हम नहीं बदल पाएंगे ना बेटी। बस मैं सोच बदलती रहूं, आप लोगों की दकियानूसी रास्तों पर चलती रहूं मम्मी, है ना? यही चाहती हैं आप? क्यों पढ़ाया मुझे इंटरनेशनल स्कूल में? सरकारी स्कूल में दाखिला करवा दिया होता तो बेहतर होता, दिव्या आंसू और गुस्से को जज्ब करते हुए बोली। आपको पता है मम्मी, पूरी क्लास में मेरा पहनावा, टिफिन, बोलचाल का तरीका सब कुछ एकदम अलग है, एकदम अलग। मेरे फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरी इंग्लिश स्पीकिंग की टांग खींचते हैं, वे कहते हैं मैं हिंदी में इंग्लिश बोलती हूँ। पर अब नहीं, मुझे अपने दकियानूसी थोपे गए घिसे पिटे संस्कारों से बाहर आना होगा। आप लोगों की थोपी गई परंपराओं से मुझे अब चिढ़ होने लगी है, ऊबने लगी हूँ मैं। एक तो इतने छोटे से घर में इतने सारे लोग भरे हैं, कोई प्राइवेसी नहीं है यहाँ। मैं सारे दोस्तों के घर जाती हूँ, पर मैं अपने फ्रेंड्स को घर नहीं बुला सकती क्योंकि उनमें लड़के भी हैं, है ना? इस घर में मेरे स्वस्थ और आधुनिक विचारों का आखिर गला क्यों घोटा जाता है? इसमें बुराई क्या है? लड़की लड़के सब बराबर है आजकल। ऐसा लगता है कि हम किसी गांव या टापू में रह रहे हैं। आखिर जब आप इतना आगे बढ़ गए हैं तो अपने विचारों में भी तब्दीलियां ले आइए ना। बहरहाल तमाम पूछताछ के बाद आखिर में दिव्या को मालशेज घाट पर वनडे पिकनिक जाने की अनुमति मिल ही गई। कैसा सुखद था वो सफर। पहाड़ों से उतरती पगडंडी सरीखी, पानी की दूधिया पतली धारा, कुदरत के तराशे पत्थरों को स्पर्श करती हुई नीचे आकर एक सुरीला संगीत पैदा कर रही थी। नीचे तक आते आते झरने का वेग इतना तेज हो जाता कि उसके नीचे नहाते हुए बदन चोटिल हो जाए। झरने के सफेद फेनिल पानी को जब दिव्या ने छुआ तो रोमांच से भर गई। झरने में दिव्या ने पूरे ग्रुप के साथ जी खोलकर मौज मस्ती की। मालशेज घाट की गगन छूती ऊंची पहाड़ियों के खूबसूरत दृश्यों को दिव्या अपने मन में खूब गहराई तक बसा लेना चाहती थी। पहाड़ियों और घाटियों की अनगिनत तस्वीरें उसने अपने मोबाइल में कैद की। बाकी दोस्त जब पहाड़ों के और ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उस समय पेड़ों के झुरमुट की ढलान पर बैठकर दिव्या फटाफट कुछ वीडियोस ले रही थी और अपने मोबाइल में वर्ड फाइल खोलकर इस खूबसूरत नजारे का ब्यौरा टाइप कर रही थी। पत्तियों की सरसराहट, जुगलबंदी करती कूकती कोयल की तान रिकॉर्ड कर रही थी। दूर दिखते कचनार, गुलमोहर के पेड़ों को जूम मोड पर अपने कैमरे में जीवंत कर रही थी। फूलों की वादियों से आती चंपा चमेली की खुशबू को अपने भीतर वो समो लेना चाहती थी। उस वक्त दिव्या की आंखें गुलाब सी खिली थी, टी टी करती टिटहरी का गान भी रिकॉर्ड कर रही थी। दिव्या इन वादियों में एक पंछी की तरह

गीतों भरी कहानी में आज आप सुन रहे थे ममता सिंह की लिखी कहानी यादों की तपिश का पहला भाग। स्वर था ममता सिंह का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह और विविध भारती की ओर से इसे प्रस्तुत किया रमेश गोखले ने।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम मैटिनी शो। मैटिनी शो में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ, आज का दिन है जश्न का। जश्न उस आवाज का जो बरसों से हमारे घरों में गूंजती रही है। जश्न उस साथी का जिसने हमारी खुशियों में हमें मुस्कुराना सिखाया, हमारी तन्हाइयों में हमारा साथ दिया और हमारी जिंदगी के हर रंग को संगीत से सजाया। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि आज विविध भारती का स्थापना दिवस है। हम सभी वीवीएस के स्थापना दिवस के 70वें वर्ष का जश्न मना रहे हैं। उस विविध भारती की सालगिरह जो सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं था आपके लिए, बल्कि करोड़ों श्रोताओं की जिंदगी का हिस्सा है, उनकी यादों का हिस्सा है, उनकी जिंदगी का जीवन संगीत है ये विविध भारती। तो आज दोस्तों हम और आप मिलकर मना रहे हैं विविध भारती के इस खूबसूरत सफर का जश्न। और इस जश्न में हमारे लिए एक बेहद खास तोहफा है, एक ऐसी आवाज जो अपनी पहचान के साथ साथ बरसों से श्रोताओं के दिलों में राज कर रही है, श्रोताओं के दिलों में बसी हुई है। हमारे साथ

0: हैं जानी मानी गायिका, अभिनेत्री और लेखिका इला अरुण। इला जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत नमस्कार, और आप सभी को विविध भारती के जितने भी अनाउंसर्स हैं, स्टेशन डायरेक्टर और श्रोता
0: जी,
1: 70 साल की ये जो वर्षगांठ आप इतने जोश से मना रहे हैं
0: जी,
1: मतलब इतनी सजी धजी इतनी महिलाएं, तो मैंने मुझे लगा दिवाली है और मेरे लिए एक यादों का दरिया बह गया
0: जी,
1: क्योंकि विविध भारती का जब आपने कहा 70 साल मना रहे हैं, तो हमारी और विविध भारती की उम्र तकरीबन आसपास ही है और बहुत यादें हैं। और आपने, विविध भारती ने मुझे मेरी जवानी के दिन भी याद दिलाए, फौजियों से प्यार करना भी सिखाया, किसानों से बात करनी भी सिखाई, और विविधता जो भारत की एक धरोहर है उसके सारे रंग आपकी विविध भारती पे मुझे मिले, तो बहुत मुबारक।
0: तो आप समझ आया, आपने कहा कि फौजियों से प्यार करना सिखाया, तो आपका इशारा कहाँ था? कहीं ना कहीं प्यार आपको भी हुआ किसी से?
1: कहीं ना कहीं नहीं, मैं ऐसी लड़की, मुझे कई बार हुआ और जो जवानी के दिन थे ना
0: जी,
1: उसके प्यार का तो सारा मतलब जिम्मेदारी विविध भारती की है। गाने ऐसे थे
0: जी,
1: बिल्कुल प्यार जिससे हो रहा है उसकी शक्ल दिमाग में, मतलब विविध भारती देखी रे, टीवी तो था नहीं
0: जी, बिल्कुल,
1: तो उस समय की बात कर रही हूँ कि वो जो मोहब्बत थी ना, इतनी पाक साफ
0: जी,
1: और आप अपना दिल लुटा देते थे। ऐसे कई गाने हैं जो मैं चाहूंगी कि आप बजाएं, अगर वो लोग जिंदा हैं तो याद करेंगे नहीं है तो उनकी याद में मैं गाने पेश करूंगी।
0: बिल्कुल, तो हम एक कार्यक्रम की शुरुआत में ये गीत सुन लेते हैं और उसके बाद श्रोता समझ जाएंगे कि आज हम क्या क्या बातें आपसे करने वाले।
1: जी जी, आपका जो मन में आए
0: जी।

0: तो देखिए यहाँ बैठी सभी महिलाओं की चूड़ियाँ भी खन के गई हैं आपके इस गीत से।
1: मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि ये गाना मेरी जिंदगी का, मतलब मैं क्या कहूँ, एक ऐतिहासिक गाना है
0: जी।
1: जब पहली बार मुझे भारत की कोकिला लता जी के साथ लाइव,
0: बिल्कुल
1: देखिए उस जमाने में ये था कि ऐसा नहीं था कि 100 साजिंदे आके पहले बजा के चले गए, आज तो सब कुछ वैसे भी कीबोर्ड पे हो रहा है
0: जी,
1: पर तब इतने म्यूजिशियंस और ये लाइव, एक तरफ लता जी और एक तरफ मैं, और जिसने कभी कुछ ज्यादा गाया ना हो, सीखा ना हो, और मैं शिव जी को भी याद करती हूँ, पंडित शिव जी को भी, और अपने हरिप्रसाद चौरसिया

0: जी को भी याद करती हूँ, और सबसे पहले यश जी को और श्रीदेवी जी को और सरोज खान जी को। देखिए मेरे लिए बड़ा इमोशनल मामला है, इनमें से आधे लोग रहे नहीं है, पर गाना कैसे बनता है, कैसे पकता है। और इसमें एक छोटा सा इंसिडेंट है कि जब सरोज जी ने देखा कि मैं डांस भी कर रही थी, सर्दी का मौसम था और धौरों पे मतलब रेगिस्तान के टीलों पे, तो उन्होंने कहा ये तो ज्यादती है कि गाना इन्होंने गाया है और ज्यादा हिस्सा श्रीदेवी जी के पास है
1: जी।
0: तो उन्होंने एक लता जी की लाइन पे मुझे डांस करवा दिया। अब मुश्किल ये थी कि इसको डब करना था, तो कैसे ये गाना बाद में हरी जी ने, और उनका सुर बहुत हाई है
1: जी
0: और मेरा ऑक्टेव नीचे है, कैसे ये हुआ? वो है सुनी सेज पे सैया सारी रात में जागी
1: जी।
0: और ऐसे गाना बनता है जो कि टीम वर्क है। तो आज मैं समर्पित उन हमदम परिंदों को जिनके दम से जिंदगी के लम्हे महक गए, मगर उन परिंदों की याद बहुत आएगी जो मेरे गुलशन में दो पल को चहक गए।
1: क्या बात है, क्या बात है। तो लता जी के साथ बिताए पल के बारे में आप बताना भी चाहती थी, जब हम आपसे बात कर रहे थे तो आपने कहा मैं जरूर बताना चाहूंगी, तो बताइए ना कि इस गाने को गाते वक्त लता जी के साथ क्या माहौल रहा आपका?
0: पहले तो मैं ऐसे कांप रही थी, मैं क्या बताऊं आपको कि जिनको जिंदगी भर आपने आपके लिए तो मतलब ऐसा है कि
1: भगवान
0: भगवान
1: जी।
0: उनके दर्शन होंगे भी कि नहीं होंगे
1: जी, जी।
0: और वो सादगी का एक ऐसा सरस्वती रूप, तो वो आई और शिव जी हरी जी ने मुझे कंफर्टेबल कर दिया क्योंकि मैं जानती थी। अब जब मैंने उनका सुना तो मेरी तो आवाज ही नहीं निकली, वैसे भी थी नहीं और भी गड्ढे में गई। फिर जब रिकॉर्डिंग करने गए तो बाद में उन्होंने एक मुझे कॉम्प्लीमेंट दे दिया, आपके गुरु जी कौन है? बस इस बात से मैं मतलब सोच रही थी या तो गुरु जी की मार पड़ेगी गुरु जी को, और या फिर ये उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया है क्योंकि मैंने सीखा नहीं था कहीं। उनके साथ गाने में बहुत अच्छा लगा, मैं जो कुछ मैंने सीखा मजदूरों से बंजारों से सुन सुन के, मेरे पास कान है आवाज का पता नहीं
1: जी।
0: तो
1: अरे आपकी आवाज में पूरी राजस्थान की मिट्टी है।
0: तो लता जी के साथ दो गाने हो गए, ये भी था और रहना बावरी भाई अनु मलिक जी, मैंने सुना आपके साथ आने वाले हैं, तो उनके साथ जाल फिल्म का एक गाना था वो भी मैंने लता जी साथ गाया था
1: जी।
0: पर ये सिर्फ एक बहुत ही इमोशनल यादगार है, बहुत सुरीली गायिकाओं को भी मौका नहीं मिलता है कि लता जी के साथ गाए, और मुझे मौका मिला इसके लिए मैं यश जी की और हरि जी और अपने शिव जी की बहुत बहुत मैं उनके आभारी हूँ, शुक्रगुजार।
1: और हम भी ईश्वर के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने आपसे हमें आज मिला दिया, हम उनके आपकी आंखों से या आपके मन से उन तक पहुँच रहे हैं। बहुत बड़ा पल है हमारे लिए, विविध भारती के लिए, सभी विविध भारती के परिवार के सदस्यों के लिए, कि आज इला जी दोस्तों हमारे स्टूडियो में पधारी हैं, अपना कीमती वक्त हमारे साथ बिता रही हैं। तो इला जी आप गायिका हैं जैसा कि हम बात कर रहे हैं, अभिनेत्री हैं और आप लेखक हैं। आपकी अभी अभी एक किताब आई पर्दे के पीछे,
0: जी जी
1: है ना,
0: भलाई की लोग देख तो नहीं सकते
1: हाँ,
0: पर मेरी किताब ये है
1: क्या
0: पर्दे के पीछे,
1: बहुत सुंदर पर्दे के पीछे, और आप भी कितनी खूबसूरत लग रही है पर्दे के पीछे देखिए। तो इसमें आपने अपने जीवन को खोल कर रख दिया है
0: जी,
1: क्या कहना चाहती हैं आप, मतलब ये आपका आत्म कथात्मक एक
0: बिल्कुल जिंदगी पूरी है कि क्या हुआ। देखिए ये गाना मैंने गाया था
1: हाँ।
0: तो लोग बाग जो होते हैं ना कलाकार को कलाकार नहीं समझते हैं और गायन को भी, क्योंकि फिल्मों में सिचुएशंस होती हैं। एक गाना मैंने गाया था, मैं तो कह सकती हूँ चोली के पीछे, तो उसे लोगों ने मतलब उसको जैसे ऐसे मान लिया जैसे कोई बहुत बुरा गाना गाया हो, जबकि इसमें लड़की की तो कोई बुराई नहीं है, ये लड़के हरकतें करते हैं जो ऐसी बातें पूछते हैं, बट एनीवे वो मेरा एक मेरे लिए झंडा हो गया कि मतलब ये तो यही गाना गाती हूँ। पर मेरी जिंदगी पर्दे के पीछे, मैंने रंगमंच किया अपने बचपन से, जिसके आगे आपको याद हो बचपन में मखमल का पर्दा हुआ करता था
1: जी बिल्कुल,
0: फिर छोटा स्क्रीन फिर बड़ा स्क्रीन, तो पर्दे, और फिर जहाँ राजस्थान से हूँ वहाँ लाज का भी पर्दा है, घूंघट का भी पर्दा है। तो पर्दे के पीछे जो मेरी ये ऑटोबायोग्राफी है उसमें ना केवल मैं हूँ वो भी तमाम औरतें हैं जो मेरे इर्द गिर्द मुझे मतलब कहीं ना कहीं प्रेरणा देती रही। इसमें बहुत कहानियां हैं और खास तौर से औरत हूँ क्योंकि औरत की नब्स को मैं समझती हूँ, उसके दर्द को समझती हूँ, उसकी अंदर के जोश को मैं अपने गानों में सेलिब्रेट करती हूँ, पर उसके दर्द को मैं अपने नाटकों में निकालती हूँ। तो पर्दे के पीछे मैं एक माँ भी है, एक जवान लड़की भी है, उसकी मोहब्बतों का भी, स्कूल की शैतानियों का भी जिक्र है, फिर एक नानी का भी जिक्र है, बहुत सारी चीजें, एक मदर भी हूँ। तो औरत तो बहुत दौर से गुजरती
1: है और आपने औरतों पर बहुत काम किया, इस पर भी हम आपसे एक सवाल करेंगे। लेकिन क्या पर्दे के पीछे ये जो किताब आपने लिखी है, इसे लिखना अपनी जिंदगी को दोबारा जीने जैसा था आपके लिए?

0: कि कलम हाथ में लेने की जरूरत आपको कब महसूस हुई?
1: देखिए, वैसे तो मैं काफ़ी लिखती रही, लोगों को पता नहीं है, कभी कभी कविताएं लिखती थी, कभी मैं नाटकों का अनुवाद मैंने बहुत किया है, नाटक लिखे
0: जी, जी।
1: पर जहाँ तक पर्दे के पीछे के लिए मुझे जो पब्लिशर थे वो पीछे पड़े थे, आप तो जानते हैं आजकल वो स्टार्स हैं, उनकी जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं, पर मुझे तो ऐसा था कि कलम जैसे हाथ में आई ना तो मेरे लिए एक संवेदात्मक जर्नी हो गई, बचपन को पुनः जीना,
0: बिल्कुल
1: अपने आप में एक हिंडोला, जैसे कहते हैं ना झूले पे गए और झूले से वापस आप आए, तो वो उस दौर से दोबारा गुजरना मेरे लिए एक उपलब्धि थी। भावनाओं को मैं ऐसे समेट पाऊंगी, जिंदगी तो बहुत बड़ी है
0: जी।
1: तो मैंने एक जगह किसी और का ही था कि जिंदगी गुजर गई है किरदार निभाते निभाते, मैं कौन हूँ ये सवाल आज भी है।
0: बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आपने इस किताब में उन महिलाओं का भी जिक्र किया है जो आपके अनुभव में रही, आपके साथ रही।
1: बिल्कुल, जो मेरे साथ काम करती थी, जैसे पूरी की एक अधूरी कहानी, पूरी उसका नाम था, पर उसकी जिंदगी में वो जिस जाति से आती थी, बंजारन थी, उसका क्या था, उसके पीछे क्या कहानियां थी, या फिर मेरी दोस्त मानू ने सुसाइड क्यों किया, पोस्टमार्टम डिप्रेशन पे मैंने अभी नाटक किया है, पर तब औरतों को आधा हिंदुस्तान नहीं समझता है कि जब वो किसी बच्चे को जन्म देती हैं तो उसके लिए एक जीवन को पुनः पाना है और जीना है, उसमें हार्मोनल चेंजेस कैसे होते हैं, तो ये सब चीजें, मानू का मरना या पुष्पलता का कैसे भगना, ये सब ये किरदार मेरी मस्तिष्क में समाते रहे। और सबसे बड़ी बात तो है मेरी माँ, जो जिनका एक चीज है मेरी किताब में लिखी हुई है, आवेश में कभी विवेक मत खोना, ये क्लैपर बोर्ड था, यानी आवेश तो जवान होंगे तो आएगा ही आएगा, पर जब भी ऐसी बात आती थी तो क्लैपर बोर्ड गिर जाता था, आवेश में कभी विवेक। सो मदर, उनकी लोकोक्तियां बहुत कुछ है, मतलब मैं सोचती हूँ पढ़ना चाहिए लोगों को, मेरे लिए नहीं पढ़ना चाहिए, औरत को समझने
0: के लिए पढ़ना चाहिए। तो हमारी जो श्रोता इस वक्त आपसे आपको देख रहे हैं, आपको जान रहे हैं, समझ रहे हैं,
1: और सुंदर महिलाएं बैठी हैं
0: सामने, जो खूबसूरत महिलाएं बैठी हैं, उन सबसे हम अनुरोध करते हैं कि और मैं भी ये किताब जरूर पढ़ूंगी और इसका इसके बारे में आपसे विचार विमर्श भी करूंगी कि इस किताब को पढ़ने के बाद क्या महसूस हुआ। अब एक गाना जो आप सुनना चाहती थी, आपने कहा कि मैं पुराने दौर में लौटना चाहती हूँ क्योंकि विविध भारती में लोग पुराने गानों को पसंद करते हैं, तो आपकी पसंद का गीत हम आपको सुनवा दें, फिल्म ताजमहल से।
1: अरे बिल्कुल, ये तो मेरा पहला रोमांस था। करिए करिए
0: जी, सुनते हैं।

0: तो बताइए।
1: तो ऐसा हुआ
0: जी
1: कि देखिए उस जमाने में आप तो कह नहीं सकते थे ना माँ बाप से कि हमें कुछ हो रहा है। तो गर्मियों की छुट्टियों में
0: जी
1: एक हमारे दूर के रिश्तेदार, रिश्तेदार भी ना कहें कम्युनिटी के कुछ, तो बड़े हैंडसम से थे, सफेद चिकन का कुर्ता पजामा पहन के आए और बहुत अच्छा गाते थे
0: जी जी।
1: और मुझे ये लगा कि शायद मेरे लिए गाया हो।
0: अच्छा
1: अच्छा, जो कुछ भी था उसके बाद सारी दोस्ती विविध भारती ने निभाई। यानी कि जब कोई खतों की किताबत ना हो सके और ये गाना आपकी भावनाओं को मतलब कहीं ना कहीं आपको सहारा दे
0: जी।
1: तो क्या होता है उसी वक्त आप चिट्ठी लिखने बैठ जाते हैं।
0: हाँ।
1: और आपके आंसू टपक रहे हैं और आप चाहते हैं टपके ताकि अगले वाले को पता पड़े कि हम कितने रो रहे हैं। पर ये गाना वाकई में मुझे पता नहीं भगवान वो जिंदा हो जहां भी है पर वो एक वो जो जवानी में जो म्यूजिक जो काम करता था वो भी विविध भारती का,
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि आकाशवाणी में तो क्लासिकल और ये सब कुछ चलते थे। तो आप लोगों का बहुत सहयोग है कि आपने हमें उस आयु को जीने का एक
0: मौका दिया
1: और हमारी भावनाओं को समझा।
0: बिल्कुल,
1: हर गाना लगता था जैसे आप हमारे लिए बजा रहे
0: हैं। बिल्कुल सही कहा इला जी, हमारे श्रोता भी लगातार सुबह से लेकर रात तक विविध भारती सुनते हैं और इस वक्त भी आपको देख रहे हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज इला अरुण जी का हार्दिक स्वागत है, साथ ही विविध भारती परिवार के साथ विविध भारती की स्थापना दिवस की भी हम हार्दिक शुभकामनाएं और विशेष बधाई दे रहे हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज इला जी भी ओल्ड इज गोल्ड है, जियो हजारों साल, हम श्रोताओं की लख लख दुआएं हैं इला जी के नाम भी और विविध भारती को भी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: एक श्रोता लिखते हैं कि इला अरुण जी इज ऑफ माय फेवरेट गायिका, बेस्ट ऑफ इंडिया रेडियो चैनल विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, जहां पर आज इला जी पधारी हैं और इला मैडम का हम स्वागत करते हैं। और लिख रहे हैं कि आज मंदाकिनी जी और इला जी को विविध भारती के स्टूडियो में साथ देखकर बहुत ही आनंद की जो हमें प्राप्ति हो रही है, बहुत ही आनंद आ रहा है।
1: मुझे भी आनंद आ रहा है आपको देख के। आप तो मुझे साधना किया दिला दी, साधना कट।
0: अरे
1: और 70s में जो आप लोग तैयार हुए ना वो कमाल है। किसी ने, दर्शकों मैं आपको बताना चाहती हूँ, किसी ने पोलका डॉट पहना है, किसी ने सीक्वेंस पहना है, किसी ने सब चमकीले बढ़िया भड़कीले लग रहे हैं और पुरानी तारिकाओं की याद दिला रहे हैं
0: जी। और ये सब आपके लिए है, हम सब आपके लिए तैयार हुए हैं और विविध भारती
1: हमारा काम है। ये काम, ये महिलाओं का काम क्या है, हर उत्सव को मनाना
0: जी। तो इला जी आज हम उत्सव मना रहे हैं विविध भारती की स्थापना दिवस के रूप में। अब हम ये जानना चाहते हैं कि आपके गले में जो राजस्थान की मिट्टी है, आपके गाए गीतों में जो आपकी आवाज में एक अलग ही धमाल है, जैसे कि रेशम का हा, ये जो आप करती हैं, ये है क्या? हुल्लड़, एक ठसक, एक देसी अंदाज, ये क्या है? मतलब आपने इस अंदाज को कैसे बनाए, कुदरती था आपके अंदर या आपने इस अदा को कहीं से संवारा? क्योंकि हमारे श्रोता आपकी इस अदा के कायल हैं और हम भी कायल हैं।
1: मैं इसमें राजस्थान की शुक्रगुजार हूँ। वो जो बेझिझक पना है, जो उनमें जो उनका फड़त का लहंगा और उनके चूड़े और उनके उनकी आवाजें और उनका निसंकोच होकर के गाना, ये शायद कहीं कानों में पड़ता रहा। हमारी माँ तो हमेशा ये कहती थी तुम हर वक्त मत गाया करो, अगर उनका बस चलता तो मैं आज यहाँ होती नहीं। तो मुझे लगता है कि ईश्वर ने मुझे एक एप्रिसिएशन की एक कान दिए थे और कहीं ना कहीं मैं उनको जैसे गेहूं वाली हैं, जैसे कोई भी वहाँ भीख जो है वो मांगता नहीं है, वो भी कलाकार
0: ही
1: होता है।
0: बिल्कुल, वो उनमें भी कलाकार ही।
1: और उनमें हमें क्या फर्क है, हम परफॉर्मेंस करते हैं, पैसे लेते हैं, वो उनके पास स्टेज नहीं, तो वो सड़क पे आते हैं, गाते हैं। उनकी जो धुने हैं, उनकी जो मस्ती है, वो कहीं ना कहीं मैं राजस्थान कि को इस मामले में मानती हूँ कि राजस्थान ने मुझे बहुत कुछ दिया है।
0: जी जी।
1: और ये खराश या जो कुछ भी है, मुझे ईश्वर ने अगर गला ऐसा दिया होगा, जो कि मम्मी कहती थी कि क्या तुम्हारी भारी आवाज है, बट
0: यही आवाज आपके लिए वरदान बन गई
1: जी। जो कई कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों ने उसे प्यार किया, या उस समय जिस समय पतली आवाजें हर जगह

0: थी या पार्श्व गायिकाएं या प्लेबैक सिंगर,
1: पतली आवाज को
0: उस समय कभी भी ऐसा नहीं था कि मोटी आवाजें आए। तो फिर हमारी रेशमा जी तो मेरी रोल मॉडल रही है, मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ। फर्क इतना है कि वो सब एक गायक घरानों से थी, उनके कहीं ना कहीं उनके खानदानी सारंगी और सब था। मैंने एक्वायर किया है, मैंने उन लोगों को अपना एक जिसको कहते हैं वो मेरे लिए एक प्रेरणा रहे हैं, और मैंने उनसे कहीं ना कहीं फेस्टिवल से उनके अंदाज से कहीं ना कहीं मैं प्रभावित हुई। और फेस्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, अपने चाहे पूरा भारतवर्ष देख लीजिए, राजस्थान नहीं है, कोई भी फेस्टिवल बिना संगीत के अधूरा है। और अगर आप फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करेंगे, आज मैं कह सकती हूँ कि मैं न केवल राजस्थानी बल्कि शादी जिनके घरों में होती है उनकी मैं एक महानायिका रह चुकी हूँ।
1: बिल्कुल,
0: अगर 5 फंक्शन होते हैं एक इलार उनका जरूर होता था।
1: बिल्कुल,
0: तो वो हमेशा था कि वो ट्रेडिशनल, लोग चाहते थे कि कुछ ट्रेडिशन आए, तो हमें अपने जड़ों से जुड़ के रहना चाहिए। और ट्रेडिशंस ही हैं जो आज दोबारा फैशन में आ गए हैं।
1: और ये हमारी हमारा संस्कार है, हमारी संस्कृति है, जो कहीं नहीं जाएगी। और आपने कहा कि हर फेस्टिवल में आपका एक गाना जरूर होता है, एक गाना जो अब हम लेकर आए हैं आप ही की पसंद का, उसको सुनकर भी हमारे श्रोता जो है झूम उठेंगे। और मुझे लगता है खासतौर से महिलाएं आपके गानों को सुन सुनकर अपने घाघरे के जो स्टाइल है ना वो बदलती रही है। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत आप ही की आवाज में।

0: पकड़ी थी मैं केस में कड़ी सारी थी ककड़ी तूने बाप पकड़ी मैंने मारी लकड़ी
1: तू काय बोली तू काय बोली।

0: थोड़ी टेढ़ी हुई, थोड़ी मेढी हुई, मारी कमर को मैंने जरा सी मटकाई, थानेदार ने अपनी सारी अकल गवाई।
1: तू कह बोली

निकला घना मोर्चा, कोई प्रेस वाला, कोई मोटा लाला, कोई संतरी जी, कोई मंत्री जी, कोई या बोले, कोई वाह बोले, मैंने उठे ले गया।

0: वाह वाह, क्या घाघरा घुमाया आपने।
1: देखिए ऐसा है कि ये इसके पीछे की जो कहानी है ना वो गजब की है
0: जी।
1: एक छोटी सी कहानी है, एक लड़की है वो गांव में खड़ी है और खीरा खा रही ककड़ी
0: जी।
1: उतरे हुए मिनिस्टर का लड़का था और वो आकर के उसका हाथ पकड़ लेता है, वो उसको लकड़ी मार देती है। वो कहता है कि देखो भाई मैं मिनिस्टर का लड़का हूँ, तुम नहीं जानती हो। वो कहते होगी। बात यहाँ से बढ़ती है, बढ़ते बढ़ते बढ़ते, क्योंकि वो लड़की स्वाभिमानी है, वो कहती है ये मेरा वस्त्र नहीं है, ये मेरा शस्त्र है। अगर मैंने 20 मीटर का घाघरा घुमाया तो जैसे कि रेगिस्तान में आंधी आती तुम सब उड़ जाओगे।
0: अरे वाह।
1: उसके बाद प्रेस आती है, उसके बाद पूरी जर्नी है। उसके बाद कोई आया मोटा लाला, प्रेस लाला, सीटी सर सर बजाती, पुलिस दौड़ी चली आई, कंगन मारा उतारा, हथकड़िया पहनाई थानेदार के आगे। फिर मैं मुस्काई, मैंने दियो धच को, उन्हें खायो लच को, थोड़ी टेढ़ी हुई, थोड़ी मेढ़ी हुई, हमारी कमर को मैंने जरा सी लचकाई। तो अपना जो उसका
0: एक दूसरा
1: एक तरह तो स्वाभिमान है, दूसरा वो जानती है आदमी को कहां मैं गिरा सकती हूँ, ल्योर कैसे कर सकती हूँ। और एंड में फूलन देवी की तरह से होता है, इन्हें टिकट दिलाओ, इन्हें मंत्री बनाओ, चुनाव चिन्ह घाघरा ले बना। सो दिस इज नॉट पॉलिटिकल, इट इज अबाउट विमेन। औरत को कमजोर मत समझना।
0: बहुत
1: तो ये गाना उस पे था, इसकी रिदम अच्छी है। ये पहली बार राजस्थानी में रैप, या
0: सबसे बड़ी बात,
1: नहीं लड़की में ऐसी, नहीं लड़की में वैसी, हमारे सामने तू क्यों अकड़ी, क्यों तू क्यों झगड़ी, ये सारा कुछ जो है 7.5 मिनट का रैप मैंने लिखा है।
0: राजस्थान का पहला रैप,
1: पहला रैप है
0: जो इलाजी की आवाज में है। श्रोताओं आप इस वक्त इलाजी से रूबरू हैं और हम आप सभी श्रोताओं से गुजारिश करते हैं कि अपने संदेश हम तक पहुँचाएं। इलाजी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें कम शब्दों में अपनी बात रखें, इलाजी से हम जरूर वो सवाल पूछेंगे और वो उसका उत्तर देंगी। तो चूंकि बात चल रही थी आपके लोक गीतों की, अभी इन दिनों एक बहुत खूबसूरत लोकगीत आपका बहुत चर्चा में है, चरखा
1: जी।
0: जिसका जिक्र आप भी करना चाहती थी। तो ये गीत जो चरखा है, अगर सोशल मीडिया में जाएं तो लाखों फॉलोवर इसको,
1: 1 करोड़ हो चुका है,
0: 1 करोड़ हो चुका है,
1: 10 मिलियन।
0: क्या है इस चरखा लोकगीत में जो आपके दिल के इतना करीब है? और आपने मुझे कई बार कहा कि चरखा लोकगीत पर हम जरूर बात करने वाले हैं और अपने श्रोताओं को सुनाएंगे।
1: इसका सबसे बड़ा कारण है कि मैं सारी स्त्रियों को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि खुल के सामने आए, चाहे वो पुलिस की हो। आप शॉक्ड रह जाएंगे, वो शायद इंदौर था या बंगलोर था, वो सिक्योरिटी की लेडी थी और अपनी ड्रेस में थी, उनको अलाउड नहीं था कि वो सेलिब्रिटी से बात करें। उसने कहा मैडम आप मेरी रील देखिए, मैं जब घर जाती हूँ तो मैं नारी हो जाती हूँ। ये चरखा है वैसे 400 साल पुराना है, इसे आदिवासियों ने भी गाया, पर जब मेरे सन इन लॉ ध्रुव गाने करने इसको, क्योंकि देखिए लोक संगीत को अगर जिंदा रखना है तो उसको हमें एक नया पैकेज लाना पड़ेगा, वरना वो क्या होगा, चौपाल जैसे हम करते थे
0: जी, जी।
1: कि ये तो किसानों का नहीं है, जो ताकत लोक संगीत में, हर म्यूजिक डायरेक्टर लोक संगीत को ही चुरा रहा है क्योंकि वो धुने वो आवाज। तो ये जो चरखा मैंने जब दोबारा गाया तब यंगर जनरेशन को समझ में आया कि लोक संगीत क्या है। मैं तो चरखे से वैसे भी, चाहे कबीर ने चरखा कहा हो, चाहे वो हमारे सूफी गानों में आया हो, पर ये चरखा औरत की बात करता है कि औरत जब सूत काटती थी, गांधी जी का चरखा तो
0: जी,
1: है
0: जी, जी।
1: पर ये औरत का वो चरखा है कि पहले वो अपना धागा बुनती थी, उसके बाद वो उससे अपना वस्त्र बनाती थी। और वो कहती है कि चरखे की कमाई से मैं ननंदर

0: नणदल ने परणाई चरखी एक जो
1: मैंने
0: ब्याह किया है
1: इसकी कमाई
0: ये
1: यानी एक औरत की कमाई
0: कमाई जो है वो ये हमारे यहाँ जोधपुर की भी एक आपकी अनाउंसर है जो मुझे मिली थी और मैं चाहूंगी कि वो जहाँ भी बैठी इस गाने पे डांस करें क्योंकि चाहे वो जोधपुर है चाहे बीकानेर चाहे वो हिंदुस्तान का कोई सा भी हिस्सा है चरखे ने जो दोबारा एक क्रांति लाई है और औरत को जो एक फ्रीडम दी है यानी जिन पोशाकों में उन्होंने डांस किया है वो कॉम्बिनेशन तो मुझे भी नहीं पता थे कि क्या पर्पल के साथ चटनी ग्रीन हो सकता है क्या कथई रंग के साथ बैंगनी आ सकता ऐसे ऐसे बेस पहन के ट्रेडिशनल चूड़े ये सब चीजें जो मैं हमेशा प्रमोट करती हूँ वो पहन के औरतें आई तो आप ये चरखा गाना मेरी तरफ से मेरे श्रोताओं को 70वीं वर्षगांठ विविध भारती पे मैं भेंट करना चाहती हूँ।
1: बिल्कुल हम सुनवाने वाले हैं लेकिन मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आप ध्रुव का नाम ले रही हैं इस संगीत से लोक संगीत के साथ तो ध्रुव ने किस तरह से लोक संगीत की जड़ों को समकालीन संगीत के साथ जोड़ा आप क्या सोच रही हैं?
0: अब उनके जीवन में एक पुरातन आ चुकी थी इला अरुण जो कि उनकी मदर इन लॉ हैं और वो वर्ल्ड म्यूजिक करते हैं मैंने उनके साथ एक जो आजकल नया ट्रेंड चला है कोक स्टूडियो में निमरी निमोली भी मैंने गाया है ही इज वेरी गुड क्योंकि वो खुद भी गायक भी हैं तो वो गाने की ताकत को समझते हैं और ये भी समझते हैं हमें कहाँ तक पहुँचाना है इंटरनेशनली हमारी ऑडियंस तो इंटरनेशनल भी है तो वो जो उन्होंने भरा है ना और उसकी चरखे की मादकता को रखते हुए जो इसका ग्रूव बना है
1: जी
0: ग्रूव इसकी ताकत है मतलब अगर ध्रुव मेरी ताकत है तो ग्रूव इस गाने की ताकत है
1: जी। तो जब ध्रुव की बात चली है तो ये गीत तो हम आपको सुनवाएंगे हम लगे हाथों आपकी बेटी इशिता जी की भी बात कर लेते
0: जी जी
1: ध्रुव और इशिता की बात इस वक्त हम कर रहे हैं वो भी कला और अभिनय की दुनिया से जुड़ी हुई है
0: जी वो गाती भी बहुत अच्छा है पर पता नहीं क्यों नहीं पब्लिकली गा रही है पर गाती भी बहुत अच्छा है
1: तो क्या कभी ऐसा हुआ इला जी की पुरानी कला और नई कला के बीच में या जो बदलते तौर तरीके हैं युवा पीढ़ी की ओर से उस सोच को लेकर कभी आप दोनों में कोई टकराहट हुई?
0: किस वक्त नहीं हुई हर वक्त टकराहट होती है क्योंकि वो ट्रेडिशनल भी वो तो उन्होंने देखा है कि मैं मेरी माँ को पुनः जी रही हूँ पर वो महाराष्ट्र में रही हैं और मराठी तो आपने देखा फरफट बोलती हैं वो तो बहुत ज्यादा बिंदास भी है ह्यूमर भी अच्छा है पर मैं उनसे बराबर ये बात कहती हूँ कि मैं पुराने को इतनी आसानी से नहीं भूल सकती हूँ पुराने ने जो दिया वही हमारी ताकत है टकराहट होती है पर वो वाद विवाद अच्छा है मेरे लिए भी अच्छा है मेरे लिए भी अच्छा है कि मैं इतनी भी ना मैं अपने अंधकूप में घुस जाऊं कि मैं कहूँ नहीं हम ही अच्छे हैं तो ये जो समन्वय है ये नए और पुराने का इशिता का मतलब ही है गॉड गिफ्टेड पावर विच कैन अट्रैक्ट एनीबॉडी ईश्वर प्रदत्त शक्ति जो सबका मन मोह ले तो मुझे लगता है कि टकराहट के साथ भी कहते हैं ना पहला नाद आया था टकराहट से तो मेरी जीवन का नाद है नाद स्वर है और ये टकराहट मुझे पसंद है
1: जी और ये टकराहट होनी चाहिए हेल्दी टकराहट
0: ना वो दबी रहे ना मैं दबी रहूं और इससे कुछ अच्छा निकल के आए तो अच्छी बात है।
1: चलिए तो पहले चरखा लोकगीत सुन लेते हैं
0: जी
1: क्योंकि बात ध्रुव और इशिता की हमने की तो आप अपनी ग्रैंड डॉटर को नहीं भूल सकती है आपने बातचीत करते समय उनका जिक्र किया था
0: उनका एक गाना बाद में सुनाइएगा
1: और उस पर आपके विचार भी लेंगे कि किस तरह से आप गीतों को जीती हैं
0: जी
1: अभी एक चरखा लोकगीत सुनते हैं
0: जरूर

0: मुझे ये कहना है केक तो बड़ा अच्छा है
1: जी,
0: लोग पता नहीं देख पा रहे हैं, यहाँ जो 70 साल मन रहे हैं
1: जी,
0: यानी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव है, कोई अनाउंसर है, कोई स्टेशन डायरेक्टर है, सब डांस कर रहे हैं इस पे, वैसे ही जैसे राजस्थान में चरखी पे डांस होता है। पर यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगी कि मैं जितने भी शोज बाहर भी मैंने किए और यहाँ भी किए हैं, मैं लंगा और मांगनियार
1: जी,
0: ये जो हमारी कम्युनिटी है, ये जो आपने आलाप सुनी होगी,
1: बिल्कुल,
0: तो जब ये पहली बार रिकॉर्ड कर आए ना, तो मैं तो इनके बाप दादों के साथ कर चुकी हूँ। तो जब एक एक लड़का आया, उसको मैंने कहा, उसने कौन सा गाना है, अरे मैंने कही तो तुम्हारा ही गाना है, तुम्हारे दादाजी गाते थे
1: जी।
0: तो देखिए मैं उनके गाने को प्यार कर रही हूँ, और वो लोग जो हैं, वो लोग सब कुछ आज के पॉप पॉप बनना चाहते हैं, सनग्लासेस लगाना चाहते हैं, जर्सी पहनना चाहते हैं, और मैं चूड़े पहनना चाहती हूँ, मैं टैटू कराना चाहती हूँ, चाहती नहीं हूँ, ये फैशन नहीं है,
1: नहीं ये आपके अंदर है,
0: ये मैंने मुझे अगर मैं ना पहनूं, सॉरी बच गए होंगे ये, तो मैं उतारने वाली थी, पर मैंने आज क्यों नहीं उतारे, हर स्टूडियो में मेरा ये झुमका छूट जाता है।

0: क्योंकि वो टन टन करता है। फिर वो स्टूडियो की इंजीनियर जैसे अभी आई थी, उन्होंने कहा आपका कुछ बज रहा है, तो मैंने कहा ठीक है पर उतारूंगी नहीं। हर बार उतारती हूँ वो वहीं रह जाता है।
1: बहुत अच्छी बात, लेकिन आज आपको नहीं उतारना है। और पता है अभी जब सभी लोग डांस करने लगे थे तो लगा कि हम जैसलमेर आ गए हैं, रेगिस्तान के धोरों में आ गए हैं। आपने विविध भारती के स्टूडियो को एक तरह से रेगिस्तान के धोरों में तब्दील कर दिया।
0: मुझे बहुत मजा आया, एक्चुअली उन्होंने मुझे जोश दिलाया
1: जी। तो हमारे श्रोता भी कह रहे हैं कि आज एला जी को लाइव देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। बचपन में दूरदर्शन पर इनके गाने बहुत देखने सुनने को मिलते थे। और लिखते हैं कि आप भी एक गीत गाकर हमें बताइए, क्योंकि हम आपको सामने से गाता हुआ देखना चाहते हैं। तो एक गीत आपसे हम गवाएंगे, लेकिन चूंकि
0: ये मत करिएगा, क्योंकि क्या है कि ये जो उम्र का एक वफा गुजर गया, तो उसके बाद मैं अब गाऊंगी तो कहीं ऐसा ना हो कहे अब आप गाइए ही मत, अब आप बंद कर दीजिए।
1: नहीं नहीं, हमारी श्रोता बिल्कुल आप सुनेंगे और एक ही लाइन आपसे सुनेंगे, लेकिन अभी नहीं।
0: हाँ अभी मुझे थोड़ा रेस्ट दीजिए, क्योंकि कल ही मुझे डॉक्टर ने कहा था कि देखिए आपको कुछ दिन का, क्योंकि परसों मैंने एक नाटक किया था लाइव है ना, तो सच बोलना चाहिए, तो मैंने बहुत जोर का बोला, तो उन्होंने कहा कि आपने थोड़ा उसको डैमेज किया हाँ। या तो आप थोड़ा वॉइस रेस्ट लीजिएगा और कुछ नली दी मुझे ऊं करके पानी में करना है, वो सब हुआ। दूसरा मैं गांधारी का रोल बहुत अच्छा करती हूँ, तो जब मैं वो श्राप देती हूँ ना तो कृष्ण जी अगर होते उससे मेरी आवाज श्राप से जाती रही, तो कोई बात नहीं देखते हैं आगे क्या होता है।
1: बिल्कुल, हमारे पास वक्त कम है और हमारे श्रोता बहुत कुछ आपके बारे में जानना चाहते हैं। आपके पति पर हम बात करते हैं, आपके जो अधिकारी नेवी अधिकारी रहे अरुण जी, उनकी जिंदगी जो है समुद्र और सफर से जुड़ी रही हमेशा, और आपकी दुनिया गीत संगीत की मिठास से लगातार जुड़ी रही। तो कभी ऐसा हुआ कि समुद्री सफर में और आपके सुरों के सफर में कभी टकराव हुआ हो, भूचाल आ गया हो, या फिर किस तरह का योगदान आपके अरुण जी का आपके जीवन में रहा?
0: अरुण जी मैं बताऊं, जैसे कि जहाज पे लंगर कहते हैं ना, एंकर, एंकर बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, नहीं तो जहाज हिलने लगता है।
1: जी बिल्कुल,
0: अरुण जी मेरी जिंदगी के बहुत ही सशक्त एंकर रहे हैं, ही हैज ऑलवेज एडमायर्ड। और एक आर्टिस्ट को सबसे ज्यादा जरूरत होती है स्पेस की, और उन्होंने मुझे ये स्पेस दी। अगर आप खुला छोड़ेंगे तो जैसे मम्मी कहती थी कि जैसे जहाज को पंछी पुनः जहाज पर वापस आए, वो हाल है। उन्होंने मुझे उड़ने दिया और मैं कभी भी इस बात को भूलूंगी नहीं। सो दैट्स ए वेरी गुड एडजस्टमेंट। वो आर्टिस्ट नहीं पर आर्टिस्ट की कद्र करते हैं, जैसे मैं अपना उठती हूँ, मेकअप होता है, ये करते हैं, ही ऑलवेज एडमायर्स। और हो सकता है अभी सुन रहे हो तो शायद अरुण का मतलब, अगर मुझे करेक्ट करिए, जैसे सूर्य पृथ्वी का होता है, पृथ्वी उसकी धुरी पे, पृथ्वी की धुरी पे सूर्य घूमता रहता है, तो वो ही हमारा संबंध है। और मैंने अरुण जी के साथ तीन चार वॉयज भी किए, मतलब मैं 35-35, 40-40 दिन, उन दिनों में जब मैं बहुत यंग थी, तो मैंने दुनिया के तीन चार चक्कर काटे हैं।
1: आप अभी भी उतनी ही यंग हैं।
0: तो वो जो अकेलापन होता है ना, वो आपको और मौसिकी, आपके अंदर की कवित्री जगती है, आपके अंदर के सुर जगते हैं। बट ही हैज बीन नेवर हर्डल, ये तो मैं दावे के साथ कहती हूँ कि हर औरत को जीवन साथी ऐसा मिलना चाहिए जो उसको उसके लिए थोड़ी सी स्पेस दे।
1: जी जी,
0: क्योंकि औरत जो है ना वो खिलती है
1: जी।
0: अगर आपको वो हर मिनट क्वेश्चन करते रहेंगे, आप सब भी आ रहे हैं, काम पे आ रहे हैं, तो फिर बात बिगड़ जाती है
1: जी।
0: या हो सकता है अगर कलाकार से शादी की होती, कहीं हमारा ईगो ही ना टकरा जाता, तो अच्छा है। मतलब सब कुछ ठीक है। हाँ श्रोता हूँ, मेरी जिंदगी में सब ठीक चल रहा है।
1: बिल्कुल, आपकी जिंदगी में बिल्कुल सही चल रहा है। और चूंकि आपकी जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है, आपने अभी अपनी बेटी और दामाद को लेकर बात की, अभी हमने अरुण जी के बारे में बात की, और आप हमसे जब फोन पर बात कर रही थी तो बार बार अपनी ग्रैंड डॉटर की बात कर रही थी कि उन्हें नए गाने बहुत पसंद है। आपने कहा टन टन तारा और इससे के गाने।
0: अरे मैं इसका जो की बता रही हूँ, उनका नाम है, एक का नाम है अमाला, एक का नाम है अलाया। अमाला जब पैदा हुई थी ना, तो ये गाना कोई मान नहीं सकता कि इलारू बजाएगी, यानी इतना बड़ा उनका खोपड़ा था और उस समय उनके बाल नहीं थे। दिल ने मारी टंक मारी टन टन टन टन, तो वो मुझे अभी तक याद है। पर दोनों बच्चे उनके, क्योंकि पिताजी म्यूजिक से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं, दोनों पियानो बजाते हैं, दोनों गाते हैं। अब मेरी ये कोशिश रहेगी कि उनमें से कोई रेशम करुमाल एक दिन गाए, क्योंकि ये बम्बई के बच्चे तो अंग्रेजी गा रहे हैं, वो मेरा दुख है। पर मैं चाहती हूँ कि वो राजस्थानी भी सीख जाएं या हिंदुस्तानी।

0: पर वो इंडियन क्लासिकल भी सीख रहे हैं तो सुर तो है कहीं ना कहीं। देखते हैं
1: पसंद अभी उम्र के मुताबिक है,
0: स्कूल भी है उम्र के मुताबिक है, पर बहुत ज्यादा वो म्यूजिक को समझती हैं, पियानो बजाती हैं, क्लासिकल सीखती हैं, और पिताजी तो बराबर लगे रहते हैं तो
1: उनको समझाने में।
0: तो भारत की संस्कृति, जरूरी नहीं कल को कोई डॉक्टर बने, कोई लॉयर बने, पर ये तो आना चाहिए
1: जी,
0: क्योंकि हमारे उसमें है।
1: आप कह रही थी हमसे डॉटर की बात, तो आपने कहा कि मंदाकिनी पुराने गीतों में प्रेम शब्दों में नहीं होता था, भावनाओं में, पुराने गीतों में ठहराव होता था
0: जी,
1: भावनाएं होती थी, इशारे होते थे और उसमें हम प्रेम करने लग जाते थे। लेकिन आजकल तो टन टना टन टन टन तारा करते हुए हम गर्दन हिलाते हैं, नायक या नायिका से प्रेम हो जाता है,
0: शब्द और लिरिक्स रहे नहीं है ना।
1: जी जी, तो आप इस पर भी चाहती थी कि मैं कुछ कहना चाहूंगी कि कितना अंतर आ गया इन गीतों में। एक जमाने में महान गीतकार किस तरह की गीतों को रचा करते थे और आज थोड़ा
0: क्योंकि उसके पीछे की जो टीम होती थी, जहाँ इंदिवर जी लिख रहे हो, आनंद बख्शी लिख रहे हो, नीरज जी लिख रहे हो, और उस समय की हमारी सोशल वैल्यू भी ऐसा था कि कलम से और हारमोनियम तक पहुंचने का जो एक वो था जर्नी थी, वो बहुत ही भावनात्मक स्तर थी। समाज ही बदल गया ना, कहते हैं समाज साहित्य का दर्पण है।
1: बिल्कुल।
0: तो अभी जब सारे लोग इस पे डिस्को पे डांस कर रहे हैं तो वो धुने हैं, और मैं चाहूंगी कि एक गाना आप जरूर सुनाए कि वो है मैं ना पहनू थारी चुनरी, जो मैंने लिखा है और उन कुंवारी लड़कियों के लिए लिखा है जो अपने घर से विदा होती हैं। मारे बाबू सा ने चुनरी रंगाई, मारो जियो उस चुनरी में जाए, मैं ना पहनू थारी चुनरी, जो चुनर तुम लाए हो वो नहीं पहनूंगी, मैं बाबू सा की चुनरी पहनूंगी।
1: कितनी बड़ी,
0: मैं अभी तक पुराने शब्दों को लाने की कोशिश कर रही हूँ, पर उलझुल शब्दों में भी कुछ तो है। किसी को कमेंट करने की स्थिति में नहीं, जो चल रहा है उसे चलने दो और जीवन को जियो, यही मेरा कहना है।
1: तो अभी आपकी ग्रैंड डॉटर की पसंद का गीत
0: टन टन टन
1: टन टन,
0: ठीक है।

0: मेरी आंखों के आगे ना उनका बिना बालों का सर याद आ रहा है। वो तो लिटरली कार में मारती थी।
1: जी जी,
0: टन टन टन।
1: दिल में घंटी तो हमारी बजी चुकी है और आपने तो कहा कि आपकी घंटी दिल में बहुत बार बजी थी।
0: क्या करूं, कलाकार ऐसे होते हैं।
1: तो हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि वाह, बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है और राजस्थान लोग की बात करते समय दो राजस्थानी महिलाएं, अरे विविध भारती के स्टूडियो में अगर आज हैं तो इससे बेहतर और क्या होगा। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत ही बिंदास हैं इला जी और बहुत अच्छा लग रहा है उनका ये बिंदास रूप देखकर, आज तो बड़ा सुंदर समा बंध गया है।
0: थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
1: तो इला जी, जब बात चल रही थी कि दिन में घंटी कब बजती है आपसे, जब हम पर्दे के पीछे बात कर रहे थे इस इंटरव्यू से पहले, तो आपने कहा था कि प्रेम और जवानी इस विषय पर हम जरूर बात करने वाले हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं, मैं भी, कि लापसिंह ठक्कर का एक नाटक किया था मैंने, पीला गुलाब और मैं। उसमें नायिका कहती है कि जब मैं अपने डायलॉग्स बोलती हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और वो अपने पति से कहती है कि वही डायलॉग जब मैं रात को तुम्हारे साथ बोलती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं नाटक कर रही हूँ, मुझे वो असल का एहसास क्यों नहीं होता कि मैं सचमुच तुमसे प्यार करती हूँ। और इसी उधेड़बुन में लगभग पगलाई सी हो जाती है कि ये क्या है, सच्चाई क्या है। तो अपने पति से सवाल करती है कि क्या सच है, मतलब मैं

0: के डायलॉग बोल रही हूँ या सचमुच मैं तुम्हें
1: रियल एंड रियल?
0: हाँ, तो आपके जीवन में आपने पर्दे के पीछे प्रेम के कितने ही रंग जिए होंगे और आपकी आवाज में भी जो मोहब्बत का एक पैगाम लोगों को तक पहुँचता है, महिलाओं तक पहुँचता है, एक कलाकार जब जिंदगी भर प्रेम का अभिनय करता है, प्रेम भरे गीत गाता है, तो क्या सचमुच वो प्रेम को महसूस करता है या उनके अपने जीवन में प्रेम उसे एक रटा रटाया वाक्य सा लगता है या रटा रटाया सा भाव लगने लगता है? आप क्या सोचती हैं?
1: ये बड़ा टेढ़ा सवाल है पर सवाल है कि हम नाटक में ही कहते हैं कि जब भी अपनी लाइनें कहो तो ये मत सोचो कि तुमने पहले कही है।
0: जी, जी
1: अगर पहले रटा रटाया करेंगे ना तो वहां भी एक स्टैग्नेशन, एक आपका मतलब वो फीलिंग होगी नहीं। हम जब कोई नाटक करते हैं, खास तौर से मैं, तो उस पल को मैं जीती हूँ। वो हर पल नया होता है, चाहे नाटक का 200 एपिसोड यस नाटक किया जा चुका हो, पर ये बात वास्तविकता में आप कहेंगे कि क्या यही डायलॉग, क्या मैं कहूंगी अपने आप? बताइए कि मैं घर से निकलूंगी, लो मेरे लाल गुलाब, मैं निकल रही। धीरे धीरे क्या होता है, समय के साथ जब जिंदगी शुरू की जाती है तब वो रोमांस होता है, सभी की जिंदगी में हुआ होगा, मेरा भी हुआ होगा। फिर धीरे धीरे जीवन सामने आता है और जीवन में जितना एडजस्टमेंट हम करते हैं वो हमारा रोमांस है। आई कैन नॉट बी ड्रामेटिक विद माई हस्बैंड। अगर वो ये सोचे कि वहाँ ये कह रही थी, यहाँ ये कह रही है कि वो गैस वाले का बिल नहीं आया, तो उसमें भी कंसर्न है ना
0: जी।
1: तो वो जितना रियाज करेंगे आप भावनाओं का, और वो कहीं ना कहीं आपके जेस्चर्स बोलने लगते
0: जी,
1: हैं
0: जी, जी।
1: डायलॉग नहीं होता है, जेस्चर्स आपके बोलते हैं कि आपका कंसर्न्स क्या है, जो भावनाएं क्या हैं। तो बड़ा डिफिकल्ट है। और एक मैंने पहले भी अपने हस्बैंड को कहा था और सबसे कहती हूँ कि कलाकार दरअसल एबनॉर्मल होता है। उसको आप थोड़ा तो सोच लें कि आम व्यक्ति जैसी नहीं है, ये थोड़ा अगर उसका
0: टेढ़ा होता है,
1: टेढ़ा होता है, वो सच्चा भी होता है
0: जी, बिल्कुल।
1: वो कल्पना में भी होता
0: जी,
1: है
0: जी।
1: और उसकी सच्चाई कभी कभी उससे टकरा भी सकती है। एवरीथिंग इज गुड विद मी, नो
0: जी,
1: ये सही नहीं,
0: उसको मैनेज करना,
1: उसको मैनेज करना
0: और
1: पड़ता है।
0: इला जी, बहुत हम समय को भी अब मैनेज कर रहे हैं
1: जी।
0: एक अंतिम सवाल के बाद एक लाइन आपको हमारे श्रोताओं को गा के सुनानी है, रेशम का रुमाल पर। अनु मलिक साहब हमारे जाने माने,
1: उनको मत आने दीजिए, उन्होंने गाना गवाया था दरवाजा खुला छोड़ा है नींद के मारे, मैं पूरे होश में हूँ, मैं आज दरवाजा नहीं खोलूंगी। अच्छा नहीं, ये गाना मैं सुना नहीं सकूंगी।
0: अनु मलिक जी आने वाले हैं, उनके साथ बिताए पल आप याद करेंगी जब अभी आप उनसे मिलेंगी
1: जी।
0: तो दो शब्द अनु मलिक जी के लिए कहिए और फिर रेशम का रुमाल की एक लाइन गाते हुए आप इस।
1: दरअसल मेरा, मैंने जैसे कहा, गला बहुत खराब है, पर आप कहेंगे तो मैं गाने की कोशिश करूंगी
0: जी, जी।
1: और क्योंकि मुझे वाकई में प्रॉब्लम है। अनु मलिक जी के साथ पहली फिल्म मैंने करी थी जाल, और वो शायद आज कह भी सकते हैं कि पहला ब्रेक उन्होंने कमर्शियल फिल्म में दिया। वैसे जगजीत सिंह जी के साथ मैंने आशियाना की थी तो वो बड़े अच्छे, इज ए नेचुरल पर्सन, मतलब वो भी हुड़क में रहते हैं और उस हुड़क में हमारा समय समाप्त हो गया शायद।
0: तो रेशम का रुमाल की एक लाइन हो जाए,
1: आप गाना सुना दीजिए वो ज्यादा अच्छा रहेगा। रेशम का रुमाल गले पे डाल के तुम आ जाना दिलदार मेरे माँ।

तो दोस्तों हमारे दरवाजे पे बहुत सारे कलाकार अनु मलिक साहब भी आ गए हैं और उनके साथ बहुत सारे लोग अंदर आ गए हैं। आज का ये मैटिनी शो यहीं समाप्त होता है। आप सभी का साथ बना रहा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मैटिनी शो से अब अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से भारत लाने पर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि नवप्रीत सिंह नवाब विर्क के नाम से तुर्की की नागरिकता प्राप्त करके अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करता था। श्री शाह ने कहा कि एजेंसियों ने उसकी असली पहचान उजागर करने के लिए हर संभव प्रयास किए और उसे निर्वासित कराया। इस सफलता के लिए सभी एजेंसियों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार दिसंबर 2029 से पहले हर मादक पदार्थों के गिरोह को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने व्यापारिक बाधाओं, डंपिंग और अनुचित मूल्य निर्धारण के समाधान के लिए विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप उपायों की मांग की है। अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा कि कुछ देशों में सरकार की मदद से आवश्यकता से अधिक उत्पादन हो सकता है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। श्री गोयल ने कहा कि देश 140 करोड़ लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भरोसेमंद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बन गया है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि
2: इतने बड़े पर्यंत कार्यक्रम रिली करी प्रचार करलो आकाशवाणी दिल्ली रू आकाशवाणी बारीपदा श्रोताबंधु स्टूडियो घड़ी समय वर्तमान मध्याह्न 12 आरंभ करुछु झुमर संगीत कार्यक्रम परिवेशन करिछन्ति शिल्पी विदेशी महंत एवं साथी।
3: भाई ये महंगा जोगो को इलेक्ट्रिक बिल भारी टेंशन दोची
4: काई तू जानी।

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द लाइव अपडेट ऑफ द ऑनगोइंग एशियन गेम्स 2026। दोस्तों मैं हूं साक्षी मांडवाल, मेरे साथ यहां पर मौजूद है मोहम्मद शाहिद आजमी और हम लेकर आ गए हैं आपके लिए इस वक्त के सबसे अच्छे अपडेट्स, बड़े अपडेट्स, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मुकाबले की। द T20 मैच दैट इज प्रेजेंटली ऑन फॉर द गोल्ड मेडल, इंडिया वन द टॉस, डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट और पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने एक बहुत ही विशाल स्कोर 211 का 20 ओवर में बनाया फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स, जिसमें दो बल्लेबाजों की बहुत अहम कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे। उसमें एक थे अभिषेक शर्मा who made 61 in 28 balls which include 3-4-7 sixes and the other one was ईशान किशन, my apologies, the other one was तिलक वर्मा who made 51 in 22 balls। ईशान किशन की भी हम कह सकते हैं साझेदारी जो रही तिलक वर्मा के साथ वो बहुत जरूरी रही, क्योंकि उसी ने बूस्ट दिया तिलक वर्मा को हाफ सेंचुरी बनाने के लिए और साथ ही साथ भारत को एक बहुत ही सॉलिड टोटल पर फिनिश कराने के लिए। बदले में हमने देखा जब पाकिस्तान अभी बल्लेबाजी करने उतरी है तो उन्होंने अपने निर्धारित 20 ओवरों में से 8 ओवर हो चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान ने सिर्फ 51 रन अभी तक बनाए और 3 विकेट उनके जा चुके हैं। एंड वी कैन से दैट इट इज द अक्षर पटेल शो दैट हैज बीन सो फार ऑन, क्योंकि साहिबजादा परान को अक्षर पटेल ने कैच पकड़ के आउट किया वॉशिंगटन सुंदर की गेंद पे, मां सदाकत भी आउट हुए तो अक्षर पटेल की गेंद पे हुए, उस्मान खान भी जो इनके विकेट कीपर है उनको भी अक्षर पटेल ने ही आउट किया। तो एक तरीके से बापू शो इज ऑन राइट नाउ।
2: जी बिल्कुल, क्रिकेट में हम बिल्कुल गोल्ड मेडल के करीब पहुंच रहे हैं, लेकिन एक गोल्ड मेडल की बात कर लेते हैं जो सुबह आया। प्रणवी उर्स ने एशियन गेम्स में इतिहास रचते हुए महिला व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले में स्वर्ण पदक जीत लिया। जी हां, 23 साल की प्रणवी एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला गोल्फर बनी है। प्रणवी ने 15 अंडर 265 स्कोर के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। उन्होंने आखिरी होल पर शानदार संयम दिखाते हुए पार खेला और सिंगापुर की शैनन सुआन टिन टैन तथा चीन की तीन रूम को एक शॉट पीछे छोड़ दिया। इसके बाद महिला टीम स्पर्धा में भी भारत ने रजत पदक अपने नाम किया। प्रणवी उर्स, अदिति अशोक और दीक्षा डागर की भारतीय टीम ने 4 राउंड

0: 14 अंडर 546 का स्कोर किया, चीन ने 22 अंडर 538 के साथ स्वर्ण, और चीनी ताइपे ने 10 अंडर 550 के साथ कांस्य पदक जीता। वहीं पुरुषों की बात कर लेते हैं, वीर अहलावत छठे स्थान पर चल रहे हैं।
1: जी आश्री रिकर्व में भी आपको कुछ अपडेट्स दे दें, क्योंकि भारत की तरफ से धीरज बम्बा दिवारा और नीरज चौहान केम फेस टू फेस फॉर द ब्रॉन्ज मेडल मैच, और हमने देखा कि नीरज वाज एबल टू सिक्योर द ब्रॉन्ज मेडल इन हिज नेम। दिस वाज अ मैच दैट हैपेंड बिटवीन टू इंडियन शूटर्स कैन वी से। सो धीरज स्टार्टेड विद एन 8 बिफोर नीरज शॉट अ 10, धीरज हिट अ 10 फॉलोड बाय अ 9 बाय नीरज, धीरज देन अगेन वेंट ऑन टू हिट अनदर 10 एंड थेरबाय द मैच वाज वन बाय नीरज 6-4 की लीडिंग पर टू सिक्योर द ब्रॉन्ज मेडल इन हिज नेम। आपको बता दें कि साउथ कोरिया फिनिश्ड ऑफ विद द गोल्ड इन द मेंस इंडिविजुअल रिकर्व, डिफीटिंग जापान्स जूनियर नाकानिशी 6-2 इन द फाइनल। एज अ रिजल्ट वी सॉ दैट जापान गॉट द सिल्वर व्हाइल भारत के नीरज चौहान टुक द ब्रॉन्ज मेडल।
0: जी कुश्ती से भी हम दो पदक यानी दो गोल्ड मेडल की उम्मीद कर सकते हैं। अमन सहरावत ने 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल में सेमीफाइनल में कमाल की वापसी करते हुए फाइनल का टिकट कटा लिया है। ताजिकिस्तान के आयाल बोलोस्कूबी को खिलाफ उनका जो मुकाबला था, अमन ने पहले पीरियड में 2-6 से हालांकि वहां ट्रेल कर रहे थे, पीछे थे, लेकिन दूसरे पीरियड में भारतीय पहलवान ने ऐसा पलटवार किया कि मुकाबले का रुख बदल दिया। अमन ने दूसरे पीरियड में 12 अंक बटोरे और आखिरकार 14-8 से मैच अपने नाम कर लिया। अमन सहरावत का फाइनल मुकाबला बेहद सख्त होने की संभावना है, क्योंकि उनके सामने डीपीआर कोरिया के चांग सॉन्ग हान होंगे जो पुरुषों के 57 किलोग्राम की वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप पर है। वहीं अमन की मौजूदा रैंकिंग 20। खैर जब बात पहलवान की हो और मैट पर पहलवान उतर जाता है तो कागज पे क्या लिखा वो धरा का धरा रह जाता है। वहीं महिला 53 किलोग्राम में अंतिम पंखाल पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए फाइनल में पहुंच गई हैं। उनके बारे में बताएं तो 53 किलोग्राम का खिताबी मुकाबला उनका सामना होगा 19 वर्ल्ड नंबर 19 की क्योंकि मोए से जापान की खिलाड़ी है। हालांकि यहां पर अंतिम पंखाल मजबूत स्थिति में, वर्ल्ड नंबर 1 अंतिम पंखाल यहां पर गोल्ड मेडल जीत सकती है।
1: Right, and also a quick update from the world of volleyball, जहां Indian men's volleyball team finished 6th after losing their 5th and 6th place match to Thailand 3-2. India's campaign included a stunning fight back against Qatar, but a defeat to Pakistan ended their hopes of reaching the semi-finals. And as a result, भारत की men's volleyball team ने इस Asian Games के अंदर इस हार के साथ अपने इस सफर का भी यहां पर समापन कर लिया। और आपको ये बता दें, भारत आज क्योंकि भारतीय representation का Asian Games का last day, और officially भी हम बात करें तो majority of the games today get over in the ongoing Asian Games 2026. कल एक ही या दो मुकाबले रहेंगे, तो अब भारत अभी प्रेजेंटली है 5वें स्थान पर मेडल टेबल पे 80 मेडल्स के साथ, जिसमें 18 गोल्ड 26 सिल्वर 36 ब्रॉन्ज है। और अगर भारत चाहता है कि वो चौथे स्थान पर समाप्त करे ongoing Asian Games 2026 में, तो उनको चाहिए कि वो उज़्बेकिस्तान ने जिन्होंने अभी तक 20 गोल्ड कमाए हैं उनके इन गोल्ड मेडल्स को पार करके कम से कम 22 या 21 या 23 गोल्ड मेडल्स अपने नाम कर सके। क्या भारत ही कर पाएगा, दिन की समाप्ति तक हमें पता चल जाएगा। फिलहाल मुझे साक्षी मांडवाल और मेरे साथ साथ मोहम्मद शाहिद को दीजिए इजाजत, हम जुड़ेंगे आपके साथ एक बार फिर से दोपहर के 1:30 बजे। थैंक यू।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: 400-500 कितनी ट्यून सुनाई उनके धनाधन, और एक दिन उनने कहा चल आज सिटिंग करते हैं, और बच्चन साहब के साथ सिटिंग हुई।
4: हाँ
3: बच्चन साहब ने रिएक्शन तो कुछ दिया नहीं, वो कम बोलते हैं, बहुत कम बोलते हैं, बस चुप के सुनते जा रहे थे। लेकिन आधे घंटे के गाने के बाद, 1.5 घंटा गाया मैंने, उन्होंने बोला, फिर अचानक मनमोहन जी ने बोला उनसे कैसा लगा, और बाहर आके मुझे बोलते हैं तू अपनी शर्ट तो नहीं फाड़ेगा। यू आर नाउ सेंट फॉर मर्द।
4: क्या बात।
3: सो आई वुड थैंक अमिताभ बच्चन साहब फॉर एक्सेप्टिंग मी अ न्यू बॉय। आई वुड थैंक मनमोहन देसाई साहब, अगर बच्चन साहब ने हाँ नहीं बोला होता, मनमोहन जी ने हाँ नहीं बोला था, अन्नू मलिक आपके सामने बैठे ये बातें नहीं कर रहा होता।
4: बहुत सही बात है।
3: उमेश मेहरा साहब ने मुझे सोनी मेवाल दी
4: जी,
3: राजीव मेहरा साहब ने मुझे एक जान एम दी
4: जी,
3: एफसी मेहरा साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा मेरी जिंदगी में, जैसे हरमेश बल्होत्रा, उससे पहले सलीम अख्तर साहब,
4: बिल्कुल
3: ये सब लोग बड़े।
4: एक चीज मुझे याद आ गई, मर्द में कुछ बड़े म्यूजिक बड़े लिरिसिस्ट थे जैसे राजेंद्र कृष्ण।
3: बहुत अच्छा आपने सवाल उठाया, वो थे ज्यादातर एक्चुअली वो तूफान में थे, अल्लाह रखा तूफान में।
4: हाँ
3: लेकिन इसमें
4: प्रयागराज जी
3: थे, किकला साहब थे, मिलजुल कर मैं जब ट्यून सुना रहा था सब अपने

0: करते जा रहे थे कि अन्नू की ट्यून इतनी अच्छी है, हम कैची वर्ड लिखेंगे। मनमोहन देसाई वॉज अ फैबुलस डायरेक्टर, ऐसा डायरेक्टर दुनिया में नहीं आएगा।
1: मतलब कभी कोई खींचतान हुई किसी ट्यून को लेके किसी
0: बहुत बहुत बहुत, मैंने तो बैकग्राउंड भी किया था इस फिल्म का। खींचतान इसलिए हुई क्योंकि मेरे अंदर तो ये था ना कि मैं जिस बैनर में काम कर रहा हूँ वह एमकेडी फिल्म्स है और जिसका संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, हमारे गुरु। और अगर अच्छा संगीत होता तो अलग बात होती, लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने तो लाजवाब संगीत दिया था, लाजवाब। अमर अकबर एंथनी देख लो, नसीब देख लो, कूली देख लो, कोई भी फिल्म उठा लो उनकी, मतलब सुपर ड्यूपर हिट गाने। अब मनमोहन देसाई साहब अन्नू मलिक को ले रहे हैं, एक्सपेक्टेशन तो बहुत
1: हाई
0: हो गया था।
1: यस,
0: अब मैं गाने क्या बनाऊं? तो मैंने बड़ा अतरंगी उल्टे स्टाइल के गाने बनाए।
1: हाँ,
0: अगर आप मर्द के गाने सुनोगे, मैं बोला हटके बनाना पड़ेगा।
1: और वो
0: दिमाग में ये बात थी कि when you're just 22-23 years old, सामने मनमोहन देसाई बैठा है, इट इज नॉट इजी, क्योंकि मनमोहन जी के कानों में कल्याण जी आनंद जी के सुर थे।
1: बिल्कुल,
0: मनमोहन जी के कानों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के सुर थे, मनमोहन जी के कानों में रफी साहब की आवाज थी। अनफॉर्चुनेटली रफी साहब चले गए थे उस वक्त
1: जी,
0: हमारे पास वो सिंगर नहीं था जो, और उन्हें रफी साहब की आवाज से ज्यादा किसी की आवाज पसंद नहीं थी
1: बाकायदा।
0: तो उस वक्त मैं मुखड़े सुनाता था जो मैंने अपने मुखड़े लिखे हुए थे, कैची मुखड़े, लाइक सुन रूबिया तुमसे प्यार हो गया, प्यार हो गया क्या करें, सुनने को ये तरसता था दिल, चल जल्दी से शादी करें, मैं तेरी टांगे वाली। मन मुझे उछल गए, बोला तू मेरी, तू गाना नहीं बना रहा है सिर्फ, तू मेरे सीन लिख रहा है। दैट वॉज अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम मनमोहन देसाई कि मेरा सीन है कि टांगा वाला कौन है, अमिताभ बच्चन। इश्क प्यार हो गया क्या करें, सुनने को ये तरसता था दिल, चल जल्दी से शादी करें, मैं तेरी टांगे वाली। मन मुझे उछल गए, बोला तू मेरी, तू गाना नहीं बना रहा है सिर्फ, तू मेरे सीन लिख रहा है। दैट वॉज अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम मनमोहन देसाई कि मेरा सीन है कि टांगा वाला कौन है, अमिताभ बच्चन। इश्क करता है इस लड़की से, तो उसका आपने ये नहीं कहता कि तू मेरी जान है या मेरी जानम है, तूने कहा सुन रूबिया, लड़की का नाम रूबिया, तुमसे प्यार हो गया, डायरेक्ट है, प्यार हो गया क्या करें, सुनने को ये तरसता था दिल, चल जल्दी से शादी करें, या छोड़ दिया। मन मुझे सोचता आगे क्या आएगा, और सर ये लाइन डालता हूँ, मैं तेरा टांगे तू मेरी टांगे वाली, मैं तेरा टांगे वाला, मतलब टांगे वाले की शादी टांगे वाले से हो रही है, मैं टांगा चलाता हूँ तो मुझे इश्क करती है, एंड वो उछल गए। या फिर वो गाना था, कहने की तो बात नहीं है फिर भी रहा न जाए, विल यू मैरी मी। उस जमाने में टू गेट अ न्यू इंग्लिश वर्ड अभी ट्रेंड हो गया है, उस जमाने में बड़ी नई बात थी।
1: बिल्कुल,
0: वाइज सिंग विल यू, ऐसे सर क्या मुझसे शादी करो, मैंने नहीं सर ऐसा मत करेंगे। सर कहने की तो बात नहीं है फिर भी रहा न जाए, विल यू मैरी मी। और लड़की कहती है नो नो सॉरी जी। सो एवरी सॉन्ग बिकेम अ चार्ट बस्टर बिकॉज ऑफ इट्स फ्रेशनेस, ऑफ इट्स न्यूनेस। और बच्चन साहब ने कैरीड इट टू अ डिफरेंट लेवल, अमृता जी थी उसके अंदर, उसमें दारा सिंह साहब थे, उसमें क्या क्या गाने पिक्चराइज किए गए, माहौल क्या था वो।
2: बिल्कुल बिल्कुल। अब जो है बातचीत को फिर से बदलते हैं, और अब मैं एक ऐसे गाने के साथ बात को आगे बढ़ा रहा हूं जिस गाने में एक नशा है, इस गाने में एक तरंग है।

बीच इस गाने ने अपना जादू बनाया है। अस्सी के दशक से नब्बे के दशक में आ गए विविध भारती लाइव 70वें वर्ष में प्रवेश।

0: अनु जी बाजीगर फिल्म का ये गाना, मैंने बाकी तमाम गानों को छोड़कर इस गाने की बात की है, कोई तो बात होगी।
1: मैं समझता हूँ इसलिए बात होगी, मैं देखिए ये जो फिल्म का गाना आपने बजाया है
0: जी,
1: पंकज उदास जी की आवाज में बजाया है आपने, और इसको बाद में गाया था विनोद राठौड़ ने।
0: हाँ,
1: सो क्या हुआ, महान रतन जैन, मैं उनको महान रतन जैन बोलता हूँ, वीनस के जो मालिक हैं
0: जी जी जी,
1: और महान गणेश जैन, दो भाई, इनकी वीनस टेप्स एंड रिकॉर्ड्स
0: जी,
1: सात भाई, उनमें से अनफॉर्चुनेटली एक चले गए, हमारे प्यारे चंपक जी
0: जी जी,
1: भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उस वक्त जब मैं 80s में से निकलकर 90s की तरफ जा रहा था, 80s का दौर बदलता जा रहा था, आप समझ गए, नए नए संगीतकार फिर अपना अपने कदम जमा रहे थे
0: जी,
1: उस वक्त धीरे धीरे मेरा काम जाने लगा
0: जी,
1: एंड मेरी जिंदगी में इस गाने से पहले एक इंसान आए जिनके बारे में हम जरूर बात करेंगे, जिनका नाम है महेश भट्ट साहब
0: जी जी जी।
1: उसके बाद ये पिक्चर आई, मैंने एक एल्बम किया रतन जैन साहब के लिए
0: जी जी,
1: उसमें ये गाना था
0: जी।
1: तो एक दिन रतन जी कहते हैं यार मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूं,
0: हाँ,
1: फिल्म का नाम है बाजीगर,
0: वाह,
1: इसमें एक नया लड़का है शाहरुख खान,
0: हाँ,
1: नई हीरोइन है काजोल, और डायरेक्टर भी वर्चुअली न्यू है, एक फिल्म इनकी हिट हो चुकी है, तुम आओगे? मैं बस सर डूबते हो गए, तिनके का सहारा वाली बात है, मेरे पास तो काम ही नहीं है, नई नई शादी हो चुकी थी मेरी। उन्होंने कहा काम करते हैं। मैंने जब ये मुखड़ा सुनाया इतने खुश हुए, फिर हमने यही गाना विनोद राठौड़ से गवाया था
0: जी।
1: जिस दिन ये गाना रिकॉर्ड हुआ है, महबूब स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ था, तालियां बज रही थी,
0: क्या बात है,
1: क्योंकि 90s की एंट्री,
0: हाँ,
1: का ब्यूगल बज चुका था, सिर्फ अनु मलिक का नहीं,
0: हाँ,
1: जितने भी संगीतकार 90s में थे
0: जी,
1: वो अपना नया रंग लेके आ रहे थे
0: जी जी जी,
1: और उनमें से एक था अनु मलिक,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: सभी ने बहुत अच्छा काम किया, जितने भी, अगर 90s का म्यूजिक सुनोगे तो लोग कहते हैं दैट्स अ रेनेसांस ऑफ, जैसे 60s का म्यूजिक था,
0: हाँ,
1: 90s की म्यूजिक के बारे में बात करते हैं,
0: हाँ,
1: उसके बाद ऐसा म्यूजिक बना ही नहीं है
0: जी,
1: एवरी कंपोजर, एवरी लिरिसिस्ट, एवरी प्रोड्यूसर, एवरी डायरेक्टर
0: जी,
1: एवरी म्यूजिशियन, एवरीबॉडी, सिंगर्स हो, लिरिसिस्ट हो, संगीतकार हो, म्यूजिशियंस अपने उस जमाने के क्या थे, लाइव म्यूजिक चल रहा था
0: जी जी,
1: एंड उसका नतीजा है 90s का म्यूजिक। जब ये बाजीगर के गाने बने थे तो लोग दीवाने हो गए थे, बोलते कैसेट्स में फ्लाइंग लाइक हॉट केक्स,
0: हाँ,
1: मुझे लोग आके बोलते हैं कैसेट्स बिकते थे, हर दुकान के कैसेट बिक रहे थे, मतलब अगर बगल में चार कैसेट बेचने वाले बाजीगर के हो तो चारों दुकान से बिक रहे थे, ये देखिए एक दुकान में,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो उसका नतीजा ये निकला कि आज टुडे जब ये गाने लोग सुनते हैं तो मुझे मैसेजेस लाके देते हैं, कहते हैं अनु जी ये गाने ऐसे लगता कल रिकॉर्ड किए आपने,
0: हाँ,
1: इतनी फ्रेशनेस कैसे है। सो आई वुड से उस वक्त ऐसा एक सर पे एक जुनून सवार था कि कुछ अच्छा करना है।
0: बासीगर में तो आपने वो रैप भी किया था,
1: वो काली काली आंखें में, उसकी भी स्टोरी है, अब गाना बजाए तो बताऊंगा।

अच्छा गाना बजाना पड़ेगा, ठीक है गाना बिल्कुल बजाएंगे, और बाजीगर का वो गाना भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। मैं ये चाहता हूँ अनु जी कि हम इसके बाद वो बात करेंगे बॉर्डर की, लेकिन बाजीगर का गाना अभी आ रहा है।

0: काली काली आंखें का गाना है इसमें, जो आज इतना ट्रेंड सेटिंग हो गया रैप
1: जी,
0: उस वक्त ये सब नहीं था
1: जी।
0: हुआ यूं कि गाना रिकॉर्ड हो रहा था, मुखड़ा बन चुका था, सेट पर सब थे, अचानक 16 बार का एक फर्स्ट म्यूजिक में टेम्पो बज रहा था, टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक, बहुत कुछ ट्राई किया उसमें कुछ हो रहा नहीं था। मैं बोले ये खाली जा रहा है, ये खाली जा रहा है पूरा जगह, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तो मैंने एक दिमाग में आइडिया आया, मैं चला गया सेट के ऊपर, मैं बोला यार एक काम करते हैं, माइक पर जाके मैं खड़ा हो जाता हूँ, ये खाली जगह को मैं कवर करना है। अभी मुखड़ा खत्म हो चुका है, अंतरा आने वाला है, अंतरा आने से पहले म्यूजिक पीस है, लेकिन ये 16 बार मैं करूं तो क्या करूं, बहुत सोच रहा था। अचानक मुझे ऐसा लगा मैं ये वर्ड डालता हूं
1: जी,
0: मैं मिला तू मिली, तू मिली मैं मिला, मैं मिला तू मिली मैं मिला, दुनिया चले तो जले, प्यार करेंगे तुझ पे मरेंगे, धक धक दिल ये करे राम पाम पाम बारा बा पाम। अब पूरा ब्रास आता है वहां से,
1: हाँ।
0: तो पूरा मैंने टाइमिंग कवर किया उसके अंदर,
1: हाँ।
0: एंड वहां अब्बास मस्तान, रतन जैन ऑल जंप्ड अप, ये बहुत अलग चीज की तूने, और इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग इट उन्होंने कहा मुझे लगता है बहुत अलग चीज हो गया, मैं मिला, और जो तेरा अंदाज है ना तू मिली, तो वहां देव कोहली साहब भी थे लिरिक राइटर, मैं बोला देव जी एक पहला हाफ तो मैंने लिख लिया है, दूसरा हाफ को लिखे देते, सेकंड अंतर में भी डालते हैं, मैं तो कर झटपट, मैं तो कर खटपट, मेरे आचा तो निकट, वो देव जी ने वही लिख दिया, वो भी कमाल के इंसान थे देव कोहली साहब,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: महान राइटर।

0: तो वो उन्होंने, मैंने बोला सर ये जो मैंने तैतू लिखा है फर्स्ट, मैं मिला तो आपको बुरा तो नहीं लग रहा, बोला अनु जी गो हेड एंड रिकॉर्ड इट, बहुत अच्छा लग रहा, देव जी की परमिशन मिली मुझे और मैंने कर दिया। बट जो नेक्स्ट उन्होंने लिखा वो भी मैंने बोल दिया ना तू कर खटपट, तू आजा तो निकट अरे प्यार झटपट, न तो जुल्फ झटक, न तो पैर पटक, ऐसा ये सब किया था मैंने। आज वो गाना लोग बोलते हैं वो था ट्रेंड सेटिंग सॉन्ग, वन फॉर इट साउंड,
1: बिल्कुल
0: द म्यूजिक प्रोडक्शन वॉज वेरी न्यू,
1: यस यस यस,
0: डेढ़ महीना लगा था उस गाने को बनाने के लिए, डेढ़ महीना टू गेट द म्यूजिक राइट, पाम पाम पारा पाम पाम पाम, तो करते करते बहुत टाइम लगा, आई वांटेड टू सेट अ ट्रेंड। और आज लगता है लोग मुझे बोलते हैं कि यार इतना टेक्नोलॉजी आ चुका है, एआई आ चुका है, लेकिन लगता है ये गाना कल रिकॉर्ड हुआ है। मैं 3 बार ये लव्स यूज कर चुका हूँ, बिकॉज आई बिलीव अ सॉन्ग शुड साउंड एज फ्रेश एज इट वाज रिकॉर्डेड यस्टरडे इवन टुडे।
1: बाजीगर के टाइटल सॉन्ग में आपने वायलिंस बड़े प्यारे इस्तेमाल किए हैं, वो क्या था मामला?
0: कहानियां बहुत है इसके बारे में, लोग बोलते हैं अनु जी आप ये बताइए कि गाना बना कैसे। बाजीगर इज अ वेरी टफ वर्ड, बाजीगर, अगर इस पर आपको बोला जाए गाना बनाओ, हाउ डू मेक अ सॉन्ग?
1: जी जी,
0: तो मेरे दिमाग में एक दिन मैंने रतन जी को फोन किया, सर एक मुखड़ा है दिमाग में, बाजीगर ओ बाजीगर तू है बड़ा जादूगर, तो बोला सुना, तो मैंने ऐसे सुना है, बाजीगर ओ बाजीगर तू है बड़ा जादूगर, ऐसे सुना रहा हूं, बोला बहुत कैसी मुखड़ा, त्रुडुन तत्रुडुन, अप्रूव हो गया, लेट्स रिकॉर्ड द सॉन्ग।
1: जी जी जी,
0: मेरा अब ये जो लाइन आती है ये सुनने वाले में, सेट पर हम पहुंचे, सिंगर्स आर ऑन द माइक, सिंगर्स आर ऑन द माइक, अब्बास बस्तान खड़े हुए, पूरा लाइव ऑर्केस्ट्रा, 60 वायलिंस वियोलास चालोस, एवरी वन रिदम फॉर्मेशंस एवरीथिंग इज रेडी। अब सब बोल रहे कि अनु मलिक इज रिकॉर्डिंग फॉर अ न्यू हीरो, अ न्यू हीरोइन, सबके फैमिलीज आए हुए हैं
1: जी,
0: सब सुन रहे हैं और मैं सेट पर हूं। अचानक जब गाना रिकॉर्ड को, जो आपने पूछा कि वॉयलेंस आए कैसे, ये मैं बोला यार 1 2 3 4 गाना शुरू होता है, बाजीगर ओ बाजीगर तू है बड़ा जादूगर, तरन टन टन टडन, सीधा फर्स्ट म्यूजिक आ रहा था, टडम पम पम बम बम तरम पम तम ददम ददम दरर, मैं बोला कुछ कमी है यार गाने में, दम नहीं है। लोग हैरान हो गए, बोले सेट पर हो आप, गाना हमने अप्रूव कर लिया है, अब्बास बस्तान कह रहे हैं, सर ये गाना उठ रहा नहीं है,
1: कुछ करना पड़ेगा,
0: मैं बोला एक इंट्रोडक्शन बनाते हैं।
1: वही
0: सेट पर इंट्रोडक्शन बनाया तो मैं चाह रहा था ब्रास शुड बी कमिंग डाउन, ये सुन रहा है वॉल्यूम चल रहे हैं, अभी भी कुछ कमी है, मुखड़ा क्यों नहीं उठ रहा है। तो वहां मेरे एक सोलोइस्ट थे हमारे, उनको मैंने बोला यार एक काम करते हैं, हम लोग स्ट्रिंग्स लेके आएंगे, या रुक देंगे,
1: ओ वाह भाई,
0: और वहीं मेरा मुखड़ा बजाओ,
1: ओके
0: मेरा ही मुखड़ा बजाओ, तारी रारी रारी रम तो ऑल वे लुकिंग एट मी, ये क्यों किया? फिर बोला इसके बाद मुखड़ा नहीं उठ रहा है। सडनली आई गॉट एन आइडिया, मैंने गाना यहां से शुरू करते हैं, वहीं लिखा गया है।
1: अच्छा,
0: मेरा दिल था अकेला, तूने खेल ऐसा खेला, तेरी याद में जागू रात भर, डाडाडाडाडाडाडाडाडाडाम, ब्रेक, बाजीगर ओ बाजीगर। तो गाने किस तरह बनते हैं, गाने का चेहरा बदल जाता है सेट के ऊपर,
1: क्या बात।
0: एंड आई बिलीव इन इंस्टिंक्टिव क्रिएशन। उस वक्त अब्बास मस्तान रतन जैन मेरे पास आए, बोला तुमने चेहरा बदल दिया गाने का, मुखड़ा उड़ गया, एंड बाजीगर वॉज बॉर्न विद दैट सोलो वॉयलिन पीस एंड द सिंगिंग एंड द राइटिंग। क्या मतलब उसका अंतरा भी क्या बना था, धक धक धड़कता है ये दिल, बोलो ना क्या कह रहा है, मेलोडी थी। तो सिंगर सैंग विद अ लॉट ऑफ लव, सॉन्ग वॉज रिकॉर्डेड विद अ लॉट ऑफ पेशेंस, एंड द रिजल्ट कि आज भी गाना बजता है।
1: हाँ हाँ हाँ,
0: और पिक्चराइज भी शाहरुख पर और काजल पर इतना ब्यूटीफुल किया था सरोज जी ने, के

0: लोग याद करते हैं उस पिक्चराइजेशन और क्या शाहरुख लगा और काजोल लगी उस गाने के अंदर, लाजवाब पिक्चराइजेशन।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने कहा और मुझे लगता है कि दिस इज द राइट प्लेस टू प्ले दिस इंट्रोडक्शन म्यूजिक, जिसके बनने की कहानी अभी आपने सुनाई।

फिल्म का ये गाना जिसने बनाया था इतिहास, अब आएगी इस गाने की बनने की कहानी।

0: गानों की महफिल जम गई है।
1: क्या बात है, क्या क्या गाने आप सुना रहे हैं, मुझे घबराहट भी हो रही, कैसे गाने
0: जी।
1: उसकी मेहनत याद आती है मुझे।
0: मुझे याद है कि मैं जीपी दत्ता साहब से बात कर रहा था और उन्होंने बताया था कि इस गाने की बनने की जो कहानी है, उनको भी विविध भारती से बड़ा प्यार है और काफी काफी दिलचस्प कहानियां उन्होंने बताई थी बॉर्डर की। आप बताइए इसकी सिटिंग की बेमिसाल कहानी।
1: ये जो कहानी है इसकी, ये जो ट्यून है
0: जी,
1: ये जो जगह है, ये मैंने एक जगह, मैं जावेद साहब के साथ बैठा था एक सिटी में एक डायरेक्टर के साथ।
0: हाँ,
1: नथिंग टू डू विद बॉर्डर।
0: ओके,
1: मैंने बैठा था एक सिटी में, जावेद अख्तर साहब थे वहां।
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: और मैंने ट्यून सुना, जावेद साहब को बहुत अच्छी लगी ट्यून, इतना ही। अनफॉर्चुनेटली वो जो डायरेक्टर था उसे समझ नहीं आई।
0: ओके,
1: ये जगह
0: जी।
1: बोले नहीं यार, मुझे नहीं जम रही। ठीक है, हम भूल गए, हम निकल गए। उन्होंने फिर किसी और संगीतकार को ले लिया
0: जी।
1: और हमारे मेरी जिंदगी में बहुत बार ऐसा हुआ कि हमें प्रॉमिस किया गया ये फिल्म आपकी है, फिर ड्रॉप कर दिया है
0: जी।
1: तो ये तो कहानी सभी सभी की होती है, स्ट्रगल की
0: जी,
1: वो अलग बात है। एक दिन मेरे घर में जावेद अख्तर साहब और जीपी दत्ता साहब आए, ओपी दत्ता साहब के साथ।
0: हाँ,
1: ओपी दत्ता साहब उनके फादर
0: जी। जी,
1: मुझे साइन कर लिया था बॉर्डर के लिए। जावेद साहब ने बोला, सिटिंग रूम का दरवाजा जो है अनु मलिक का, उस पर कुंडी लगा दो।
0: अच्छा, बंद कर दो।
1: हाँ, कि हम चेक करते हैं कि भाई ये लड़के में कितना दम है। मेरा इम्तिहान तो जिंदगी में चलता ही आया
0: जी। जी,
1: जब से मैं पैदा हुआ मेरा इम्तिहान लिया जा रहा है
0: जी। जी, जी,
1: कोई बात नहीं, कुंडी लगा दी, अपने बंद कर

0: दिया, बोला कि आप कुछ सुनाइए। मैं फिर सोचता रह गया कि इतने शब्द हैं, संदेह से आते हैं, हमें तड़पाते हैं। ए गुजरने वाली हवा जो बता, जो लाइन आई,
1: हाँ
0: वहां जाकर मैं इतना इंप्रेस हो गया, मैंने ट्यून वहां से शुरू की।
1: हाँ
0: ए गुजरने वाली हवा बता, यहां से जावेद साहब का रिएक्शन आया, जेपी साहब का रिएक्शन आया, और दोनों उठे और उन्होंने गले लगा लिया। बोला ये जो इतना बड़ा गाना है तूने यहां से शुरू किया, फिर वो ट्यून जो याद आई थी मुझे, मैं जावेद साहब उसको मिला के देखते हैं।
1: हाँ
0: मिलाया तो जावेद साहब उछल गए और जेपी दत्ता साहब ने गले लगा लिया। सी हाउ सॉन्ग्स आर बॉर्न।
1: जी जी जी
0: दिस सॉन्ग वॉज बॉर्न आउट ऑफ इंस्टिंक्ट के इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स, इनका चेहरा मेरे आंखों के सामने आ गया यूनुस जी,
1: जी
0: कि हमारे देश की रक्षा करते हैं और अपने माँ बाप से दूर,
1: जी
0: अपने फैमिली से दूर, पत्नी से दूर, बच्चों से दूर, वो इमोशन
1: जी
0: मेरे अंदर आया। एंड द सॉन्ग संदेश से आते हैं वॉज बॉर्न, संदेश से आते हैं वॉज बॉर्न बिकॉज आई मैडली एंड डीपली लव इंडिया।
1: क्या बात है।
0: आई लव माई ग्रेट कंट्री भारत। मैं दीवाना हूं इस देश का।
1: जी
0: मैं समझता हूं कि भगवान ने मुझ पर एक बहुत बड़ा मतलब एक एहसान किया कि मुझे ऐसे देश में जन्म दिया जहां इतनी मोहब्बत है, और अगर मैं अन्नू मलिक बना हूं तो इस मिट्टी की वजह से बना हूं,
1: जी
0: और अगर
1: जी
0: अगला जन्म होता है, अगर कहते हैं है नहीं है पता नहीं, तो मुझे फिर से आप हिंदुस्तानी बनाना। मैं
1: वाह,
0: भगवान से यही प्रार्थना करता हूं।
1: ये गाना तो अपनी लेंथ में, अपने अंतरों में भी
0: 11.5 मिनट का गाना है।
1: बताइए।
0: 11.5 मिनट का गाना है, रिकॉर्डिंग, और एक अंतरा जेपी साहब ने नहीं काटा। और जेपी साहब ने जो फिल्म बॉर्डर बनाई है जेपी दत्ता साहब ने,
1: जी
0: जितना उनकी तारीफ की जाए कम है।
1: एक और बात है कि लंबे गाने बनाने के भी आप मास्टर हैं, इसके भी इतना ही बड़ा गाना फिर से आपने एक बनाया।
0: कौन से गाने की बात कर रहे हैं?
1: ये जो LOC कारगिल वाला।
0: हाँ, एक सीमाएं बुलाए भी लंबा गाना है।
1: हाँ
0: एक मैं कहीं भी रहूं,
1: जी जी
0: ये भी मैंने देशभक्ति गाने बहुत बनाए हैं, देशभक्ति गाने।
1: हाँ
0: तो मेरा जो प्यार है अपने देश के प्रति, वो मेरे गानों से नजर आता है। कोई मुझे पूछे आप कितना अपने देश से प्यार करते हो, तो मैं एक जवाब देता हूँ, मेरे गाने सुन लो।
1: बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ये जरूर ये बात कहनी पड़ेगी कि सीमाएं बुलाएं तुझे चल रही, एक ऐसा गाना है जो अमूमन ज्यादा सुनाई नहीं देता, तो थोड़ा सा ये गाना सुनाते हैं, क्योंकि संदेशे आते हैं और सीमाएं बुलाएं, अगर ये दो गाने बजाएं रेडियो पर, कुछ प्रोग्राम आधे घंटे के होते हैं, कुछ एक घंटे के होते हैं, आपके दो ही गानों में आधे घंटे का प्रोग्राम निपटाया जा सकता है। सीमाएं बुलाएं तुझे चल रही और संदेशे आते हैं, खत्म, दो आधे घंटे का प्रोग्राम खत्म। इतने बड़े गाने बनाना आसान काम नहीं है।
0: थैंक यू सर।
1: तो सीमाएं बुलाएं तुझे चल रही, भारतीय सेना को समर्पित, बॉर्डर और उसके बाद LOC कर गया। अनु मलिक ने अपने आप को बार बार साबित किया है। 70 के दशक के अंत में शुरुआत होती है, 80 के दशक में करियर शबाब पर चढ़ता है, 90 के दशक में रीडिस्कवर होती है, और उसके बाद मोह मोह के धागे के जरिए नए संगीतकारों को बताते हैं कि गाने कैसे बनाए जाते हैं।

शुरू किया है 2 बजे तक चलने वाला है। 2:30 पर हिमांशु धूलिया लाइव अमित भारती 70वें साल में प्रवेश कर रहा है और जश्न हो रहा है लाइव।

0: सब जुगनू जंगल में रहते हैं, बहुत कम लोगों को पता है ये कैफी आजमी का लिखा हुआ गाना है।
1: बहुत याद करता हूँ कैफी अंकल को
0: जी।
1: एक्चुअली जब मैं मिला था उनको, उनकी तारीफ करने पहुंचा था जानकी कुटीर में।
0: अच्छा।
1: कि अंकल आपने जो मदन मोहन जी के साथ काम किया है,
0: वाह वाह वाह,
1: क्या क्या गाने लिखे थे, बड़े मुस्कुराए थे। और एक सिचुएशन है जो भट्ट साहब पिक्चर बना रहे हैं, फिर तेरी कहानी याद आई, तो कहते हैं कि मैं, मेरा टीवी की फिल्म है, उस जमाने में इतना अटेंशन नहीं दिया जाता टीवी।

0: साहब का नाम सुनकर बड़े खुश हो गए, महेश भट्ट साहब का नाम। महेश भट्ट साहब की बड़ी अपनी एक उनका एक मुकाम है, उनकी बड़ी इज्जत है।
1: जी बिल्कुल।
0: तो बोला तुम संगीत दे रहे हो? बोला हाँ। तो ये मुखड़ा सुनो।
1: अच्छा।
0: मेरे दाएं में बैठे हुए थे वो।
1: हाँ हाँ।
0: मैं बैठा हुआ था आराम से, उनकी तबीयत जरा ठीक नहीं थी।
1: जी।
0: फिर भी बोलते हैं सुनो ये लिखो, आने वाला कल एक सपना है, गुजरा हुआ पल अपना है, हम गुजरे हुए पल में रहते हैं, यादों के सब जुगनू जंगल में रहते हैं। तो मैंने उसी वक्त उनके बोल सुनते सुनते ये ट्यून बनाई थी। जब वो ट्यून बनी तो उन्होंने ऐसे ऐसे थे, ऐसे बैठे थे, सामने देख रहे थे, अपनी तरफ मुझे देखा, शौकी जी भी थी।
1: हाँ।
0: और कहता है यार मेरे सामने तुमने बनाई है।
1: बिल्कुल।
0: ट्यून मैं ना बाजा भी नहीं था उस वक्त, वैसे गुनगुना रहा था।
1: जी।
0: इसको फौरन रिकॉर्ड करो। मैंने रिकॉर्ड कर ली कैसेट प्लेयर के ऊपर।
1: हाँ।
0: छोटा सा उस जमाने में कैसेट प्लेयर होता था, उसमें रिकॉर्ड कर ली। और महेश जी को बोला उन्होंने कि इसने कोई ट्यून सुनाई है, आप सुनो।
1: हाँ।
0: और वो ट्यून इतनी पसंद आई क्योंकि बोल कमाल के थे।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: ट्यून तो बहुत ही अच्छी थी, लेकिन जो शब्द थे उनके कैफी साहब के, वो ऐसे लाजवाब वर्ड थे, दोनों का तालमेल हो गया। और महेश जी ने बोले यही गाना रिकॉर्ड करेंगे, और फिर ये गाना रिकॉर्ड हुआ। और आज भी ऐसा लगता है कि ये गाना यही बैठे कैफी अंकल और यही बैठे हैं महेश भट्ट साहब, और ये गाना रिकॉर्ड हो रहा है।
1: कितनी प्यारी बात है, गुजरा हुआ कल बस अपना है, हम गुजरे
0: और यादों के हर जंगल में रहते हैं। ये जो लाइन है, यादों के जुगनू के जंगल में रहते हैं, ये पेंट करना शब्दों के जरिए,
1: बिल्कुल
0: वो कैफी साहब ही कर सकते थे।
1: अच्छा, मैं एक और शायर का जिक्र करना चाहता हूँ, और वो इसलिए भी कि उनसे आपका एक ताल्लुक भी है, वो आपके मामा रहे, मामा है।
0: बिल्कुल। वो ऐसे ऐसे गाने लिखे उन्होंने, उनका जो एक कॉम्बिनेशन था, मैं देखिए मेरा बचपन बीता है
1: जी
0: लिस्निंग टू शंकर जयकिशन, क्योंकि मेरे मामा ने गाने लिखे थे, जिया बेकरार है, छाई बहार है।
1: हाँ।
0: आजा मोरे बालमा तेरा इंतजार है।
1: हम अपने सुनने वालों को बता दें कि हम बात कर रहे हैं अनु मलिक जी के मामा जी, यानी जाने माने गीतकार
0: हसरत जयपुरी साहब,
1: हसरत जयपुरी की।
0: और हसरत साहब हमारे मामा ही नहीं थे, वो कमाल के एक इंसान थे।
1: हाँ।
0: मैं उनके पीछे पड़ा रहता था, मुझे इस रिकॉर्डिंग पर लिखे चलो, बल्कि एक मेमोरी बड़ी ये है कि उनके जो रिकॉर्ड आते थे ना
1: जी जी,
0: तो उनके बेटे घर में बैठ के मैं बोलता था यार ये शंकर जयकिशन गाना सुनो, आप 11 साल का बच्चा गाने सुन रहा है, जिंदगी सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, या फिर वहां से पुराने पुराने बरसात के गाने सुनते थे।
1: हाँ जी।
0: राज साहब के जितने भी गाने हैं, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, फिर आजा सनम मधुर चांदनी में हम, मुझे लगता है ये सब जितने भी गाने थे, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में सवाल, ये सुनते सुनते मेरे अंदर चले गए थे गाने।
1: हाँ।
0: और उसका नतीजा ये था कि जब उन्होंने भी मेरे गाने लिखे
1: जी,
0: आपको याद होगा राधा का संगम।
1: हाँ।
0: ओ राधा तेरे बिना। अब यहाँ जो बातें हम करते हैं, हम लोग बात नहीं करते ऑफ ऑल दीज महान सिंगर्स, उनमें से आप जैसे हमने आशा जी के बारे में, आपने मेरा गाना बजाया सुनी मेवाल का
1: जी।
0: तो आपने वो पूछा ही नहीं कि आशा जी का क्या योगदान रहा है मेरी लाइफ में।
1: नहीं नहीं बिल्कुल, वो बात
0: पहला
1: है।
0: पहला मेरी लाइफ का पहला गाना
1: जी जी,
0: वो संग बाय आशा भोसले।
1: क्या बात है।
0: 1977 मतलब 1975 में आई वाज ओनली 14।
1: हाँ।
0: 1977 उस वक्त गाना जुल्मो सितम पर इतराने वाले तू भी तो एक दिन मिट जाएगा, और ये नाम है हंटर वाली, ये सब ये मुझे याद है, जुल्मो सितम पर इतराने वाले तू भी तो एक दिन मिट जाएगा, तेरा जमाना है मैंने माना, मेरा भी एक दिन आएगा। आशा भोसले जी ने भी डैडी को फोन करके बोला था ये आदमी सीखा है क्या।
1: हाँ, हाँ।
0: आशा जी ने पूछा।
1: वाह।
0: तो डैडी ने बोला नहीं, ये क्या करता है कि मैं कोई शब्द देता हूं और ये अचानक गाने बना लेता है।
1: हाँ, हाँ, हाँ।
0: तो आशा जी बोलती है खड़े खड़े बैठ ये लड़का ये कैसे कर लेता है, तो यहाँ सरस्वती माँ ही बोल रही है। और वो ही नतीजा है कि आशा जी लता जी, आशा जी लता जी, रफी साहब किशोर कुमार
1: जी,
0: ये सब मेरे गाने गाते थे और मुझे आशीर्वाद देके जाते थे।
1: क्या बात है।
0: यानी कि किशोर दा ने तो मुझे कंपेयर किया था, बोला तुझमें पंचमता की खुशबू आती है, जब मैंने गाना बनाया था बनके नजर दिल की जुमा।
1: हाँ, हाँ।
0: कहने लगी एक दास्ता जो किशोर दा ने गाना गाया था।
1: यस, यस,
0: मैं बोला क्यों क्यों, बोला जितना तेरा मुखड़ा मीठा है।
1: हाँ।
0: उतना ही तेरा अंतरा मीठा है। अब ये भी मैंने सीखा।
1: हाँ।
0: कि मुखड़े पर दम मत तोड़ना।
1: हाँ।
0: मुखड़े पर दम मत तोड़ना, मुखड़े पर अगर तूने दम तोड़ दिया तो अंतरा मजा नहीं आएगा। अ गुड कंपोजर इज वन

0: मेक्स अ वेरी गुड अंतरा. ये हमने सीखा था आर डी बर्मन से, ये हमने सीखा था कल्याण जानी जी से, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से, ये हमने सीखा था शंकर जयकिशन से. आप जितने भी गाने सुनते हो, सचिन देव बर्मन के गाने सुन लो, उनके मुखड़े अंतरे सुन लो, मदन मोहन जी के सुन लो, सलील दा के सुन लो, नौशाद साहब के सुन लो, डैडी के सुन लो, रोशन साहब जिनके बारे में हम नहीं बोलते, सी रामचंद्र जी,
1: बिल्कुल,
0: ये ऐसे महान लोग हो चुके हैं कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता

0: कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, यूनुस भाई आप मेरी तारीफ कर रहे हैं लेकिन मुझे लगता है मुझे और बहुत दूर जाना है, बहुत मेहनत करनी है, अभी तक मैं वहां पहुंचा नहीं हूँ जहाँ ये बड़े बड़े मास्टर्स पहुंचे हैं।
1: देखिए
0: मुझे लगता ही नहीं कि मैंने कोई कमाल का काम किया। आप लोग मेरी तारीफ करते हो तो मैं हैरान हो जाता हूँ। मैं तो ये बड़े बड़े गाने सुनता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि क्या लाजवाब लोगों ने लिखा है, काम किया है, गाया है, मैं कैसे गाने बनाऊ ऐसे। आज भी मेरे अंदर ये एक आग लगी हुई है कि मैं ऐसा काम कैसे करूं और कब करूं।
1: जी एक और शख्स के साथ आपने काम किया है जो बहुत ही जादू भरा काम है। ये वो शख्स है जिनके हम सभी दीवाने हैं और जो ये गाना, बहुत सारे लोग नहीं समझ पाएंगे कि मैं किस गीतकार की बात कर रहा हूं, पर इस गाने के जरिए आपको लगेगा अंदाजा। जहां तक मुझे अंदाजा है इनके साथ चार फिल्में की हैं।

0: सब जानते हैं, लेकिन उनके साथ मैंने गाना सबसे पहली फिल्म थी वो थी अक्स, ये रात जल्दी की छिपकली रात। हाँ, ना निगली जाए ना उगली जाए।
1: हाँ,
0: गुलजार अंकल
1: जी
0: के बोल ही तरस छीन कर लेके आते थे। तू हवा है, फिजा है, जमी की नहीं, तू घटा है तो फिर क्यों बरसती नहीं, उड़ती रहती है तू पंछियों की तरह, आ मेरे आशियाने में आ। या फिर जो गाना मेरा फेवरेट है,
1: हाँ,
0: सौ दर्द है,
1: सौ राहतें, वाव,
0: सब वाव। मिला है मुझे, एक तू ही नहीं।
1: क्या गाना बना है?
0: इसमें मैंने जान लगा दी थी, ये वर्ड्स मुझे इतने अच्छे लगे थे, जाने मन का म्यूजिक था
1: जी।
0: अशोका में अगर आप सुनो गाने, रोशनी से भरे भरे,
1: बिल्कुल
0: भरे भरे नैना तेरे, छू कर बोले ना छूना मुझे, क्या लाइन है। तो अक्स हो या फिर फिलहाल उनकी,
1: हाँ,
0: मेघना गुलजार की पहली फिल्म
1: जी,
0: उसका म्यूजिक मैंने दिया। बल्कि मैं अपने सुनने वालों को बताना चाहता हूँ कि जितने भी मेजर डायरेक्टर्स लॉन्च हुए हैं हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के, ज्यादातर उनकी पहली फिल्म मेरे साथ रही है। ये लोग जानते नहीं है कि मेघना गुलजार की पहली फिल्म मेरे साथ थी
1: जी।
0: फिलहाल तनुजा चंद्रा की पहली फिल्म मेरे साथ थी
1: जी।
2: प्रचार करुछु नारी महला।

तातून जो तब तो बुटी पाची सत्ता बड़ी से भरा तो सुरक्षा दवा दें आंध्र ही है तो सही से पहन को आजे भरा भरा प्राण कर रहे थे नारी नारी जो थी जैन के हमारा खून कटा दुख दुगले जैन की बंगाल बुली का संभव हुए नहीं तो तो नारी के जो जो बीज को पहले करोड़ अमर प्रत्येक कर्म को अमर धर्म भावना बा आध्यात्मिक विश्वास ही नियंत्रण करता है तेणु ओषा व्रत मानस माध्यम आम ही सम्मान कर स्वामी संतान भोग दवाई स्वामी पूजा करने को गला बेले पर करते एक बार दिन से गाधी स्नान करूजा जी सूर्यदेव पूजा करते कि गोटे थर अन्न ग्रहण करते पर संपूर्ण काष्ट रही पूजा करने को जाती दांडदेव पूजा टाइम दांडदेव मैंने कहार कथा हूँ से गोटे चारिकणिकिया कोठी भाया काटे पानी रखिकी मझे गोटे दीपगंध भाया करके गोटे कदमी गच पोती था कदमी गच पोती कदमी गच हूँ शुभ बोले आम विश्वास करू कदमी गच आंब डाल युव शुभ बोले आम विश्वास करी आम परंपर से सब ग्रहण कर दीप जाली से व्रत कथा शुणी था व्रत कथा शुणी व्रत पूजा कर सारापर से सब बहुत प्रकार एक प्रकार पनीपरिया फल आने पूजा करते कहीं एक प्रकार पनीपरिया आनती हूँ आम भाद्रव पर आम वर्षा ऋतु फल पनीपरिया सब सर सरी आसता है तेनाली आठन मस को भिन्न चाष आम करेटा हूँ मानने पूजा उपासना को अर्घ्य रूप से खाली से नुए पूजा सामग्री भाव में पिठापणा कराए आम जो साधा भाव में जो सीधा मंडा छणा मंडा काकेरा ये सब जहाँ सब आम घर करू जो पिठापणा करते शख देकर नारी मानी से पोतिकी पूजा करा पूजा कर दुटी बामन पूजा ये ओषार आराध्य देव हूँ दुटी बामन मूलाष्टमी मूल वर्षा ऋतु जो मूला मूला आम पड़ी थाए से मूला गोटे पर प्रतीक भाव में मान पनीपरिया प्रतीक भाव ग्रहण कराए तेणु ये उपवास पर आम पार्वण ऋतु आरंभ होनेक कहते विश्वास करती ही आम देवी आराधनार समय आरंभ होता है शक्ति उपासना करा शक्ति प्रतीक हूँ देवी एवं देवी प्रतीक हूँ नारी समाज तेना नारी समाज को सुस्थ बलिष्ठ विशेष भाव आत्मिक शक्ति विशेष भाव शक्तिशाली हवापाई ये उपासना टी कर मूलाष्टमी टी कर मूलाष्टमी उद्देश्य हूँ आम कृषि भित्तिक सभ्यतार एवं मातृशक्ति पुत्र बात्सल्य प्रेम जो महिमा और गारिमा अच्छी प्रतिपादन करवा तेणु द्वितीयता कराए मूलाष्टमी कहीपर आम जो भाव नामकरण करना कहीं मातृशक्ति पाई एक शक्तिशाली संस्था भाव उपासना भाव ओषा भाव ग्रहण रुपए आम समाज एवं आज गाँव गहल देखिए सहर बजार देखिए मूलाष्टमी दिन बहन द्वितीय ओषा करसा पर दिन से जो बज्रमूल नहीं पुआ मान देह विशेषवार पुआ मान देह झाड़ी दे था तोर सब अशुभ सब अकल्याण को झाड़ी फिंगी दौटी बामन तुमको रक्षा करतु तेजे वज्र भी कठिन करतु शक्तिशाली करतु या ही उपवास रत्यम होता है।

0: नारी माला से सहला,
1: चासे भाई और भोनी मानंको पाई जरूरी सूचना राज्य रो समस्त।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार पशुपालन आधारित तंत्र विकसित कर रही है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रही है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत के मुक्त व्यापार समझौते विश्व की 75% अर्थव्यवस्थाओं को शामिल करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के आज 12 वर्ष पूरे। होरमूल जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर मिसाइल हमला, 5 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। और एशियाई खेलों में क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। पुरुष हॉकी के फाइनल में भारत का मुकाबला मलेशिया से। अब समाचार विस्तार से। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए पशुपालन से जुड़ी व्यवस्था विकसित कर रही है। इसमें गोबर से बायोगैस और जैविक खाद बनाने से लेकर दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने के प्रयास शामिल हैं। श्री शाह ने आज भोपाल में राज्य स्तरीय गौपालक सम्मेलन में कहा कि सहकारिता मंत्रालय के गठन से सर्वाधिक लाभ पाने वालों में पशुपालक भी शामिल होंगे। गृहमंत्री ने आपराधिक न्याय व्यवस्था में सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी।
1: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए, और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, FSL के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
0: श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर उच्चतम न्यायालय तक मामलों का निपटारा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज भोपाल के भेल दशहरा मैदान में राज्य स्तरीय गोपालक सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने 11 जिलों के करीब 35,000 गोपालकों के इस सम्मेलन में गौशालाओं के लिए 101 करोड़ रुपए दिए। श्री शाह ने उज्जैन में 255 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले डेयरी प्लांट का वर्चुअली भूमि पूजन भी किया। श्री शाह ने कहा कि भोपाल में 12 करोड़ की लागत से केंद्रीय प्रयोगशाला बनाई गई है और शिवपुरी में मिनी डेयरी प्लांट बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें गोवंश और भैंस की नस्ल सुधार का काम होगा। गोपालक सम्मेलन से पहले केंद्रीय मंत्री ने भेल दशहरा मैदान में ही नए आपराधिक कानूनों पर मध्य प्रदेश पुलिस की प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि अंग्रेजों

0: ये बनाए कानून अपनी सरकार और प्रशासन को बचाने के लिए थे, लेकिन अब नए कानून नागरिकों के सम्मान, संपत्ति और शरीर की रक्षा के लिए हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: सरकार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कुख्यात सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से सफलतापूर्वक भारत वापस लाई है। देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की इस उपलब्धि पर नागरिकता प्राप्त करके अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करता था। गृहमंत्री ने बताया कि नवप्रीत सिंह को नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराधों से जुड़े कई मामलों में जेल भेजा गया है। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने भगोड़ों को वापस लाने के लिए एक समन्वित अभियान चलाया है। वर्ष 2000

0: एक समन्वित अभियान चलाया है। वर्ष 2019 से इस वर्ष अगस्त तक 36 देशों के कुल 288 भगोड़ों को भारत वापस लाया गया है। इस सफलता के लिए सभी एजेंसियों को बधाई देते हुए गृह मंत्री ने कहा कि सरकार दिसंबर 2029 से पहले हर नशीले पदार्थों के गिरोह को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ऐसे मुक्त व्यापार संबंधों के लिए आगे बढ़ रहा है जो विश्व की लगभग 75 से 80% अर्थव्यवस्था बनाने में योगदान देगा। शिकागो में यूएस इंडियन कम्युनिटी फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में अपने व्यापार समझौतों किया है। ये बढ़ता क्षेत्र भारत से संचालित कंपनियों को एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच प्रदान करेगा। श्री गोयल ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले भारत के लगभग 10 ट्रिलियन डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद वाली अर्थव्यवस्थाओं के साथ मुक्त व्यापार समझौते थे।
1: 2014 के पहले हमारे पास फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कई देशों के साथ थे, पर वो सब छोटे छोटे देश थे अधिकतर, और कुल मिला के जितने देशों में हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स थे उनकी आज की अगर हम अर्थव्यवस्था देखें या जीडीपी देखें तो 10 ट्रिलियन डॉलर। गत 4-4.5 वर्षों में हमने 38 और देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने का निर्णय लिया, 38 डेवलप विकसित देश, और उन सब की अगर जीडीपी का आंकड़ा ले तो वो 60 ट्रिलियन डॉलर हो जाए।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात ने आज 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। मन की बात कार्यक्रम की पहली कड़ी वर्ष 2014 में आज ही की तारीख को विजयदशमी के दिन प्रसारित हुई थी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इस कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित किया। मन की बात के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। यह यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से इस सोच को किस तरह अमल में लाया गया है इस बात की जानकारी देंगे।
3: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी ABPMJAY सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य आश्वासन योजना है। इसके तहत पात्र परिवारों को हर वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर मिलता है। योजना के अंतर्गत देश भर के सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में सेकेंडरी और टर्शियरी केयर के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध है। अस्पताल में भर्ती होने से पहले के 3 दिन और अस्पताल से छुट्टी के बाद के 15 दिन तक के निर्धारित खर्च भी इसमें शामिल है। पहले से मौजूदा बीमारियां भी योजना में पहले दिन से ही कवर होती। योजना के तहत परिवार के सदस्यों की संख्या, उम्र या लिंग पर कोई सीमा नहीं होती। पात्र लाभार्थी देश के किसी भी राज्य में योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पताल में इसका लाभ ले सकते हैं, यानी लाभार्थियों को इलाज के लिए अपने गृह राज्य तक सीमित रहने की आवश्यकता नहीं। इसके अलावा 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र की सभी वरिष्ठ नागरिक उनकी आय या सामाजिक आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना आयुष्मान भारत PMJAY के तहत 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य कवर के पात्र होते हैं। आइए सुनते हैं लाभार्थी की ये रिपोर्ट।
4: 1 ईयर पहले मम्मी का कुछ प्रॉब्लम हुआ था गायनी केस, तो हम बाहर भी गया था दिखाने के लिए, यहाँ भी दिखाया था। तो बाहर दिखाने के बाद मेन बीमार पता होने के बाद फिर यहाँ से भी कंसल्ट किया था गायनी सर लोग से, तो सर लोग ने बोला था कि यही में हो जाएगा ऑपरेशन, जो कार्ड भी आपका पास है ना नहीं है पूछा था। हम बोला सर हाँ मेरे पास में कार्ड है बोल के, तो उसी में क्लेम करने से वो पैसा को भी आपको गवर्नमेंट से मिल जाएगा बोल के। तो फिर हम अपना ऑफिस में CPS में जाके SSR कागज डॉक्यूमेंट बताया, SSR है, तो वहीं से हमको बेनिफिट जो मिल गया और ऑपरेशन जो सक्सेसफुल हमका ये तेजू जोरम जोनल हॉस्पिटल से ही हुआ था।
0: उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन ने कहा है कि आर्थिक मजबूती को सामाजिक मजबूती से अलग करके नहीं देखा जा सकता। उन्होंने कहा कि तेजी से बदलती दुनिया में समावेशिता ही मजबूती की बुनियाद है। श्री राधा कृष्णन आज नई

0: दिल्ली में पांचवें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन का विषय था बदलते दौर में मजबूती। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आम सहमति, समावेशिता और परिस्थितियों के अनुरूप नीतियां बनाने से लोकतंत्र और विकास साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं तथा सतत विकास की मजबूत नींव तैयार हो सकती है। उन्होंने कहा कि वास्तविक मजबूती तभी है जब कोई नागरिक, उद्यम या क्षेत्र पीछे न छूटे।
1: A faster transformation is taking place in the economical growth of India. Once we were the underdeveloped economy, from there we moved on to the developing economy. From there we are moving towards the developed economy. We can call ourselves as a developed economy if it is an inclusive development of everyone. That is where the real development benefit should reach the nook and corner of the country.
0: रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि मूल्य और वित्तीय स्थिरता को भू राजनीतिक और भू आर्थिक विखंडन, व्यापार प्रतिबंधों, आपूर्ति में अचानक आए अवरोधों और तकनीकी व्यवधानों से अलग करके नहीं देखा जा सकता। आज नई दिल्ली में पांचवें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में गवर्नर ने ये बात कही। वायुसेना का 94वां स्थापना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस वर्ष के समारोह का विषय है भारतीय वायुसेना अचूक, अडिग और सटीक। एक रिपोर्ट।
2: वायुसेना दिवस के अवसर पर इस वर्ष एयरफोर्स डे परेड, भारतीय वायुसेना के विमानों और हथियार प्रणालियों का स्थैतिक प्रदर्शन, टीम शक्ति एयर वॉरियर ड्रिल टीम, एयरफोर्स ड्रमर्स और हेरिटेज फ्लाइट की विशेष प्रस्तुतियां होंगी। मुख्य परेड एयरफोर्स स्टेशन हिंडन में आयोजित की जाएगी, जहां वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के अलावा सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ, नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन और पूर्व वायुसेना प्रमुख भी उपस्थित रहेंगे। इस वर्ष वायुसेना दिवस के आयोजन के बारे में नई दिल्ली में जानकारी साझा करते हुए स्क्वाड्रन लीडर पल्लवी अंगवान ने कहा कि परेड से पहले MI-17 राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय वायुसेना के ध्वज के साथ ध्वज फ्लाई पास्ट करेंगे। परेड के बाद अलंकरण समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली इकाइयों को प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वायुसेना दिवस से पहले नई दिल्ली में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल एसपी सिंह ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के इस दौर में जब हर देश के पास गोला बारूद, विमान, परिचालन प्रणाली और सीमित रसद आपूर्ति भंडार है, आत्मनिर्भरता आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: अपडेट रहे, आगे रहें, X@AIRNews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। हुरमूज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले में 5 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उसने MT काजिमा 3 पर सवार 5 भारतीयों के बचाव अभियान का समन्वय किया। संयुक्त अरब अमीरात UAE के अटॉर्नी जनरल काउंसलर डॉक्टर हमाद सैफ अल शमसी ने कहा है कि फ्लाई दुबई की उड़ान FZ1073 की घटना की जांच में पाया गया है कि सह पायलट ने आतंकवादी कृत्य करने का प्रयास किया था और शर्मा।
4: जापान एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने पुरुष क्रिकेट में पाकिस्तान को हराकर दूसरी बार स्वर्ण पदक अपने नाम किया। T20 फाइनल में भारत ने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 19 रन से मात दी। भारत के 212 रन के लक्ष्य के जवाब में पाकिस्तान 196 रन ही बना सका। इससे पहले टॉस जीतकर भारत ने बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 211 रन बनाए। इससे पहले इन खेलों में महिला क्रिकेट में भी भारत ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। आज ही प्रणवी उर्स ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। महिला रिकर्व तीरंदाजी में कुमकुम मोहोत ने इस स्पर्धा में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। भारत पदक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। कुल 81 पदकों में 19 स्वर्ण, 26 रजत और 36 कांस्य पदक शामिल हैं।
0: धन्यवाद जागृति इस तमाम जानकारी के लिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार पशुपालन पर आधारित तंत्र विकसित कर रही है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रही है। वाणिज्य मंत्री पीयूष

0: पीयूष गोयल ने कहा, भारत के मुक्त व्यापार समझौते विश्व की 75% अर्थव्यवस्थाओं को शामिल करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के आज 12 वर्ष पूरे। होर्मुज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर मिसाइल हमला, 5 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। और एशियाई खेलों में क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही पहर समाचार का समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आपण कार्यक्रम शुणुंट आकाशवाणी कटक केन्द्र कार्यक्रम आम केन्द्र प्रचारित होशमिक 6 मीटर तथा 972 किलोहर जोगे आमर परवर्त कार्यक्रम आंचलिक संवाद शुणिपर यह विज्ञापन पर
2: बन्या हेउ बा महावात्या सबु परिस्थिति रे
3: गारु सहर जाए सबु स्थान रे
2: आबाल वृद्ध बनिता समस्तंक पाई
3: जुआंग ओ सांतालंक ठारु बंडा एवं कोयांक जाए सबुरी भाषा रे
2: केवल आकाशवाणी।

0: और भी दो तीन चार दोस्त जो करीबी थे, ब्रिजेंद्र काला ये सब जो थे, तब बहुत मिला करते थे हम लोग। हम लोग सब बाप बने हैं, मतलब सब 5-6 महीने के गैप में सबके सब,
1: जी जी,
0: मतलब सबकी बीवियां मोटी मोटी,
1: अच्छा
0: स्वीट और इरफानी, उनको गाड़ी में बैठा के घुमाना या उनको जैसे चाट वाट के खाने का बहुत मन करता है ना, तो वो सब इरफानी करता था,
1: जी जी,
0: 3-4 महिलाओं को बैठा के और घुमाना, और फिर सबके 5 बच्चे हुए, सब 4-5 महीने 3 महीने के गैप में, तो इससे इतना बड़ा परिवार हो गया हमारा।
1: जी बिल्कुल, ब्रिजेंद्र काला का आपने नाम लिया, तो वो तो आपकी फिल्म में भी पत्रकार की भूमिका निभाई थी।
0: हाँ, वो मेरा मेरा कजन ब्रदर है।
1: तो जो पत्रकार की भूमिका थी वो बड़ी अलग किस्म की थी।
0: हाँ।
1: तो क्या सचमुच वो ऐसे हैं या उस फिल्म में आपने शामिल किया था, उनका कैरेक्टर गढ़ा था?
0: वो बहुत अच्छा एक्टर है, वो थिएटर का एक्टर है, बहुत पुराना एक्टर है, और उसको कुछ बताने की जरूरत मुझे खास पड़ी नहीं, थोड़ी बहुत चीज उसकी ये कि दीवार पे लग के लिखो वो सब कुछ थोड़ा थोड़ा, और डायरेक्टर किस काम का है, नहीं तो अपने आप में बहुत ही माहिर एक्टर है वो।
1: जी जी, एक्टिंग की बात चली कि बहुत अच्छे एक्टर हैं, आप खुद भी तो बहुत अच्छे एक्टर हैं और बहुत सारी फिल्में की हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर का जो किरदार है रामा धीर सिंह,
0: जी जी,
1: तो वो तो नाम से ही मशहूर हो गया था, तो कैसे आप वहां पहुंचे, मतलब एक्टिंग आगे एक्टिंग ही तो नहीं करना चाहते हैं?
0: नहीं,
1: मतलब हम लोग चाहते हैं कि आप डायरेक्टर फिल्में देते रहे।
0: एक्टिंग में मुझको मतलब वो मैं ऐसी पता नहीं क्यों वो अपना अनुराग और कश्यप और जो कास्टिंग डायरेक्टर हमारे मुकेश छावड़ा साहब, उन्होंने पता नहीं क्या उनके जहन में आया कि ये रोल मुझसे कराना है। मैं एक्टर तो था नहीं, मतलब एक्टर पे था, ड्रामा स्कूल में मैंने एक्टिंग की पढ़ाई की, लेकिन मैंने कभी एक्टिंग परसू नहीं की। मैं फिल्म डायरेक्शन में आ गया, कंप्लीटली अलग
1: जी जी
0: स्ट्रीम। उन्होंने बोला, मैंने हाँ कर दी, मुझको मालूम नहीं था कि इतना बड़ा रोल है ये वो, तो ऐसे मिल गया और मैंने कर दी। अब हमेशा एक्टिंग में, कल भी बच्चों के साथ एक वर्कशॉप किया था मैंने, कहा एक्टिंग में सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है कॉन्फिडेंस, वो बहुत तरह एक चीज नहीं होती, बहुत चीजों से आती है, थोड़ा एक्सपीरियंस से आती है, थोड़ा रिस्पेक्ट से आती है, थोड़ा आपने अच्छा काम कर लिया हो तो उससे आपको अंदर कॉन्फिडेंस आता है। तो मेरे पास कॉन्फिडेंस था क्योंकि मैं ऑलरेडी डायरेक्टर हो चुका था उस यूनिट पे, जब गया तो सब दोस्त थे, मनोज वाजपेयी हो, ये वो नवाज हो, तब सब दोस्त हैं
1: जी,
0: अनुराग कश्यप दोस्त है आपका, कैमरामैन को आप जानते हैं, तो मुझको कोई ऐसी जगह नहीं गई कि अरे मैं अगर मैं अमिताभ बच्चन के साथ कर रहा हूं तो शायद मैं घबराता थोड़ा, तो इसलिए वो हो गया कॉन्फिडेंस में और
1: जी
0: अच्छा
1: तो
0: हो गया।
1: वो जो थप्पड़ मारे थे आपने फटाफट, वो असली वाले थे कि नकली थे?
0: हाँ, नहीं,
1: क्या हुआ था फिर उसके बाद?
0: वो विपिन को जब मारता हूँ कहाँ गाड़े थे, उस तो मैंने विपिन को बोला, विपिन मेरा सीनियर है नेशनल स्कूल ड्रामा से, मुझसे तो 3-4 साल सीनियर है, तो मैंने विपिन को बोला, अभी मैंने कहा विपिन यार सिर्फ जैसे हम लोग फिल्म नहीं मारते हैं वैसे मार दो क्या? नहीं नहीं मारना मारना।
1: ओहो,
0: मैंने कहा यार लग जाएगी, मेरा थोड़ा भारी हाथ है। कहने नहीं कोई नहीं,
1: अच्छा
0: कह दिया तो मैंने मार दिया।
1: फिर बाद में झगड़ा नहीं हुआ?
0: नहीं नहीं झगड़ा बिल्कुल नहीं।
1: अच्छा ओके, और बात एक्टिंग की चली है तो शाहरुख खान के साथ भी तो आपने एक फिल्म की है, दिल से?
0: हाँ, डायलॉग्स लिखे थे उसके
1: जी,
0: तो मैं पूरी शूटिंग में था
1: जी
0: उस दिल से की जी।
1: तो शाहरुख खान के साथ लिखना

0: आपके लिए एक अलग अनुभव रहा होगा, कुछ अनुभव
1: मैं शाहरुख के लिए नहीं लिख रहा था, मैं मणि सर के लिए लिख रहा था, मणि रत्नम जी के लिए लिख रहा था। मैं लिख क्या रहा था, मैं सिर्फ ट्रांसलेट कर रहा था एक्चुअली में
0: जी।
1: वो अंग्रेजी में बता देते थे कि ये चाहिए मुझको, और उस इतना समझ के कि शाहरुख का किरदार ऐसा है, मनीषा का जो कैरेक्टर्स को इतना तो समझ थी मुझे
0: जी,
1: तो उस किरदार को समझते हुए मैंने उस तरह की हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग किया, और उस जो अंग्रेजी में मणिसन ने लिखा था उसको मैंने एक अच्छे ढंग से अडेप्ट कर लिया, बस ये काम था मेरा
0: जी। तो इस समय उनकी फिल्म का जिक्र चला है, तो यहाँ पर आपको कौन सा गाना हम सुनवाएं? हालांकि आपकी पसंदीदा गानों की हमने लिस्ट बनाई है, तो बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं, कुछ पुराने दौर में जाना चाहते हैं या नए दौर के गाने सुनना चाहते हैं?
1: ये तेरे मेरे सपने का गाना
0: जी, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें, ये गाना हम सुन लें
1: जी। बिल्कुल,
0: नीरज के बोल हैं और सचिन देव बर्मन का संगीत है, और आपकी जिंदगी में गानों की बहुत दखल रही है, तो इस गाने के बाद हम कुछ गीत की बात करेंगे, कुछ पुराने गानों की।

0: मानशु जी, ये गाना हमने आपकी ओर से नजर किया अपने श्रोताओं को, और आपकी एक लंबी यात्रा है, आपका परिवार इलाहाबादी है मन से, आप अक्सर कहा करते हैं, तो एक बार फिर इलाहाबाद की गलियों में चलते हैं और याद करते हैं आपकी माँ को। आपकी माँ से जुड़ी हुई कौन सी याद है जो आप साझा करेंगे? संस्कृत की प्रोफेसर थी वो?
1: जी जी, मेरे पिताजी वकील थे, बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज भी बने। वो बहुत ज्यादा दिन जी नहीं पाए वो, बट मदर मेरी पढ़ाती थी और दोनों चले जाते थे अपने वो हाईकोर्ट या अपने स्कूल कॉलेज पढ़ाने के लिए। हम तीन भाई थे तो हमारे घर में एक था आनंद कुकर, और वो चीज मैंने किसी और घर में देखी नहीं।
0: अच्छा।
1: वो इतनी खूबसूरत चीज थी कि जैसे उस जिसके टिफिन बॉक्स होता ना, जैसे जिसमें हम लंच लेके ऑफिस में लोग जाते हैं, दो तीन उसमें वो होते हैं दाल चावल
0: डब्बे
1: होते हैं, उसे वो बड़ा सा एल्युमिनियम का था और नीचे उसमें आप कोयला जला दीजिए।
0: अच्छा।
1: हाँ, अब इसलिए बड़ा स्मोकी फ्लेवर भी होता ना, और जो नीचे उसमें दाल रख लीजिए, फिर थोड़ा चावल रख दीजिए, फिर जो सब्जी उबल जाए घर आए, सीधे काटे छोंक दे बन गई, उस तरह की आलू या परवल या इस तरह की चीजें आप ऊपर रख दीजिए। और हम लोग आते थे एक डेढ़ दो बजे स्कूल से तो, और फट से बना बना खाना मिलता है गरम गरम। तो ये आनंद कुकर बहुत ही ब्यूटीफुल चीज थी, वो पता नहीं गायब होगी, लोगों को रखना चाहिए अपने घर में। उसका तो फ्लेवर भी खाने का बहुत अच्छा आता है।
0: जी जी जी, बिल्कुल।
1: तो कोयले में पका हुआ एक तो इधर ही बचता है और इतना डिलीशियस खाना बनता है। तो मदर फिर आती थी इलाहाबाद की गर्मी, तो आपको पता ही, आप भी वहीं की हैं।
0: बिल्कुल, भीषण गर्मी,
1: भयंकर गर्मी। तो तब वो रिक्शे में आती थी, एक रिक्शा वाला बेचारा उनको ढो के सबको, तब तभी रिक्शा ही चलता था। तो वो हमारा फर्स्ट फ्लोर पे घर था, नए नए फ्लैट सेलअप सिस्टम इलाहाबाद में आया था, तो हमारे घर वालों ने खरीद लिया था एक फ्लैट, आज भी है वो फ्लैट। तो दिन में आती थी वो 3:30 बजे में, भीषण गर्मी, और रिक्शे वाले को ऊपर ले आता, रिक्शे वाला पसीने से लथपथ होता था।
0: बिल्कुल।
1: ये उनसे मैंने एक चीज की, जब वो आती थी मतलब कहते रिक्शे वाले को पानी पिलाओ, पानी पिलाने के पहले उसको गुड़ दो।
0: क्या बात है, ये वहाँ का चलन है।
1: मैं बड़ा सा एक ढेला गुड़ का उसको रिक्शे वाले को देता था, वो पहले बेचारा गुड़ खाता था और फिर वो ठंडा पानी पीता था और बहुत दुआएं देके जाता था। ये हम हर रोज होता था।
0: क्या बात है।
1: तो ये चीज मुझे बहुत याद रही अपनी मदर की, कि
0: ये सिखाया। और जी, और आपकी फिल्मों को जब उन्होंने देखा, निर्देशन किया, तो उन फिल्मों में कुछ बारीकियां वो समझाती थी?
1: उनको प्रॉब्लम होती है मेरी फिल्मों से, क्योंकि बहुत लड़ाई झगड़ा खून खराबा गोलियां बहुत चलती है, तो उनको भी इस बात का वो है, वो एतराज करती है इस पे, कैसी फिल्म बनाते हो।
0: तो आपने बात मानी नहीं उनकी एक कोई प्रेम कहानी लेकर आइए और बड़ी संवेदनशील, जहाँ प्रेमालाप हो, जो इलाहाबाद की गलियों में होता है।
1: हाँ, नहीं, पान सिंह तोमर जैसी फिल्म तो उनको भी अच्छी लगी थी, उसमें फिर अवार्ड कभी मिल जाता है तो बहुत खुश हो जाती है वो।
0: किसे नहीं अच्छा लगता है। पान सिंह तोमर एक बेहतरीन फिल्म थी, हम सब ने देखी है, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और सचमुच इरफान की एक्टिंग, जब भी पान सिंह तोमर की बात चलती है तो इरफान का जिक्र ना हो ये हो ही नहीं सकता। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने तो ये इलाहाबाद का जिक्र किया, माँ का जिक्र किया, और आपके भाई भी अभी जज हैं इलाहाबाद में।
1: अब वो सुप्रीम कोर्ट में जज थे और लास्ट ईयर अगस्त में रिटायर कर गया।
0: जी, तो वो जो परिवार इतना आपका क्या कहते हैं इलाहाबाद में जो भाषा कहते हैं दबंगई, तो वो दबंगई आपकी फिल्मों में भी कहीं आप लाते हैं, और छोटे शहरों के जो कस्बे के संवाद होते हैं, जो कैरेक्टर होते हैं, किरदार होते हैं, वो आपकी फिल्मों में खूब दिखाई देते हैं, तो वो क्या इलाहाबाद की देन है कि आपके निर्देशक की कलाबाजी है?
1: नहीं, एक बचपन से मुझे फिल्में ही वो पसंद थी जिसमें थोड़ा से इस तरह के एलिमेंट्स हों, जो किसी के आदेश का पालन नहीं करते वाले किरदार जो जो किसी से दब के नहीं रहते हैं, क्योंकि इलाहाबादियों में एक बात होती है, दब के नहीं रह सकता किसी से। तो पता नहीं क्या बात थी, मुझे फिल्में भी वैसी अच्छी लगती थी, मुझे लव स्टोरीज पसंद ही नहीं आती थी। तो ये टेस्ट वाली बात है कि आपको कौन सा खाना पसंद है, उसी तरह की चीज थी। मुझको थोड़ा जिसमें पोस्टर में अगर पिस्टल है तो वो पिक्चर देखनी है, इस तरह का था। वही चीज चली आ रही है, तो मैं बनाता भी वैसी फिल्में हूँ। लव स्टोरीज मैंने शायद एक ही बनाई, वो चली हुई नहीं।
0: साहब वो जी, और उसमें वो गाना भी खूब मशहूर हुआ था, आंखें भी दिल की जुबान,
1: ये तो हासिल,
0: तो हासिल का है। और साहब बीबी गैंगस्टर में भी खूब गोलियां चली हैं।
1: जी जी जी।
0: तो साहब बीबी गैंगस्टर से जुड़ी कुछ बात हमारे श्रोता

0: को बताइए, शूटिंग के समय किस तरह का माहौल आप रचते हैं, आपका जो निर्देशक का?
1: साहिब बीबी के मैंने तीन पार्ट बनाए थे, तो जो पहला पार्ट बन रहा था, जब बनाया था, तो हमारे पास कोई काम नहीं था, किसी के पास। पान सिंह तोमर बन चुकी थी और फिल्म रिलीज नहीं हो रही थी, और मैं तो वेट करता था कि पिक्चर रिलीज होगी, अगर कुछ हुआ तो फिर अगली फिल्म मिलेगी, ऐसे ही चलता करियर। और फिल्म रिलीज ही नहीं कर रहे थे वो लोग, हम ऑफिस जाते थे, कुछ नहीं करते थे, फिल्में देखते थे और टीटी खेलते थे, चले आते थे। तो ऑफिस में कई लोग आते थे, रणदीप हुड्डा भी आता था, वो भी टीटी खेलता था हम लोगों के साथ, और जिमी तो खैर दोस्त तो आता ही था। तो फिर सोच, मतलब उसी वक्त ये डिजिटल नेगेटिव गया और डिजिटल आया हिंदुस्तान में, जब डिजिटल पे शूट करते हैं ना सब कुछ।
0: जी जी।
1: तो उससे कॉस्ट बहुत कम हो गई फिल्म बनाने की, बहुत ज्यादा। तो मुझको लगा कि मैं डिजिटल पे, मैंने कहा 1.5 करोड़ में फिल्म बना दूंगा, किसी को देंगे नहीं पैसा, जो भी खाना वाने का खर्चा है लोगों को थोड़ा बहुत करके 1.5-2 में बना दूंगा। और उल्टी बही गंगा, हमको, हमने पहले टाइटल डिसाइड किया साहेब बीवी, और मुझको साहेब बीवी गुलाम का एक इंडियन मॉडर्न वर्जन बनाना था।
0: जी जी जी।
1: वो बहुत अच्छी फिल्म है, सबको पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। तो पुनः गया गुलाम नहीं गैंगस्टर, अच्छा टाइटल, पहले टाइटल आया, फिर उस तरह की लोकेशन ढूंढने गए। जब लोकेशन मिली तो लोकेशन के हिसाब से स्क्रिप्ट लिखी गई, उल्टा, पहले तो स्क्रिप्ट लिखी जाती है फिर जाते हैं हम लोकेशन ढूंढने, यहाँ उल्टी भाई सब बड़ी गंगा
0: जी।
1: ये कहकर हमने वो फिल्म बना दी, और वो पिक्चर ने बहुत क्रिटिकल अक्लेम और चली भी पिक्चर वो
0: जी,
1: और उससे उसकी वजह से फिर सेकेंड भी आई और फिर थर्ड भी आई
0: जी। तो तीनों को बनाने में जो कि पहली फिल्म पहली से, मतलब दूसरी फिल्म पहली से और अच्छी हो और उत्तम हो, तो उसके लिए क्या खास ख्याल रखा आपने?
1: कुछ ऐसा ख्याल, मुझको तो उसी दुनिया में बनानी थी, कहानी का ही हर पहले का ही एक्सटेंशन था, सेकेंड और थर्ड भी। तो उसे सिर्फ गैंगस्टर बदलते हैं, पहली वाले में रणदीप हुड्डा गैंगस्टर थे, सेकेंड वाले में इरफान था। तो पहली भी चल गई थी, और तो सेकंड वाले में थोड़ा हमको मिल गया स्टूडियो फट से, बहुत झंझट नहीं हुआ
0: जी जी,
1: थोड़ा बजट भी थोड़ा बढ़ गया। तो उसमें थोड़ा सा आपने थोड़ा ज्यादा दिखा दिया, पोलो मैचेस जितने प्रिंसली वाले जो पोलो खेलते हैं उस तरह के मैचेस, और ये वो थोड़ा गानों में खर्चा ज्यादा, वो सब किया हमने सेकंड में
0: जी। एक झलक सुनते हैं गाने की, साहबीबी और गैंगस्टर, नूरा सिस्टर्स की आवाज में।

0: ये साहब बीबी और गैंगस्टर फिल्म का गाना था नूरा सिस्टर्स की आवाज में, और तिग्मांशु जी की ही ये फिल्म है। तिग्मांशु जी, हमारे बहुत सारे श्रोता विविध भारती के बुक पेज से जुड़े हैं और आपसे बहुत सारी बातें पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उनकी बहुत सारी जिज्ञासाएं। एक श्रोता ने पूछा है आपसे कि आपने अभिनय और निर्देशन दोनों में काम किया है, कैमरे के सामने और कैमरे के पीछे काम करने में आपको सबसे बड़ा अंतर क्या महसूस होता है?
1: दोनों अलग अलग चीजें हैं, अंतर क्या बहुत ही दोनों, मुझे मजा कैमरे के पीछे ज्यादा आता है, मुझे डायरेक्शन करने में ज्यादा मजा आता है। एक्टिंग मैं करता हूँ क्योंकि मैं बाय मिस्टेक एक्टर बन गया किसी तरह से और वो लोगों को पसंद आ गया, तो अब मुझे कभी कोई रोल ठीक ठाक होता है या पैसे थोड़े ठीक ठाक मिलते तो मैं रोल कर लेता हूँ, बाकी मुझे बहुत शौक नहीं है एक्टिंग करने का।
0: जी,
1: दुनिया का सबसे आसान काम है एक्टिंग।
0: अच्छा, तो उस समय आपका निर्देशक भी काम करता है आपके भीतर कि जो निर्देशक बोलता है वही करते हैं?
1: जी नहीं, आप उसको स्विच ऑफ तो नहीं कर सकते कि आप कंप्लीटली स्विच ऑफ, तो लेकिन ये है कि डायरेक्टर कोई और होता है तो मैं ज्यादा सवाल जवाब करता नहीं हूँ। अंटिल एंड अनलेस बहुत ही मेजर कोई प्रॉब्लम लग रही है कि जो वो डायरेक्टर समझ नहीं पा रहा, तब मैं कभी कभी समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अगर वो अड़ा रहे तो मैं डायरेक्टर की ही मान मानता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे एक्टर भी ऐसा ही करें, तो मैं भी डायरेक्टर की ही बात मानता हूँ, तो माननी भी चाहिए
0: जी।
1: तो लेकिन एंजॉय मैं ज्यादा डायरेक्ट करना करता हूँ
0: जी। एक श्रोता कह रहे हैं कि अवधि में कुछ बोल के बताइए।
1: अरे कहा तो... बताई भैया एक सवाल बढ़िया से पूछो तो बताई फिर तुमको।
0: तो बताओ कौनो शूटिंग से जुड़ी हुई कौनो बात याद हो तो बताओ दे।
1: अरे अब शूटिंग इतनी पिक्चर बन गई क्योंकि इतने कांड हुए हैं और इतनी कहानियां हैं कि सुबह से रात हो जाएगी,
0: तो एक आध कोनो छोटा सा अंश बता दे ताकि हमारा श्रोता खुश हो जाए।
1: नहीं ऐसे जब बहुत कुछ होता था कि एक जैसे पान सिंह तोमर की एक बार शूटिंग कर रहे थे हम लोग चंबल में, तो बहुत खूबसूरत जगह है चंबल, बहुत ही वो नदी इतनी खूबसूरत है, इतनी साफ, इतनी आप उसको आप ऊपर से देखें बोट से तो आपको नीचे तक दिखाई देता है,
0: ट्रांसपेरेंट है
1: एकदम, आपको नीचे कछुए और ये सब चीजें तैरती हुई दिखाई देगी, ब्यूटीफुल रिवर, और साथ में वो चंबल के घाटियां और रमेंस जो है। तो शूटिंग करते थे फिर सोचते थे यार, क्योंकि सारे दोस्त यार हैं इतनी 100-150-200 की यूनिट है, हम लोग सोचते थे कि यार एक जैसे की जगह शूटिंग कर रहे थे हम लोग, तो हमने कहा साहब मैं इरफान हूं, मैंने कहा यार रात को ना बैकअप के बाद यही मंदिर बनाएंगे।
0: क्या बात है।
1: तो यही बैठा जाएगा,
0: डर नहीं लगता था रात की शूटिंग में?
1: उस तो पुलिस तो रहती थी हम लोग के साथ, लेकिन हम लोग सोचा लगे बैठेंगे अपना कुछ मजा वजा करेंगे यही आसपास, खाना वाना कहीं बनवा लेंगे गाँव में, और पूरी तैयारी के साथ, और बहुत कैसे जिस कैसे जल्दी पैकअप हो और कैसे हम लोग सब रिलैक्स करें नदी के बगल में, घड़ियाल बहुत है वहाँ चंबल जो नदी है उसके कट पे एलिगेटर्स जो है बहुत सारे हैं
0: जी जी,
1: ऐसे मुंह खुले हुए सब लेटे रहते हैं सब। तब तक खबर आई, हमने पूरा इंतजाम कर लिया कि आग वाग का सबका, हर तरह की आग का, तो फिर पाया कि देखो शूटिंग देखने के लिए आते हैं ना बहुत सारे लोग, कौन
0: जी,
1: क्या है उसमें क्या मालूम, कहते नहीं डकैत लग गए हैं यहाँ पे 3-4 और आप लोग ये सब एंजॉय करना भूल जाइए, चुपचाप गाड़ी में बैठिए होटल जाइए।
0: तो
1: वही किया, नहीं तो पता चला कि जो हीरो है उनको उठा के ले गए, पकड़ बन गए, वो हम उनकी रैंसम दे रहे हैं वो। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं शूटिंग के दौरान, आपको क्योंकि लोकेशन नहीं होती है आप थोड़ा ज्यादा एडवेंचरस होना चाहते हैं, कभी होते हैं कभी नहीं हो पाते हैं, बहुत सारे किस्से इस तरह के
0: जी जी
1: बहुत है। लेकिन डाकू आते थे हमारी शूटिंग देखने।
0: अच्छा, तो कभी आपको उनसे डर नहीं लगा, डराया धमकाया नहीं?
1: इस तरह के थोड़ी होते हैं
0: जी,
1: इस तरह के थोड़े गधे बेवकूफ थोड़ी होते हैं बाकी लोग
0: जी,
1: उनको अगर किसी को किडनैप करना हो तो पूरे प्लानिंग के साथ आएंगे तो करेंगे, लेकिन ऐसे वो किसी को
0: हार्म नहीं पहुंचाते, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते।
1: अब वो पूरे एरिया में सब घर

0: घर में बंदूकें हैं, क्या करेंगे डाकू परेशान।
1: और आप जैसे जो इलाहाबाद की जो दबंग है, दबंग किस्म के इंसान तो डर ही नहीं सकते हैं, ये भी बात।
0: ऐसी बात नहीं है, डर तो लगता है, सबको लगता है, मुझको भी लगता है
1: जी,
0: और लगना भी चाहिए।
1: बिल्कुल सही बात है, खतरों से खतरों का सामना करना ठीक है, लेकिन खतरों के खिलाफ खड़े होके अनायास मोर्चा लेना भी ठीक नहीं होता। जी, और हमारे एक श्रोता ने पूछा है आपसे कि आज के दौर में जब सिनेमा तेजी से बदल रहा है, तो आपको लगता है कि कहानी ज्यादा महत्वपूर्ण है या उसे प्रस्तुत करने का तरीका?
0: फिल्म चलने के पीछे, अच्छी फिल्म की बात नहीं कर रहा हूं मैं, दोनों पे बात बोल सकता हूं, देखिए फिल्म के चलने के पीछे अच्छी कहानी हो जरूरी नहीं है।
1: जी, कौन सी फिल्म चल जाए कुछ पता नहीं।
0: नहीं नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, उस पिक्चर का प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया होना चाहिए। आपको क्या चाहे कैसी भी कहानी हो, सिंपल कहानी हो, लेकिन उसको जिस तरह से आप कह रहे हैं, वो अंदाज आपका, उस फिल्म की पैकेजिंग, किस तरह से टाइटल्स आ रहे हैं, किस जगह पे गाना आ रहा है, स्क्रीन प्ले जिसे कहते हैं हम, मंजर कशी, जिसे जावेद साहब से पूछा गया था कि स्टोरी और स्क्रीन प्ले में फर्क क्या है, तो स्टोरी इज व्हाट एंड स्क्रीन प्ले इज हाउ। तो आपका अगर हाउ बहुत अच्छा है तो एक कमजोर या बहुत ही सिंपल सी सामान्य सी कहानी भी अच्छी फिल्म हिट बन सकती है। लेकिन अच्छी फिल्म, बहुत अच्छी फिल्म में तो यह है कि कहानी अगर हो तो फिर वो यादगार बन जाती है, अगर कहानी अच्छी है तो।
1: जी बिल्कुल, तो आपको बतौर, चूंकि आप लेखक भी हैं और निर्देशक भी हैं, तो कभी अपने लिखे को एक निर्देशक के रूप में खारिज भी करते हैं, प्रशंसा भी करते हैं, कोई ऐसे उदाहरण देके बताइए हमारे श्रोताओं को कि
0: लिखना तो एक्चुअली सबसे पड़ी, जब क्योंकि मैं लिखता भी सारी फिल्म खुद की, सारी जितना भी अब तक काम किया मैंने खुद ही लिखा है सब, तो वो एक बहुत ही पैनी और उससे स्क्रूटनी से होके गुजरता है। बहुत आलसी लेखक भी हूँ मैं, मुझे जल्दी भी नहीं लिखा जाता।
1: अच्छा।
0: हाँ, बहुत टाइम लेता हूँ मैं, तो मैं, मुझको ऐसा तो नहीं लगा कि मैंने कभी कोई खराब, ऐसे नहीं, मेरी सारी पिक्चर लिखा, बहुत सारी पिक्चर फ्लॉप ही है मेरी,
1: ये आप कह रहे हैं ना।
0: नहीं, सच बात है, उसमें क्या है, हर पिक्चर तो हिट, किसी भी सक्सेसफुल डायरेक्टर का, जिसका भी आप बड़े से बड़े के नाम लें, पूरे फिल्मोग्राफी में 3-4 पिक्चरें होती हैं जो अच्छी होती हैं
1: जी,
0: बड़े से बड़े की। बहुत एक्सेप्शनल कोई केस हो गया वो उसकी बात छोड़ देते हैं, बिमल रॉय को हटा देते हैं स्फेरिस से, और राज कपूर साहब और गुरुदत्त इन जैसे लोगों को हटा देते हैं, वो लोग तो लेजेंड्स हैं, वो लोग, उन्होंने ग्रामर लिखा है सिनेमा का, हिंदी सिनेमा का, तो उनसे तो हम कभी देख भी नहीं सकते, सिर्फ नतमस्तक हो सकते हैं उनके सामने। बाकी जो और लोग जिन पे हम लोग जैसे डायरेक्टर आते हैं, तो उन सबकी फेहरिस्त में देखिएगा, तो अगर 15 पिक्चरें हैं तो 4 ही पिक्चरें होंगी जो सही पड़ी होंगी, बाकी तो आदमी फेल करता ही करता है।
1: आपकी ये बात बड़ी मन भाई कि इतनी ईमानदारी से अपनी फिल्मों की समीक्षा खुद ही कर रहे हैं, और पुराने दौर के गोल्डन इरा के निर्देशकों की बात की और फिल्मों की बात की, तो पुरानी फिल्में आप देखते हैं, उनके गाने
0: सुनते हैं? मैं तो आजकल पुरानी ही देखता हूँ
1: जी,
0: मैं तो आजकल पुरानी फिल्में ही देखता हूँ, कई फिल्में मिस हो भी, सब पिक्चर तो अच्छी नहीं देखी, कई पिक्चर मिसिंग भी है, कहीं आ जाती, तो मैं यूट्यूब में खोज खाज के वो फिल्में देखता हूँ मैं।
1: कौन कौन सी फिल्में देखी इन दिनों?
0: मैंने अभी ख्वाजा अदम अहमद अब्बास की एक दो फिल्में देखी जो कि नहीं देखी थी, देव साहब की एक दो फिल्में थी जो मैंने नहीं देखी थी, और जैसे मेरी बहुत अच्छी पिक्चर जो मैंने नहीं देखी थी, इसका नाम था शंकर हुसैन
1: जी, जी
0: जिसके गाने
1: बहुत ही
0: खूबसूरत गाने, तो मैं गाने तो बहुत सुने थे, पिक्चर नहीं देखी थी, वो देखी मैंने। तो ऐसे ऐसे कई फिल्में हैं जो कि मैं देखता रहता हूँ, हिंदी की भी और अंग्रेजी की भी।
1: तो गाने आपकी जिंदगी में कैसे जुड़ते हैं, क्या दखल रखते हैं आपकी जिंदगी में पुराने गाने?
0: अब गानों के साथ म्यूजिक के साथ, जब हम लोग इलाहाबाद में थे तो हमारा बैंड था, तो अंग्रेजी गाने बजाते थे हम लोग
1: जी जी,
0: मैं रिदम गिटार बजाता था और गाता था
1: जी,
0: और मैं गाता ठीक ठाक था, तो मुझे सब जगह जितने इलाहाबाद के लेवल पे और फिर यूनिवर्सिटी लेवल में कॉम्पिटिशन या सब फेस्टिवल्स होते थे सब स्टूडेंट्स का अपना, तो उन फेस्टिवल्स में मुझको हमेशा बेस्ट वेस्टर्न सोलो मेल अवार्ड हमेशा मिलता था, तो मैंने चैंपियन था मैं उसका।
1: क्या बात है भाई,
0: तो जी
1: आपने,
0: मैं गिटार कभी बहुत अच्छा बजा नहीं पाया, रिदम बजा लेता था, लेकिन मैं अच्छा लीड गिटारिस्ट बनना चाहता था, जो मैं कभी नहीं कर पाया, मैं आज भी सोचता हूँ लेकिन टाइम नहीं मिलता है, मैं चाहता हूँ कि जाने से पहले मैं अच्छा लीड गिटारिस्ट बन जाऊँ।
1: क्या बात है।
0: तो वहां से सिलसिला शुरू हुआ म्यूजिक का, और फिर मेरे जो मैंने वही किया जो मेरे दोनों बड़े भाइयों ने किया, उन्हीं की नक्शे कदम पे मैं चला हूँ। बड़े भाई साहब मेरे वो डिफेंस

0: चले गए, वो नेवी में थे, रिटायर कर गए, बट अभी भी उनका आर्ट और पोइट्री वो परसू करते रहते हैं गोवा में। बीच वाले भाई साहब वो जुडिशरी में चले गए, हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस जज बने, फिर चीफ जस्टिस बने गुवाहाटी हाई कोर्ट के, भी सुप्रीम कोर्ट के जज बने, वो उनकी पूरी जिंदगी जुडिशरी। लेकिन वो भी मुझसे, अगर वो फिल्मों में आते तो शायद मुझसे बेटर फिल्में कर होते वो।
1: जी जी।
0: अब ये था, मैं छोटा था, हम लोगों में एज डिफरेंस बहुत है, 7-8 साल का डिफरेंस है भाइयों में मेरे और उनमें। तो उन्होंने छोटे भाई को प्रमोट किया कि करने दो उसको, तो उनकी बदौलत में बढ़ गया आगे।
1: जी जी जी। तो अब यहाँ पर कौन सा गाना सुनवाए? शंकर हुसैन का भी जिक्र किया आपने, आपकी पसंद का कोई और गाना?
0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का गाना है दाग फिल्म का।
1: जी जी।
0: विच इज अ वेरी अनलाइक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल सॉन्ग।
1: जी जी। तो वही गाना सुनते हैं।

0: साईं साहब ने लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने धुन बनाई थी, किशोर कुमार की आवाज और
1: दाग
0: दाग फिल्म। तो ये गाना तो हमने सुना और हमारे श्रोता विविध भारती के फेसबुक पेज से जुड़े हैं, तो वो उन्हें बड़ी जिज्ञासा

0: ऐसा है तो उनकी ओर से एक सवाल है, वो ये कि आपका नाम तिग्मांशु है और धूलिया है, तो ये दोनों का मतलब क्या है? दो नाम है या एक ही नाम है?
1: नहीं, नाम तिग्मांशु है, धूलिया मेरा सरनेम है।
0: जी,
1: तो तिग्मांशु संस्कृत नाम है, इसका मतलब है सूर्य, सूर्य। तिग्मांशु तो
0: जी,
1: तेज जिसकी अंशु है, किरणें हैं, वो है तिग्मांशु।

0: वो है दिग्वांशु जो, तो सूर्य सहस्त्र नाम अगर आप जो सारे नाम सूर्य भगवान के आप सुनिएगा तो उसमें दिग्वांशु भी आता है।
1: जी जी
0: तो मुझको नहीं लगता मेरे नाम किसी तो, मेरे नाम का कोई और दूसरा है इस देश में, बड़ा सोच समझ के रखा गया मेरा नाम।
1: बिल्कुल, शायद आहट मिल गई थी आपके माता पिता को
0: क्योंकि मेरे दोनों बड़े भाइयों का नाम मानशु सुधांशु है, वो चंद्रमा से वो है तो वो उनको लगा एक तो सूरज हो
1: जी।
0: तो और धुलिया का क्या है, मैं भी पूछता रहता हूँ कि क्या रब है, तो मुझे जो मुझे एकदम साइंटिफिक और हिस्टोरिकली थोड़ा रेलिवेंट और करेक्ट लगता है वो ये लगता है कि शायद हम लोग धुले से हैं, महाराष्ट्र से।
1: जी जी।
0: वैसे तो मैं हूँ उत्तराखंड का, हम लोग पहाड़ के रहने वाले, तो तब अब तो उत्तराखंड तो 2000 में बना, उसके पहले तो यूपी का ही पार्ट था सब। तो मुझको एक मेरी थ्योरी लगती है, जब 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई, जब पेशवा साहब वहां से चल के पानीपत मतलब हरियाणा लड़ाई करने आया है मशाद अली से
1: जी।
0: तो वो सिर्फ सेना नहीं आती ना, तब तो साथ में बहुत सारे लोग आते हैं, पुजारी भी आते हैं और गाने वाले भी आते हैं, क्योंकि बहुत मिलों तक का ट्रैवल होता है। तो मुझको लगता है कि पानीपत के उसमें फिर कई पुजारी जो है रह गए वहीं, और ये भी होता था कि वहां तक जा रहे हैं तो जो भी ब्राह्मण्स होते थे उनको ये लगता था काशी तो हो आए या बद्रीनाथ केदारनाथ के दर्शन कर लें, ये सब बहुत होता था ना वहां से आए हैं, यहाँ तो हवाई जहाज तो थे नहीं कि पहुंचे घटाकर, तब तो पैदल चलना है सब। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग धुले से थे और हम लोग रह गए वहां और उनको अच्छा लगा शायद पहाड़ में रहना
1: जी,
0: तो उत्तराखंड में सेटल हो गए, ऐसा मुझे लगता है
1: जी। बात उत्तराखंड की चली है, उत्तराखंड के बारे में हम जानना चाहते हैं। तिग्मांशु जी एक टिप्पणी है, जानी मानी कथाकार है मनीषा कुलश्रेष्ठ, उन्होंने अभी टिप्पणी की है और इस पूरे कार्यक्रम की बहुत तारीफ कर रही हैं और लाइव फेसबुक पेज पर देख रही हैं, तो उनका हम शुक्रिया अदा कर देते हैं।
0: जी जी, बहुत बहुत बहुत बहुत शुक्रिया
1: जी। और एक श्रोता ने पूछा है आपसे, विविध भारती ने हिंदी सिनेमा के संगीत को घर घर पहुंचाया है, आपकी फिल्मों में जैसे पान सिंह तोमर है, हासिल है, साहब बीबी और गैंगस्टर में भी संगीत का एक खास मिजाज है, रेडियो पर बजने वाले पुराने गानों ने आपके संगीत के सेंस को कितना प्रभावित किया है?
0: अब मुझे हिंदी फिल्म म्यूजिक मुझे को मैं एक बहुत ऊंचे लेवल पर रखता हूँ, जिससे बड़ा बढ़िया हिंदी फिल्म म्यूजिक एक फ्यूजन म्यूजिक का इससे बड़ा एग्जांपल नहीं हो सकता।
1: जी जी।
0: बाद में सब जैज और फ्यूजन म्यूजिक आया कि इंडियन क्लासिकल और जैज को मिक्स, वो सब हिंदी फिल्म म्यूजिक ये काम 200 साल पहले से कर रहा था।
1: बिल्कुल,
0: बहुत इंट्रिकेट कॉम्प्लिकेटेड हिंदी फिल्म म्यूजिक है
1: जी जी।
0: तो उसको पसंद अगर मैं करता हूँ या जो भी लोग पसंद करते हैं वही कारणों से करते, कहिए को लिरिक्स बहुत पसंद आती है। अब पुराने जमाने में क्या था, जो कि लिरिक राइटर जो थे वो मुझे लगता है सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे, और हिंदी फिल्म के जो राइटर्स थे सबसे ज्यादा, बाकी लोग इतने थोड़ा कम पढ़े लिखे थे, चाहे वो डायरेक्टर्स भी ही क्यों ना हो। तो हमारी हिंदी फिल्म म्यूजिक को इतना पॉपुलर करने के लिए पीछे लिरिक राइटर्स का हाथ बहुत, और मैं आज एकदम पूरे दम से बात कहता हूँ कि गाने कविता की वजह से ज्यादा चलते हैं बजाय उसकी मेलेडी की वजह से।
1: क्या बात कही आपने, सच में।
0: जी बिल्कुल, लिरिक्स की वजह से ज्यादा चलते हैं, आज उनको हम याद ही इसलिए करते हैं बिकॉज वो लिरिक्स हमको समझ में आती हैं और हमारे दिल को छूती हैं, और डेफिनेटली उसके बाद एक मेलेडी कॉम्पोजिशन का हाथ तो होता ही है, लेकिन इट्स फर्स्ट थिंग आई थिंक इट इज ऑल पोएट्री।
1: जी बिल्कुल, और मुझे भी ऐसा लगता है कि जो कविता होती है वो गाने खूब चलते भी हैं, इसीलिए शायद हमें पुराने गाने कंठस्थ होते हैं और नए वाले गाने हम बहुत कोशिश करते हैं, अच्छे भी लगते हैं तो भी हम याद नहीं कर पाते।
0: बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं आजकल गाने को, उनको लगता है हम कोई बड़ी बात बात कह दें, अरे महसूस जिंदगी में किया नहीं, से बात करने से थोड़ी होता है। मैं तो हमेशा कहता हूँ इश्क करना सीख लेना, से इल्म से शायरी नहीं आती है, इश्क तो कर।
1: जी बिल्कुल,
0: तो पुराने राइटर्स से जैसे हिंदी फिल्म म्यूजिक राइटर बहुत ग्रेट ग्रेट राइटर्स हैं, लेकिन जो सब वो राइटर्स जिनकी फिल्मोग्राफी बॉडी ऑफ वर्क बहुत ज्यादा है और बहुत अच्छा भी है परसेंटेज, वो मजरूह सुल्तानपुरी हैं, वो आनंद बख्शी जी हैं, सिंपल राइटिंग है एकदम
1: जो सबके पिक्चर
0: देखती हूँ उनकी फेहरिस्त सबसे ज्यादा है ना
1: जी।
0: तो उसका हिंदी फिल्म गाने लिखने का एक जो शऊर है वो सबको नहीं पास नहीं आता।
1: जी जी, तो इस समय आप जो नए दौर के बच्चे हैं, युवा पीढ़ी है, उनके लिए कुछ कहिए, और हम भी आपसे ये गुजारिश करेंगे कि आपकी फिल्मों के गाने कविता के रूप में आए, क्या आप ये वादा करेंगे? और नए बच्चों के लिए कुछ कहेंगे कि वो नए गानों से, हिंदी गानों से कैसे जुड़े?
0: देखिए, कामयाबी बहुत मुश्किल से मिलती है।

0: क्योंकि मीडियोक्रेटी ज्यादा है, अच्छा काम तो कम ही होता है,
1: जी
0: बुरा काम ही होता है ज्यादा तो। लेकिन मैं ये कहूंगा कि कोशिश करते रहो बस,
1: जी
0: कोशिश करते रहो, भले ही हम लोगों की संख्या कम हो लेकिन फिर इवेंचुअली हम ही लोग असरदार बनेंगे। तो इसलिए कोशिश करना मत छोड़ो, हार मत मानो कि यार ये गाने चलते नहीं है, कौन सुनेगा मेरे गाने, नहीं लिखो, वही इवेंचुअली कुछ ना कुछ मिलेगा।
1: बिल्कुल, आज के दौर में भी इरशाद कामिल, स्वानंद किरकिरे जैसे गीतकार जो कविता रचते हैं अपने गानों में और हम सब पसंद करते हैं।
0: तो ये दिक्कत ये है ना कि हमारे फिल्मों में गाने खत्म हो गए।
1: जी,
0: प्रॉब्लम ये है, हम क्यों ये सारे जो हम भी गाने सुन रहे हैं पुराने गाने हैं, नया गाना को तो कोई सुनता भी नहीं है।
1: जी,
0: और पिक्चरों का जिस तरह से बजट हो गया है, जिस तरह की चीजें हो गई, आप गाना आप रख नहीं सकते कि, तो गाने को रिकॉर्ड करने में पैसा खर्चा होता है, फिर उस गाने को पिक्चराइज करने में 3-4 दिन, अच्छा गाना हो तो 3-4 दिन तो जाएगा ही जाएगा।
1: जी,
0: तो वो बजट में बहुत बड़ा एक पैकेट सा बन जाता है म्यूजिक। तो सबसे पहले सोचा म्यूजिक को हटाओ, बैकग्राउंड में रख दो गाने, थोड़ा यही हो गया है। सिर्फ बड़ी फिल्मों में गाने होते हैं, बाकी छोटी फिल्मों में तो बैकग्राउंड में कुछ गाना, वो गाना चलते वलते भी नहीं है कुछ।
1: जी जी,
0: पहले जमाने में तो जैसे मैं हमेशा कहता था, अमिताभ बच्चन की नई पिक्चर भी आती थी कोई मुकद्दर सिकंदर, तो साथ में अमोल पालेकर साहब की भी गोलमाल आती थी, उसके गाने भी अच्छे थे।
1: जी जी बिल्कुल, और वो गाने याद किए जाते थे, गुनगुनाए जाते थे। और आज भी जो म्यूजिकल शो होते हैं, चाहे वो अंताक्षरी हो निजी तौर पर या कहीं, तो वहाँ पुराने गाने ही गाए जाते।
0: और देखिए बात ये, उस वक्त के जो म्यूजिक डायरेक्टर्स थे वो बड़ी पिक्चर भी करते थे और वो छोटी पिक्चर भी, ये जानते थे कि छोटी पिक्चर का बजट कम होगा। आर डी बर्मन के आप मैक्सिमम गाने जो अच्छे हैं वो छोटी पिक्चरों के, आप उठा के देख लीजिए।
1: जी जी बिल्कुल,
0: तो गोलमाल, बुड्ढा मिल गया, मासूम, ये सब पिक्चर छोटे बजट की पिक्चर है। फिर उन्होंने बड़ी, रमेश सिप्पी शोले, ये सब किया, लेकिन उनकी जो छोटी जो कम बजट की पिक्चर है, ऋषिकेश मुखर्जी की सारी पिक्चरें बेमिसाल देख लीजिए, कितनी फिल्में देख लीजिए, सब में म्यूजिक उन्हीं का है ना।
1: जी बिल्कुल,
0: छोटी फिल्म है, देख लीजिए आप।
1: तो यहाँ पर जिक्र गानों का है, तो कौन सा गाना आपकी पसंद का हम सुनवाए?
0: वो गाना बहुत अच्छा लगता है, वो फिर में लोग कभी इस बात का वादा कर लो, ओपी नैयर साहब का बहुत खूबसूरत गाना।
1: जी जी, वो गाना हम सुनवाते हैं, ये रात फिर ना आएगी।
0: जी,
1: ये वाला गाना आपको, आपने पसंद किया तो सुनते हैं।

0: विविध भारती के इस जश्न के मौके पर हमने आमंत्रित किया है जाने माने फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया जी को। तिग्मांशु जी, हमें बताइए कि एक फिल्म थी दिल से जिसमें आपने स्क्रीन प्ले किया,
1: डायलॉग्स
0: और डायलॉग्स किए, और एक नाम है जानुसी, आपकी बेटी का नाम है। तो हमें ये पता चला है कि उसमें एक गाना है गुलजार साहब का लिखा हुआ, उस गाने से कहीं इंस्पायर होकर वो लिखा, क्या है कहानी, बताइए ना हमारे श्रोताओं को।
1: उसमें हुआ ये कि दिल से का जब म्यूजिक रिलीज हुआ तो उस पार्टी में सब लोग जो फिल्म से जुड़े हुए लोग होते हैं सबको बुलाया जाता है जो होते हैं,
0: तो अजनबी गाना,
1: हाँ, तो उसमें सीडी मिला। पिक्चर अभी घर के गाने पब्लिक में रिलीज नहीं हुए थे
0: जी,
1: तो मैं उसका सीडी, अब जवान सी मेरी बिटिया पैदा हो चुकी थी, उसका नाम भी रख हुए थे, उसका नाम रखा गया था श्रेयसी। तो
0: आपकी वाइफ ने रखा था?
1: हाँ, घर वालों ने भी मिलके, मदर ने भी सब सब करके कि श्रेयसी, मेरी मदर क्योंकि संस्कृत की है वो, तो नामों को लेके उनका
0: जी जी
1: हमारी फैमिली में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन है। अब ये हुआ कि मैं घर में वो सीडी लेके आया, उसमें गाना शुरू हुआ वो छैया छैया के बाद ये, और फिर ये जब गाना सुना शुरू आया अजनबी तू भी, तो उसमें हम लोग सुन रहे थे गाने तो कमाल थे दिल से के, खैर आज भी झटका दे देते हैं हर एक गाना उसका, तो उसमें वो जान सी कहां,
0: क्या बात है,
1: और भी तुलका लेकर रुको, जानसी वर्ड, बेटिया का नाम जानसी, मैंने कहा ठीक है, तो मैं कहता हूँ एक्चुअली मेरी बेटी का नाम गुलजार साहब ने रखा है।
0: क्या बात है, तो जानसी का असल में अर्थ क्या है?
1: जान जैसी सिंपल
0: जी। तो ये तो बिटिया की कहानी हो गई, और बिटिया भी फिल्मी दुनिया में आ चुकी है और आपकी तरह ही धमाके कर रही है, तो
1: अभी अभी जी अभी तो मुझको असिस्ट कर रही है।
0: आपको असिस्ट कर रही है?
1: हाँ।
0: ओ,
1: तो उसने 4 साल का कोर्स किया फिल्म मेकिंग का, और उसके बाद जैसे होते हैं बच्चे पहले शॉर्ट फिल्म बनाना है पापा इस सब जो सभी कब करते हैं वो करते रहते हैं, फिर मैंने कहा थोड़ा रियल फिल्म मेकिंग में आ जाओ तो वो मेरे साथ है अभी
0: जी। कौन सी फिल्म बना रही है
1: अभी? तो मैं बना रहा हूँ, तो मुझको असिस्ट कर रही है।
0: अच्छा,
1: तो बनाएगी
0: जी, तो उसने भी ट्रेनिंग ली बाकायदा
1: जी, मैंने कहा ना 4 साल की, उसने फिल्म मेकिंग का कोर्स किया
0: जी जी जी। तिग्मांशु जी, आपकी बहुत सारी फिल्मों में जिमी शेरगिल रहे हैं, और तो जिमी शेरगिल हालांकि अगर शायद वो देश से बाहर हैं, परदेश में हैं, नहीं तो आज आपके साथ वो यहाँ माइक के सामने होते और हमें लगता है कि और ज्यादा हमें रोचकता बढ़ जाती, तो उनके बारे में कुछ बताइए, कुछ खास बात बताइए।
1: जिमी से ये था कि मुलाकात, जो पहली फिल्म कास्टिंग कर रहा था तो मैं उसमें

0: जिमी से मिला, उसको चाहिए था उस जैसा जैसा है जिमी, बड़ा शरीफ लड़का, मेरा किरदार भी बहुत बहुत ही शरीफ सा था,
1: सलोने से दिखते भी हैं।
0: उसमें कैरेक्टर का वो था दिखाना था कि किस तरह से एक सीधा साधा लड़का जो पढ़ाई में है और थिएटर भी करता है, किस तरह से एक उसकी सोहबत खराब हो जाती है, गुंडे के साथ वो रहने लगता है और उसका एक कैरेक्टर बदलता है, फिर इवेंचुअली फिर वो संभलता है। तो मुझको चाहिए था कि उस तरह का एक अच्छा शरीफ चा। तो जिमी के, और ये बात मैं आपको 2026 साल पुरानी बता रहा हूँ,
1: तो जी बताइए बिल्कुल।
0: हाँ, तो उस वक्त हम लोग भी सब यंग थे और जिमी तो और भी शरीफ लगता था तब। तो हुआ फिर ये क्या, भाई जैसे याराना दोस्ती बढ़ गई, मिलना जुलना, तो फिर इतनी सारी फिल्में की हमने साथ में।
1: जी जी। और आपकी एक फिल्म है बुलेट राजा,
0: जी
1: उसके बारे में जरा बताइए, उसकी क्या कहानी, कहाँ से आपके मन में आइडिया आया बनाने का?
0: और आया तो वो यूपी के कुछ गैंगस्टर्स हैं, उनके उसमें से एक गैंगस्टर की कहानी से मैं थोड़ा उससे उसके कारनामों से आप थोड़ा
1: इंस्पायर हुए।
0: इंस्पायर नहीं, वो कारनामे विचलित भी कर देते थे आपको सुन करके, और ये भी करते थे कि कितना इसमें हिम्मत कहाँ से आ गई सब करने की, है ना?
1: तो समाज के सामने सच्चाइयां लाना?
0: नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, समाज के सामने समाज में सच्चाइयां तो अखबार पढ़ के समझ में आ जाती है, मुझको अखबार थोड़ी बनानी, फिल्म बनानी, एंटरटेनिंग होनी चाहिए वो। तो मैं उस तरह का बदलाव बदलाव वाला परचम लेके नहीं चलता हूँ, मेरी फिल्मों में दिख जाता है कहीं ना कहीं, और वही काम है फिल्म का,
1: बिल्कुल सच्चाई यथार्थ के करीब,
0: मतलब हाँ, लेकिन एंटरटेनमेंट के साथ। तो उस एक किरदार को मैंने दो में स्प्लिट कर दिया, तो एक बन गए हमारे सैफ साहब, सैफ अली खान, और दूसरा बन गए जिमी शेरगिल। क्योंकि मुझे दोस्तों की, मुझे दोस्ती बहुत प्यारी, एक ये रिश्ता होता है ना दोस्ती का,
1: जी बिल्कुल,
0: तो हासिल में डायलॉग भी, बाकी रिश्ते तो बने बनाए मिलते हैं, दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो आदमी खुद बनाता है।
1: बिल्कुल,
0: आपके चाचा ताऊ मम्मी पापा तो मिले हैं, आपने क्या किया उनको करने के, लेकिन दोस्त आप खुद बनाते हैं, तो आपका जो एक वो मोरालिटी का और गुड और बैड का जो सेंस आपके अंदर है, जो इनबॉर्न है, वो आपको उस दोस्तों को उस तराजू पे खरा तोड़ रहा है कि नहीं तोड़ रहा है, ये आपका खुद का अचीवमेंट है
1: जी।
0: तो इसलिए मैंने मुझे दोस्त का रिश्ता बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने बुलेट राजा में ये दोस्त रखे
1: जी। और इसी फिल्म में गुलशन ग्रोवर भी थे।
0: हाँ, बाकी इसमें और भी कैरेक्टर थे। जी, जी जी जी।
1: तो सैफ अली खान और गुलशन ग्रोवर से जुड़ी हुई, जब आप शूट कर रहे थे तो कुछ खास बात बताना चाहेंगे?
0: अब उनके बारे में, उन्होंने तो इतनी फिल्में की हैं, सब लोग उन्होंने, सैफ के साथ दोबारा मैंने कभी काम नहीं किया, ना ही गुलशन जी के साथ काम किया, मिलते हैं तो मैंने सैफ के साथ किया एक्टिंग की, मेरे एक बड़ा वो बैंड शायद भी हो गया था, एक शो था तांडव, जिसमें कुछ उन्होंने कुछ गलत चीजें दिखाई, उसके बैंड उसमें सैफ था। मैं शुरू के दो एपिसोड में था, पहले में तो मर जाता हूँ, बाकी दो एपिसोड मेरी मतलब बताओ लाश में पड़ा हूँ। तो उसमें सैफ का मैं फादर बना था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऐसे दिखाया था। तो बस वो काम हमने साथ में किया, उसके बाद हमने कभी साथ में काम किया नहीं।
1: यहाँ अब गानों का फिर से जिक्र करते हैं, और बताइए आपको पुराने गाने ज्यादा पसंद है, हालांकि नए दौर के एक कामयाब डायरेक्टर पसंद करते हैं ज्यादातर पुराने गाने, तो यहाँ पर कोई गाना आप सुनवाना चाहेंगे?
0: आप वो दिल तो है दिल,
1: मुकद्दर का सिकंदर,
0: मुकद्दर का सिकंदर का वो कल्याण जी आनंद जी का, ये भी बड़ा यूनिक सॉन्ग है
1: जी,
0: बहुत बहुत खूबसूरत गाना है।
1: आप चाहें तो इस गाने में सुर मिला सकते हैं।
0: नहीं नहीं नहीं,
1: आपने कई बार
0: लता जी गा रही, मैं गा सुन ला।
1: सुनते हैं ये गाना।

0: दिग्वांशु विविध भारती के सजीव प्रसारण में हमारे सामने बैठे हैं और आज विविध भारती का जश्न हम मना रहे हैं। 70वां स्थापना दिवस है ये। और तिग्मांशु जी, आपने छोटे पर्दे के लिए भी बहुत काम किया है, लिखा भी है और एक्टिंग, आप कहते हैं कि एक्टिंग नहीं करना चाहते हैं लेकिन एक्टिंग भी की है। छोटा पर्दा बड़ा पर्दा दोनों आपको कौन सा ज्यादा आकर्षित करता है?
1: नहीं, हमेशा से बड़ा पर्दा ही आकर्षित किया है। तो छोटा पर्दे पर इसलिए कर रहे थे बिकॉज घर भी चलाना था तो, और उस जब भी लेकिन हमने, मैंने जब टीवी किया और मेरे साथ के जितने भी और हमारी क्लास के जितने डायरेक्टर हैं मेरी कक्षा के, तो हम लोग हम उम्र हैं सब थोड़े थोड़े, तो सबने टीवी किया है। बट उस वक्त टेलीविजन अच्छा होता था, भले हफ्ते में एक एपिसोड आता था, आप उसको बनाते थे आराम से 3-4 दिन में एक एपिसोड। अब उसके बाद वो डेली सोप हो गया, एक दिन में आधे दिन में बनाइए, तो उसकी क्वालिटी गिरती चली गई। बट एक्चुअली वो शायद उस तरह के टेलीविजन की डिमांड थी, तो हमने जब टीवी कर रहे थे तो अच्छा टीवी होता था। उसके बाद फिर जाना तो फिल्मों की ही तरफ था।
0: जी, तो आप अपने वाले दूरदर्शन की बात कीजिए, जब इलाहाबाद में रह रहे थे या उत्तराखंड में रह रहे थे तो दूरदर्शन के जो कार्यक्रम होते थे, जो धारावाहिक होते थे, वो आज भी हम सबको याद हैं, तो वो कुछ यादें आप ताजा कीजिए।
1: बहुत सारे थे, कितने थे, मतलब बाप रे, श्याम बेनेगल जी का आता था के, फिर भारत एक खो जाता था,
0: फिल्मों का
1: हर संडे को इंतजार होता था, इलेक्शन होते थे, हम लोग छोटे होते थे, हम इलेक्शन से हमको लेना देना नहीं, इलेक्शन के टाइम पे फिल्में खूब दिखाई जाती थी, दिन में 3-3, 4-4 पिक्चर है, तो उसका हम लोग घर में बड़े लोगों को चुनाव के नतीजे पे थे, हम लोग कहते कि पिक्चर कौन सी दिखी जाए, तो तब तो बहुत अच्छा टीवी था, बहुत ही खूबसूरत था।
0: जी, तो पढ़ाई जब आप करते थे तो घर वाले कहते थे, रोकते थे, मतलब कोई ऐसी फिल्म देख रहे हैं कि क्यों देख रहे हो फिल्म, पढ़ नहीं रहे हो, ऐसी कोई याद?
1: इलाहाबाद में टीवी ना बहुत बाद में आया,
0: एशियाड जब शुरू हुआ था
1: तब आया था, 82 में।
0: जी,
1: तो और जब आया था तो सबके घरों में टीवी होता भी नहीं था, धीरे धीरे आने लगा लोगों के यहाँ, तो जब तक टीवी आया तब तक हम लोग के घर वालों के हाथ के

0: रो चुके थे बड़े हो गए थे थोड़े तो, लेकिन उतना टीवी के सामने मैंने छोटे छोटे जब होते तब बहुत गुजारा है, लेकिन उसके बाद नहीं था। आउटडोर एक्टिविटी हम लोग ज्यादा, जैसे मैंने कहा थिएटर करते थे, तो कहीं बजाना है या फंक्शन में इधर उधर, तो घर के बाहर ही ज्यादा रहते थे, तो टीवी देखना इतना होता नहीं था।
1: थिएटर के लिए जब आपने शुरुआत की, मतलब थिएटर की ओर गए, एनएसडी किया, तो घर वाले आपके इतने सब पढ़े लिखे, माँ प्रोफेसर, पिताजी जज, तो कहा नहीं कि कहाँ जा रहे हो फिल्मी दुनिया में? अमूमन ये सुना है कि डायरेक्टर, मतलब इस दुनिया में जो आना चाहते हैं उन्हें कहा जाता है पढ़ो लिखो कुछ बनो, इस दुनिया में मत जाओ। तो
0: आप कभी कभी नहीं मना किया, कभी नहीं, इनफैक्ट हमेशा प्रोत्साहित ही किया, कभी नहीं, कभी भी नहीं। मेरे मदर फादर दोनों फिल्में खूब, खुद भी बहुत फिल्में देखते थे, और शायद मैंने छोटा, सबसे छोटा होने का मुझे, मैंने उसका नाजायज फायदा भी उठाया, तो मुझे डांटा भी कम जाता था।
1: दुलारे बेटे थे?
0: हाँ, दुलारा बेटा था जैसे मैंने कहा बड़े भाइयों में मुझे 7-8 साल का डिफरेंस था, तो जो भी होता था उनके साथ होता, मुझे कुछ नहीं कहते थे। तो जब तक मैं एनएसडी में गया तब तक तो माय फादर हैड पास्ड अवे, गुजर गए थे, लेकिन मदर ने हमेशा कहा जाओ।
1: तो मुंबई आए शुरुआत में, तो मुंबई की शुरुआती संघर्ष किस तरह के थे?
0: मैंने बिल्कुल कोई संघर्ष संघर्ष नहीं किया, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मैंने वड़ा पाव खाया है और लोकल ट्रेन में चढ़ा हूँ और चढ़ा हूँ, लेकिन ऐसे कुछ
1: तकलीफों से नहीं गुजरा,
0: बिल्कुल नहीं। मैं बहुत इस मामले में अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि घर वाला, मेरे भाई, मदर फादर मुझको ऐसे मिले जिन्होंने मुझको इस तरह की लाइन में भी पहले पे तो एनकरेज किया कि म्यूजिक बजाओ, करो थिएटर, कभी नहीं रोका। उसके बाद ड्रामा स्कूल गया था, मदर ने भी कभी नहीं रोका कि जाओ। मेरा पहले अटेम्प्ट में ही हो गया था, फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया ड्रामा स्कूल में
1: जी।
0: तो और उसके बाद मैं दिल्ली में रहकर मैं फिल्में कर रहा था, उस वक्त होता नहीं, या फिर बैंडेड क्वीन भी, तो शेखर जी के साथ में मुंबई आ गया था। जो मुंबई आया तो मैं ऑलरेडी शेखर कपूर का असिस्टेंट था, तो मुझे कुछ स्ट्रगल करने की जरूरत, पैसा नहीं मिलता था वहां, लेकिन कहने को होता था कि आप शेखर कपूर के असिस्टेंट हैं, तो उनका नाम सब जानते थे, रिश्तेदार भी सब जानते थे, अच्छा शेखर कपूर, बाकी डायरेक्टर को नाम तो लोगों ने सुने नहीं थे, कि शेखर कपूर का नाम सब जानते थे,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: क्योंकि वो डिग जाम के मॉडल भी हुआ करते थे, तो लोगों को पता उनके असिस्टेंट हो, ठीक है
1: जी।
0: तो ऐसे करते करते मैं काम करने लगा। मैं जहाँ आया तो पहले मैं साल भर अपने बड़े भाई साहब के यहाँ रहा, वो नेवी में थे, ये जो इधर INS हमला जाते हैं
1: जी जी,
0: वहाँ रहते थे, तो मैं साल भर उनके साथ था, तो कोई दिक्कत नहीं, नेवी में आप हैं, बढ़िया सा कमरा है, तब नेवल फैसिलिटी, नो प्रॉब्लम।
1: तो हमारे जो युवा श्रोता हैं जो फिल्मी दुनिया में आना चाहते हैं, उन्हें कुछ कहिए कि क्या हो तो मुंबई आए स्ट्रगल करने के लिए, और क्या ना हो तो ना आए।
0: ये मैंने कल ही कुछ बच्चों को ये बोला कि जिंदगी में इस बात का एहसास अगर हो जाए कि मैं कर पाऊंगा कि हो पाएगा मुझसे कि नहीं हो पाएगा,
1: बिल्कुल,
0: इसका एहसास आपको अगर हो गया ना, वो सबसे बड़ी चीज है। तब तो आपको लगे कि बॉस मैं कर पाऊंगा, तब तो आगे बढ़ो, लेकिन कहीं भी लग रहा है कि नहीं कर सकता तो एकदम पीछे मुड़ जाओ उसमें, कोई ऐसा नहीं है कि आप डर के भाग गए, आप रणछोड़ नहीं कहलाओगे, आपने अच्छा करेक्ट डिसीजन। मैंने जब एनएसडी में, मैं थर्ड सेकेंड ईयर में था, मुझको पता चल गया था मैं बहुत बुरा एक्टर हूँ, और मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं एक्टिंग नहीं करूंगा, और मेरे जिंदगी का सबसे अच्छा डिसीजन था
1: जी जी।
0: नहीं तो मैं एक्टिंग करके आता तो मुझको बालाजी के एक आध सीरियल में कुछ एक आध रोल वोल करके जिंदगी खत्म हो जाती
1: जी, बिल्कुल। और आप तो हमें आपकी इतनी सारी फिल्में कैसे मिलती, तो और आपकी एक फिल्म है साहब बीबी और गैंगस्टर, जिसका जिक्र श्रोता भी बार बार कर रहे हैं और हमने भी किया, उसका एक गाना है जो हम श्रोताओं को सुनवाना चाहते हैं, उस गाने से जुड़ी हुई कोई बात बताइए, रिकॉर्डिंग से जुड़ी हुई, किस तरह से रिकॉर्ड हुआ गाना?
0: पार्ट टू का गाना है, इसको पीयूष भाई ने गाया, पीयूष मिश्रा जी ने बहुत खूबसूरत गाया, और छोटा संदीप ने इसको कंपोज किया है, लेकिन कंपोज करते हुए ये ध्यान में रखते हुए कि, और संदीप नाथ एक बहुत अच्छे लिरिक राइटर है, इलाहाबाद से भी उनका कनेक्शन है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बड़ा हुआ, कई गाने पान सिंह तोमर के भी गाने लिखे संदीप नाथ ने, तो ये सोच के कि ये भाई गाना जो है गाएंगे पीयूष भाई, तो उसी तरह से गाने का मीटर रूटर की जो उनको, जो उनके इमेज के साथ जाता है, लोग पीयूष भाई को ऑन स्क्रीन भी देखा है लोगों ने, तो आप सुनाइए गाना, बड़ा बहुत बहुत मजेदार और बहुत बढ़िया गाना है, इसके लिरिक्स बहुत अच्छे हैं
1: जी, सुनते हैं ये गाना।
2: प्रपंच है हर स्वार्थ का।

0: होश है, यार में भी रोश है, मुर्दे में भी एक जोश है, ईर्षा ही शब्द कोश है।
1: आप भी राजा हैं और हम भी, मगर आपका खून आलसी हो चुका है, हमारा नहीं।

0: तो ये गाना हमने सुनवाया तिग्मांशु जी आपकी फिल्म का गाना, और आपकी ओर से हमने नजर किया। और हमारे एक श्रोता ने पूछा है आपसे कि आप जो लीक से हटकर फिल्में बनाते हैं, तो क्या आगे भी हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी फिल्में बनती रहेंगी आप द्वारा या अन्य फिल्म मेकर्स के द्वारा भी?
1: मैं ऐसे कोई बहुत लीक से हट के नहीं बनाता हूँ। अगला मेरी फिल्मों की पूरी मतलब मेरी पूरी फिल्मोग्राफी देखिएगा तो मैं बहुत ही एक कमर्शियल, एक जो चलने वाली फिल्में होती है ना उसी गली की फिल्म बनाता हूँ।
0: जी।
1: कहने का थोड़ा अंदाज मेरा फर्क है सिर्फ, जिसको आप बोलते हैं एस्थेटिक्स, वो मेरा बाकियों से फर्क है।
0: जी।
1: बाकी मैं कोई लीक, मैं लीक से बिल्कुल हटना भी नहीं चाहता। मेरे लिए फिल्म फर्स्ट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हैज टू बी एंटरटेनिंग।
0: जी
1: वो कोई बोरिंग स्लो पेस्ट वो सब चीजें मुझे मैं नहीं देखता भी नहीं, मुझे अच्छी भी नहीं लगती, मैं कभी बनाऊंगा मैं।
0: जी।
1: तो वो एस्थेटिक्स जो है वो ओवर द इयर्स, एक तो आपके खुद की जिंदगी का एक्सपीरियंस से आता है, और फिर एक होता है आपका एक्वायर्ड विजडम, जिससे मैं आपसे मिलूंगा, आपकी आपने कोई बात कही मुझसे, मैंने आपसे बात, मुझे लगा कि आप अच्छी बात कर रहे हो, किसी दोस्त से, किसी नए आदमी से मिलके, कोई फिल्म देख के, कोई नॉवल पढ़ के, आपकी जो एक्वायर्ड विजडम है वो कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। एक्सपीरियंस तो जिंदगी में एक बार आके फिर टिक जाता है, फिर ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं कर पाते
0: जी, बिल्कुल।
1: आप एक सेट लाइफ में जीने लगते हो, फिर आप बहुत कभी कभी एक्सपीरियंस करते हो, लेकिन जो एक्वायर्ड विजडम है जो आपको बाहर चीजों से मिलती है उसका जो स्रोत है वो कभी कम नहीं होना चाहिए।
0: जी
1: वही आपके सारी कला, आप किस तरह से कहानी कहना चाहते हैं, सबके पीछे वही है।
0: जी बिल्कुल।
1: तो जो एक्सपीरियंस करते रहेंगे वो फिल्म बनाते रहेंगे, जिन्होंने एक्सपीरियंस करना छोड़ दिया कि मैं हो गया बॉस गॉडफादर, अब तो मेरे बराबर कोई है नहीं, उसका पतन निश्चित है।
0: जी बिल्कुल। 2026 की फिल्म है घमासान आपकी फिल्म,
1: जी।
0: तो उसमें कौन सा ऐसा प्रसंग है शूटिंग में जो आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहा या कठिन रहा, या इस फिल्म से जुड़ी हुई कोई बात हमारे श्रोताओं को बताइए?
1: कठिन तो कुछ नहीं होता,
0: आपके लिए तो बिल्कुल
1: नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। अब जो काम आप कर रहे हैं आपने किया, आपको मालूम है कैसा होना है। वहां पे कठिनाई होती है अगर आप ऐसी जगह पे, जैसे हमने वो घमासान की शूटिंग हमने की चित्रकूट के एरिया में, जहां पे रामचंद्र जी ने 14 साल पे 11.5 साल अपने वनवास का वहां बिताया,
0: जी,
1: और ये पूरा जो बुंदेलखंड का इलाका, बांदा वाला, रीवा, सतना, मध्य प्रदेश, यूपी, इलाहाबाद के भी बहुत नजदीकी है।
0: जी।
1: तो वहां पे एक बार जंगल में हम लोग शूटिंग कर रहे थे, सड़क बहुत दूर नहीं थी, वहां पे पुलिस भी थी हमारे साथ, तो बैठे रहते थे अपने जीप में, तो शूट कर रहे थे हम लोग। सडनली मैं आगे और लोकेशन देखते हैं जंगल में, थोड़ा सा एक दो असिस्टेंट के साथ बढ़ गया आगे, जाके मैंने देखा कि एक पेड़ से एक मोटे सा नायलॉन का जो तार, ऐसे रस्सी होती है वो ऐसे लटकी हुई थी, नीचे कुछ टूटी पट्टी चप्पल दो पड़ी हुई थी, और उस नायलॉन के तार से कुछ फटे फूटे कपड़े ऐसे लटके हुए थे। ऐसा लग रहा था कि आदमी था यहाँ, या तो खा गए जंगली जानवर, या क्या हुआ, सबमरी, या तो मार के लटकाया गया है, या खुदकुशी की है किसी ने। और देख के मैं सन्न रह गया, मैंने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं था कि आदमी लटका होगा, उसको जंगली जानवर खा गए होंगे, आई डोंट नो क्या हुआ था, लेकिन बाकी उसका सब कुछ पड़ा था, चप्पल वहीं नीचे थी, कपड़े।

0: स्ट्रिंग्स लटके हुए थे और क्योंकि नायलॉन की थी वो टूटी भी नहीं थी, पक्की सी थी।
1: जी
0: अरे देख के ऐसे दहशत हो गई सबको कि ये क्या देख रहे हैं हम। तो उसका ये एक्सपीरियंस था। फिर हमने वहां देखा, वहां पे एक स्पॉटेड डियर था, बड़ा सा मेल, उसको जंगली कुत्तों ने दौड़ा के हमारी आंखों के सामने मारा जंगल में।
1: बापरे।
0: तो ये सब चीजें हाँ थोड़ा एक्साइटिंग हो जाती है फिल्म मेकिंग, तो मजा आ जाता है आपको।
1: जी जी डरावना भी लगता है लेकिन रोमांचक भी होता है। तो यहाँ क्या घमासान फिल्म का ही गाना सुनवाए?
0: जी सुनाइए, धाएं धाएं
1: सुनते हैं।

0: तिग्मांशु जी, ये घमासान फिल्म का गाना था और काफी चर्चित है इन दिनों, ये गाना भी खूब बज रहा है और वायरल भी हो रहा है, जिसे हम वायरल कहना कहते हैं इंस्टा और फेसबुक के युग में। अरशद वारसी हैं इसमें और प्रतीक गांधी हैं, इनसे जुड़ी हुई कोई खास बात बताना चाहेंगे आप हमारे श्रोताओं को?
1: नहीं, इस फिल्म के बारे में तो मैंने बताया, मैंने वहां पे एक लटका हुआ आदमी के मतलब अस्थि पंजर दिखाई।
0: तो अब हमें बताइए कि एक लेखक और निर्देशक पढ़ता भी बहुत है और पढ़ना आपको बहुत कुछ सिखाता भी है, जानकारी भी देता है। तिग्मांशु धूलिया जी क्या पढ़ते हैं अपनी फिल्मों के नजरिए से कि एक अच्छी फिल्म दे दर्शकों?
1: मैं फिक्शन ऑलमोस्ट नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन मैं और चीजें पढ़ता हूँ, मतलब बायोग्राफीज और एंथ्रोपोलॉजिकल वर्क या पॉलिटिक्स पे किसी ने या जियोपॉलिटिक्स पे किताबें, इस पे मैं ज्यादा इन चीजों को पढ़ता हूँ। फिल्मों पे कुछ का किसी ने कुछ अच्छा नई किताब है कुछ अच्छी लिखी तो पढ़ता हूँ, लेकिन फिक्शन मैं उस तरह से नहीं पढ़ता हूँ, मुझे थोड़ा बोरिंग से लगता है फिक्शन बहुत।
0: जी।
1: मैं और तीन तीन चार चार किताबें एक साथ पढ़ता हूँ, मैं किसी का एक चैप्टर किसी का दूसरा चैप्टर ऐसे पढ़ता हूँ मैं। हाँ।
0: और अब बताइए कि चलते चलते हमारे श्रोताओं को कुछ संदेश दीजिए और आपकी आने वाली फिल्म, आने वाला प्रोजेक्ट क्या है?
1: आने वाला प्रोजेक्ट, मैं एक फिल्म बना रहा हूँ जिस जो कि आपको तो पता ही होगा, उदय प्रकाश जी जो हिंदी के बहुत महान लेखक हैं,
0: जी जी बिल्कुल,
1: उनकी एक कहानी है दिल्ली की दीवार, उसको मैंने अडेप्ट किया है, उसका नाम है वो फिर कभी दिखा नहीं।
0: क्या बात है।
1: और उसको बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। जब वही है, जब भी आप कुछ नया अलग तरह का काम करने की कोशिश करते हैं तो आपके सामने बहुत सारी अड़चनें आती है, तो उन अड़चनों का सामना करते हुए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपनी फिल्म शुरू कर दूँ।
0: जी जी। और अब हमारे श्रोताओं के लिए कुछ पैगाम दीजिए।
1: जो मैं क्या पैगाम दूंगा, मैं कोई इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि पैगाम दूँ। सब लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं, सब अपने संघर्षों से गुजर रहे हैं, उनके ऊपर मैं उनको पैगाम दूंगा, जीते चलो, जिंदाबाद रहो, देश को आगे बढ़ाओ, सब लोग मिलके इस खूबसूरत दिन में, आज विविध भारती के 70 इयर्स पूरे हुए हैं, उसको याद करते हुए विविध भारती के साथ हम लोग आगे बढ़ते रहे जिंदगी में।
0: जी, आपकी पसंद का ये आखिरी गाने की झलक है।

0: नहीं चला। हमारे श्रोता भी यही कह रहे हैं कि इतनी जल्दी वक्त बीत गया, पता ही नहीं चला। आप फिर आइए, वादा कीजिए कि विविध भारती के स्टूडियो में आप फिर आएंगे और आज के इस जश्न में आप शामिल हुए। पूरे विविध भारती परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने का। मैं जरूर आऊंगा, जल्दी मिलेंगे
0: जी। शुक्रिया।

0: Sound, camera, action!
1: La la la la, la la la, la la la la la, la la la la la.
2: दोस्तों नमस्कार, एक गायिका जिनका नाम था सुषमा श्रेष्ठ।

0: पूर्णिमा के नाम से वो खूब मशहूर। बॉम्बे टॉकीज में आपको सुनवा रहे हैं जानी मानी गायिका सुषमा श्रेष्ठ यानी पूर्णिमा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। आइए सुनते हैं तीसरा और अंतिम भाग। सुषमा जी, आज फिर एक बार आपका हम स्वागत करते हैं और चलिए बातों का सिलसिला शुरू करते हैं।
1: मुझे लगता है कि अब सुषमा श्रेष्ठ के उस दौर से निकलकर मैं पूर्णिमा जी से बात करने अब आना चाहती हूँ, है ना?
2: तो स्वागत है आपका।
1: बिल्कुल, मुझे अब अपने आप को ये देखना है कि मेरे सामने पूर्णिमा बैठी है जो एक इस तरह के गाने जिन्होंने गाए और हमें नचा दिया है। तो सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने का ये सफर क्या था, कैसा था और क्यों था?
2: देखिए, सुषमा श्रेष्ठ एक बाल गायिका के बतौर एक बाल गायिका ही जानी जाती थी। पता है मंदाकिनी जी, मैंने जब वो गाना गाया था ना, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, तब मैं 18-20 के बीच, अच्छा, मुझे याद नहीं आ रहा है वो, लेकिन चोपड़ा साहब की जिद थी कि नहीं, मुझे तो सुषमा ही चाहिए। रविंद्र जैन जी ने बुलाया था,
1: तो जब तक थोड़ा पूर्णिमा में कन्वर्ट
2: नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि ट्रांसमिशन हुआ क्यों। मुझे इतना ऑड लगता था ना मंदाकिनी जी, मुझे बहुत अटपटा सा लग रहा था कि क्या ये मम्मी को अंदर बुलाना चाहिए, वो रबिश। इतनी बड़ी मैं ना, बहुत ऑड लग रहा था मुझे, तो इसका कुछ तो करना चाहिए, पर क्या करें समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि हमारे परिवार में, हमारा जो घर, जिन संस्कारों से मैं बड़ी हुई, हम बिल्कुल ना वैसे फिल्मी नहीं है, बहुत सीधे साधे लोग हैं हम, मिडिल क्लास, और मुझे गर्व है इस बात
1: जी।
2: अभी भी मैं मिडिल क्लास ही हूँ, वो दादर का घर ही मुझे पसंद आता है, शिवाजी पार्क। खैर, तो इसके बाद 10 साल का एक बहुत लंबा एक गैप पाया, क्योंकि ना मैं बच्चों में मेरी गिनती हो रही थी ना बड़ों,
1: और ये दौर बड़ा मुश्किल होता है कलाकार के लिए,
2: बहुत मुश्किल। फिर शादी भी हो गई, मेरा बेटा पैदा हुआ बड़ा, उसके बाद मेरा एक दौर जिंगल्स का शुरू हुआ, रेडियो स्पॉट्स, है ना, नाथन अंकल हुआ करते थे, वैद्यनाथन जी, जो फिर डैडी के बहुत अच्छे दोस्त, वो मुझे बुलाने लगे, करते करते फिर

0: दिन में 5-6 जिंगल्स, 6-7 जिंगल्स में जिंगल क्वीन, मैं, कविता दीदी, हम मिलकर कुछ वो गाती थी, कुछ मैं। करते करते वक्त बीतता गया, फिर एक दौर आया, आपको अगर याद होगा, कवर वर्जन्स का।
1: जी बिल्कुल,
0: है ना,
1: बिल्कुल
0: कवर वर्जन्स गाने लगी। तो जब पहला कवर वर्जन का की रिकॉर्डिंग तो खत्म हो गई, वो गणपति के भजन से, पर पता कैसे थे ये सिंधी जो कम्युनिटी है ना, वो तो सालों से, मुझे लगता पीढ़ियों से उनके यहाँ पे ये चलन है कि वो लोग फिल्मी गानों पर ही, ये जैसे मेरे स्कूल में एक लड़की थी जब मैं 8वीं 9वीं में थी, वो भी सिंधी थी, तब वो गाना चला था झुमका गिरा रे, तो वो मुझे सुनाती थी कि हम लोग जा रहे हैं वो बाबा जी का जो लंगर होता था उनका, तो मैं भी गाऊंगी। कौन सा गाएगी तू, मैं पूछ, अरे वो रे झुमका गिरा रे ना, उस पर ही सतगुरु आए हैं हम लोगों को समझाने, सतगुरु। तो ये तो उनका एक सिस्टम ही था, है ना। तो उन लोगों ने ये आइडिया इसमें डाल दिया, टिप्स कंपनी वालों ने, वो भी सिंधी, कि हम फिल्म वो ही हमने करेंगे फिल्मी गानों पे, हम गणपति के भजन, जैसे रमैया वस्तावैया, तो उस पे किया मोरया गजानना, मोरया गजानना, सुख दे सकल जना, ऐसे। अब वो कैसेट उसके रिलीज के से जरा पहले उनकी जितनी टीम थी, जो भी, उन सबको ऐसा लगा कि अब तो सुषमा श्रेष्ठ नाम देने से कहीं लोग ये ना समझे कि ये बच्चों के गानों का एल्बम है।
1: जी
0: होता है, हमें ये पता नहीं चलता मंदाकिनी जी, पर वो लोग तो मार्केट स्टडी करते हैं ना, तो क्यों ना हम तुम्हें एक नए तरीके से इंट्रोड्यूस करें। सुषमा श्रेष्ठा इस नाम को हम नहीं रखेंगे, तुम्हें एक नए नाम, नए इमेज के साथ इंट्रोड्यूस करते। तो पूर्णिमा नाम मैंने ही सजेस्ट किया था, क्योंकि ये मेरे जन्म पत्रिका
1: जी
0: उसमें मेरा नाम पूर्णिमा, तो मैंने कहा पूर्णिमा कैसा रहेगा, सबको अच्छा लगा। अब सिर्फ वाद विवाद इस बात पे हुआ कि पूर्णिमा श्रेष्ठा रखें या क्या, तो वहां मेरे हस्बैंड ने थोड़ा सा ऑब्जेक्शन लिया कि नहीं, क्योंकि वो चाह रहे थे पूर्णिमा श्रेष्ठा, क्यों बाकी जो टीम था उनका, कि सुषमा श्रेष्ठा पूर्णिमा श्रेष्ठा एकदम से क्लिक हो जाएगा। पर ठीक है, अब ईगो हैसल्स जहां आ गए उसका तो कोई इलाज ही नहीं मंदाकिनी जी, तो रमेश तो मेरा भाई है, जो रमेश तौरानी जी हैं, मैं कई सालों से उसे राखी बांध रही, ने कहा छोड़ सुषमा, छोड़, पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करने का, जो है बाबू अपन ऐसे ही करेंगे। तो पूर्णिमा नाम वैसे करके उन्होंने बहुत, मैं कहूंगी टिप्स ने उस वक्त इतना मुझे, मतलब स्क्रीन में 2 पेज का कवरेज इंट्रोड्यूस, उन्होंने ही मुझे अपनी पहली फिल्म उन्होंने जो बनाई थी बाहरों की मंजिल, राम लक्ष्मण जी का म्यूजिक था वो गाना, अगर आपको मिले प्लीज बजाइए गाना, अमित दा के साथ गाना था, उत्तम भैया ही अरेंजर थे
1: जी।
0: तुम

0: आपने भी हमें उन दिनों की याद दिला दी जब नई नई पूर्णिमा गायिका के रूप में हमारे सामने आई थी। बहुत समय बाद हमें पता चला था कि अरे ये तो सुषमा श्रेष्ठा है जो पूर्णिमा के नाम से गाती हैं। तो बाल गायिका से वयस्क गायिका के रूप में खुद को दोबारा स्थापित करने में सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने क्या थी?
1: अपनी एक जगह बनाना, क्योंकि मैं जब आई मंदाकिनी जी तब मुझसे पहले 4-5 सिंगर्स एस्टेब्लिश्ड हो चुकी थी। अनुराधा दीदी, कविता दीदी, अलका, साधना सरगम जी। तो मुझे अपनी एक पहचान बनानी।
0: बिल्कुल।
1: तब मैंने कहा ना, वो बचपन से ही वो खेला कर रहा था मेरे दिमाग में, और मैंने सोचा, बहुत स्ट्रैटेजिक एक मूव था ये, एक ऐसे नहीं है कि पर चांस हो गया। मैंने सोचा कि आशा जी के गाने तो मैं गाती ही हूँ, तो आशा जी, शमशाद बेगम जी और गीता दत्त जी को, उनकी तीनों की स्टाइल्स को मिलाकर मैंने कोशिश की कि मैं अपनी एक स्टाइल बनाऊं। एक हद तक मैं कामयाब रही उस।
0: बहुत हद तक आप कामयाब रही। एक हद तक नहीं, आपने कहा ना कि जो बचपन में आपने एक गाना गाया था उस टोन को आपने ध्यान रखकर अपनी उस आवाज को बनाए रखा
1: जी।
0: जो तुतु तु तु तु तारा में हमें दिखाई दी थी, है ना, और उसके बाद आपके हर गाने में लगभग वो एक गले की एक अलग सी आती है, जैसे मैं क्या कहूँ, और वो बहुत अट्रैक्ट करती है कि ये पूर्णिमा जी है, ये पूर्णिमा है।
1: ये बात मैं, मुझे सुनकर आज बहुत अच्छा लगा मंदाकिनी जी। ये अबू साहब ने, मेरे उस्ताद ने सिखाया था कि आप कितने भी मतलब रागधारी सीख कर आओ, कुछ भी करो, 10 आवाजों में वो एक आवाज जिसे आप पहचान सको कि ये फला की आवाज है, वो आवाज जो पहचान जाता है आपकी श्रोता, आपके श्रोता
0: जो भी
1: उस आवाज को पहचान लें, तो आप समझ लो कि आप कामयाब
0: सफल हो गए हैं।
1: तो हाँ, इसमें मैं कहूंगी कि मैं कामयाब रही
0: हूँ। बिल्कुल बिल्कुल,
1: क्योंकि मेरी आवाज कहीं भी पहचानने में आ जाती है।
0: एक जो गले में एक अलग रेंज आपकी आती है उन गानों को गाने में, वो पूर्णिमा ही
1: मानती हूँ,
0: वो पूर्णिमा ही गा सकती है।
1: ये बात मैं मानती हूँ, नहीं तो कुदरत मुझे माफ नहीं करेगा।
0: बिल्कुल। तो एक चाइल्ड आर्टिस्ट की जो मीठी आवाज से लेकर 90 के दशक के कमर्शियल ट्रैक तक आपकी आवाज के टेक्सचर में जो बदलाव आया था, उसे आपने कैसे साधा था, ये थोड़ा हम जानना चाहेंगे।
1: टेक्सचर एज इन आपको मतलब एक बाल गायिका से मैच्योर सिंगर?
0: हाँ।
1: मंदाकिनी जी, मुझे लगता है मेरी आवाज कभी मैच्योर हुई ही नहीं, और शायद वो ही मेरा एक यूएसपी है
0: जी। लेकिन वो कमर्शलाइज होते ही थोड़ा सा
1: हाँ,
0: एक अलग तरह से मोल्ड हो गई।
1: मैं कहूंगी आवाज में एक गहरापन तो नहीं बोलूंगी, एक ब्रॉडनेस आई। यस,
0: चुलबुलापन जो आवाज
1: हाँ
0: है,
1: वो एक वक्त के साथ आता है। लेकिन थोड़ा थोड़ा चुलबुलापन तो पहले भी था, लेकिन पहले क्या संकोच करती थी, संकोच बहुत करती थी, क्योंकि बड़े दिग्गजों के साथ काम किया, ये तो एहसास था कि भाई ये कौन है। हालांकि ये एहसास नहीं था शायद कि ये कौन है, ये नहीं था, पर ये नहीं,
0: वो
1: ये
0: बाल,
1: कुछ है,
0: बाल मन था,
1: है ना। लेकिन जहां तक आप अगर मेरे वॉइस का अदरवाइज टेक्सचर की बात करेंगे, तो अभी अभी भी मैंने एक गाना गाया है एक मराठी फिल्म के लिए
0: जी, जी।
1: उत्तम सिंह जी, उत्तम भैया का म्यूजिक है उसमें, कब्बशी फिल्म का नाम है। तो मुझे मुझे गर्व ही होता है इस बात का कि मुझे कॉल कर कर के लोग ये कहते हैं कि तुम तो अभी भी 30 साल की तुम्हारी आवाज लगती
0: जी।
1: तो टेक्सचर आज सच नहीं बदला। हाँ, लेकिन क्या होता है, उम्र के साथ हमारा शरीर जैसे फैलता है ना, तो हमारे वोकल कॉर्ड्स भी तो फैलते हैं
0: जी।
1: तो वो थोड़ा सा फैलाव

0: थोड़ी सी गहराई और जरूर आ गई आवाज में। यस। और चुलबुलापन आप जिसे कह रहे हो ना मंदाकिनी जी, वो तो बहुत एक सोची समझी साजिश थी। प्रोफेशनल साजिश थी कि भाई मुझे ये करना पड़ेगा अगर मुझे अपनी एक अलग पहचान करनी
1: बनानी है
0: तो। जी,
1: तो एक ऐसा प्रश्न जो मेरे मन में आ रहा है कि क्या कभी पूर्णिमा सुषमा श्रेष्ठ से बात करती है जब उसे पीछे छोड़ आई है और बहुत आगे आ गई है, बहुत आगे, तो ये दोनों सखियां क्या बात करती होंगी?
0: सुषमा से पूर्णिमा यही कहती है कि तुम पहले पूर्णिमा क्यों नहीं बनी। तुम अगर पहले पूर्णिमा बनती तो तुम पंचम दा को एक अलग कैसे बोलूं, मुझे वो शब्द नहीं
1: जी,
0: आ रहा
1: जी,
0: पर
1: एक अलग रूप से जी पाती, उनके,
0: जी
1: संगीत
0: पाती
1: को,
0: उनके संगीत को। यस, क्योंकि मैं आज जितना उनके संगीत को समझती हूँ शायद वो जो मुझे समझाना चाह रहे थे सिर्फ उनके संगीत को नहीं, बहुतों के, जिन जिन लोगों के साथ मैंने काम किया।
1: सुषमा से पूर्णिमा का जो सफर है यानी क्या हुआ तेरा वादा जैसे इमोशनल गीत से लेकर तु तारा, ये जो एनर्जेटिक और डांस ट्रैक का जो गीत है, ये सफर आपके लिए कितना अलग था वहां तक पहुंचने का?
0: वैसे म्यूजिकली अगर आप पूछें तो अलग नहीं था, अगर आप निजी तौर पर पूछें तो बहुत कठिन। बहुत जिल्लतें सहनी पड़ी, बहुत कैसे बोलूं, पछाड़ खाई। वो लोग जो एक वक्त सुषमा श्रेष्ठा के साथ काम करने के लिए तड़पते थे वो सुषमा श्रेष्ठा से आंखें चुराने लगे, है ना? हाँ, ये भी देखा, ये दौर भी देखा है, मतलब देखकर अनदेखा सा करना, है ना? क्योंकि मेरे आगे बहुत से, मेरे पीछे वाले मेरे आगे निकल चुके थे, है ना? तो हम कभी अगर साथ किसी स्टूडियो में जिंगल गा रहे हैं या अगर ऐसा इक्का दुक्का कोई गाना मुझे मिल गया और हम साथ गा रहे हैं या साथ मिले वो सिंगर हम सिंगर, तो मुझसे बात ना करना, उन्हीं से बात करते रहना, क्योंकि वो ज्यादा कामयाब थी उस वक्त, है ना
1: जी?
0: तो ये सारी जिल्लतें सही, लेकिन एक बात बोलूं मंदाकिनी जी, बुरा लगकर भी मैंने उसमें से सीख सीखी
1: जी,
0: क्योंकि बचपन में भी ये था कि जब बोलना नहीं चाहिए लेकिन पहला गाना जब गाया तो एक वो आर्टिस्ट हैं जिनसे जिनसे इसी तरह का बर्ताव सहना पड़ा कि बच्चे गा रहे हैं उन, वो पहचान करा रहे हैं सब लोग के, तो उन्होंने हमारी तरफ देखा भी नहीं
1: जी,
0: लेकिन मैं इतनी सेंसिटिव थी तब से। और अब जब मैंने ये सब कुछ सहा पूर्णिमा बनने से पहले, तो अब एक कसम खाई थी कि मेरे बाद आने वाले बच्चों के साथ मैं कभी ऐसा बर्ताव नहीं करूंगी।
1: बिल्कुल,
0: मैं हमेशा उनकी पीठ थपथपाऊंगी, उनको बहुत प्यार दूंगी और वो कुछ भी हो पर उनके होने का एहसास उन्हें दिलाऊंगी।
1: बहुत
0: वो बहुत जरूरी,
1: ये एक बड़ा मन ही ये बात
0: वो बहुत
1: कह सकता है कि मेरे साथ जो बीता आगे आने वाली पीढ़ी के साथ वैसा बिल्कुल
0: कभी नहीं।
1: पूर्णिमा जी, एक गीत और सुन लेते हैं आपकी पास।
0: शाम है धुआं धुआं।

आरजू झूठ है, कहानी है, आरजू का फरेब खाना नहीं। खुश जो रहना हो जिंदगी में तुम्हें, दिल किसी से कभी लगाना नहीं।

0: कभी।
1: तो पूर्णिमा बनते ही पहला गाना यही था तू तू तू तू।
0: पहला तो वो था तुम ताना नाना ताना जी, जी। फिर आया बरसात में जब आएगा सावन का महीना। ऐसा है मंदाकिनी जी, आप पूछ रही थी कि सुषमा श्रेष्ठा से पूर्णिमा तक का जो एक सफर मेरा, वो 10 साल जो मैंने बेकारी में बीता है
1: जी,
0: तो वो ऐसे मैंने बेकार नहीं जाने दिए। वो 10 साल मैं बहुत सोचती थी और बहुत स्ट्रैटेजीज करती थी कि मुझे, और पता नहीं क्यों मुझे ये एक खुद एतमादी थी हमेशा से कि मैं फिर से आऊंगी
1: जी,
0: दिस इज नॉट द एंड, मैं आऊंगी किसी ना किसी तरह, मुझे एक मौका फिर से मिलेगा जरूर, क्योंकि मेरी तो पूरी जिंदगी ही एक आप अगर कहें तो एक अजूबा ही रहा है ना। पिताजी के देहांत के बाद 11 अप्रैल को उनका देहांत हुआ, 12 अप्रैल को मेरा एक शो था बहुत बड़ा, वहां जाकर एक 10-11 साल का बच्चा जाकर गाए और ऐसा गाए कि लोगों को रुला दे, है ना। तो ये तो एक कुदरत का करिश्मा ही है, मेरी पूरी जिंदगी ही मैं हमेशा कहती हूँ एक करिश्मा रहा। तो मैं जानती थी कि कुदरत इतनी आसानी से तो मुझे लुप्त नहीं होने देगा,
1: है ना? सही कहा।
0: तो उसके बाद मैंने माँ का गाना जब गाया तब इतना मैं पॉलिश्ड नहीं थी, इतनी पॉलिश्ड नहीं थी, मेरे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे, लेकिन उसके बाद वो गाना डेविड धवन जी ने सुना कहीं और उन्होंने जब मांग की कि मुझे ये सिंगर चाहिए मेरे फिल्म के लिए, तो तुतु तारा के लिए बुलाया गया, है ना। तो उसमें फिर मैंने तुतु तुतु तुतु तारा के वक्त मैंने थोड़ा और अपने आप को पॉलिश करने की कोशिश की, हालांकि गाना पहले रिकॉर्ड हुआ था वो मैं हूँ गांव के गोरे बाबू रंग लहरे वरा मुझको भी चलना सिखा वो वाला। तो उसमें मैंने सोचा कि जूही जी के लिए है तो उनका थोड़ा सा वो एंग्लिसाइज टोन है ना, तो आप अगर ध्यान से गाना सुनेंगे ना, तो मैंने वो एक्सपेरिमेंट वहां
1: जी के जी
0: मैं हूँ गांव के गोरे बाबू रंग लहरे और गीता दत्त जी का स्टाइल जरा मुझको भी चलना सिखा दे तू, तो वो बहुत कामयाब
1: हुआ।
0: फिर दूसरा गाना तुतु तारा आ गया, उसमें और थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया,
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: तो कर दो हमें माफ तुम कर दो ना वो सब, तो वो कामयाब हुआ। तो मैंने सोचा अब इसी इसमें इसी को पकड़ के हमको चलना है।

0: हर हर एक सिंगर के अपने प्लस माइनस पॉइंट्स होते हैं, है ना, माने न माने।
1: हाँ हाँ।
0: मैं समझ गई थी कि मेरा प्लस पॉइंट, मेरा यूएसपी है मेरा मेरे एक्सप्रेशंस। मैं गाने में जो एक्सप्रेशंस देती और दे सकती हूँ वो शायद ही कोई दे सके।
1: जी
0: सॉरी, मैं खुद से ये कह रही हूँ आज,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन इतने सालों बाद इतना तो जायज है। तो बस मैंने उसी पे काम किया। वो मेरा जो एक स्ट्रेंथ मेरी थी, मेरा प्लस पॉइंट था, उसी को लेकर मैं आगे चली। फिर तो बहुत अच्छे गाने मिले। तू मेरा हीरो नंबर वन बजाइएगा जरूर, शाम है धुआं धुआं, वो तो मेरा सबसे ऑल टाइम फेवरेट और मेरे श्रोताओं का भी। चने के खेत में, चने के खेत में मुझे बताया गया कि माधुरी जी के लिए है
1: जी,
0: तो उनका उनकी डिक्शन बहुत साफ है, क्लियर जिसे हम कहते हैं। और हमेशा एक गाने में एक्सप्रेशन तो क्वीन नहीं, महारानी है वो, लेकिन उनके सॉन्ग पिक्चराइजेशंस में आप देखेंगे उनके उनके जो माउथ की प्लेसिंग है ना
1: जी,
0: वो एक अलग टाइप की।
1: हाँ बिल्कुल,
0: वो मैंने नोट किया था।
1: और फिल्म अंजाम का ये गीत चने के खेत में माधुरी दीक्षित के करियर हाँ। का सबसे बेहतरीन डांस नंबर्स में से एक बन जाएगा।
0: हालांकि उसके बाद मुझे नहीं मिले माधुरी जी के लिए गाने, लेकिन इस बात का मुझे गर्व होता है कि माधुरी जी जहां आती हैं तो इस गाने को वो डिलीट नहीं कर सकती हैं अपनी जिंदगी से और अपने परफॉर्मेंस।
1: बिल्कुल सही कहा
0: है ना?
1: आपने। और
0: ये गाना उनके करियर का एक अहम हिस्सा है, जैसे मेरे करियर का भी। तो बस फिर गाने मिलते गए मंदाकिनी जी, फिर मैं
1: आगे बढ़ते गए और हम लोगों का दिल आप जीतती रही। और देखिए ना, हीरो नंबर वन, बीवी नंबर वन, मैं तो रस्ते से जा रही थी, है ना, कुली नंबर वन, गोविंद और करिश्मा कपूर की जो ये पर्दे पर दिखाई देती है।
0: हाँ, ये बात हाँ। कि करिश्मा को मेरी इनफैक्ट काजोल को भी वो मिस्टर लोभा लोभा, मुझे ये बताया गया कि अजय देवगन जी ने काजोल से पूछा कि तुम श्योर हो तुमने नहीं गाया ना ये,
1: क्या बात,
0: किसी और ने गाया ना, तुम पूर्णिमा जी ने गाया ना, तुमने तो खुद नहीं गाया, मतलब इतने वो एक्सप्रेशन
1: हूबहू,
0: मैं खुद भी मतलब शॉक में हूँ।
1: और उसके बाद हीरो नंबर वन का गाना सुनना, कितना तो मतलब उस गाने के बाद तो अगर पैर नहीं थिरके तो बेकार है वो आदमी, इंसान ही बेकार है।
0: देखिए करिश्मा का एक अजीब एक उनका कैसे बताऊं मैं, बोलने का एक तरीका ना, वो सिर्फ मैंने कुछ लोगों ने मुझे चिढ़ाया भी उस पे, पर वो कमबख्श जानते ही नहीं है कि मैंने क्या किया। छोड़िए, खैर, तो सोना कितना सोना, तो ये म्यूजिक डायरेक्टर्स नहीं सिखाते हैं, वो हम पर छोड़ देते हैं।
1: जी, जी, जी, जी।
0: सोने जैसा तेरा मन, ये सुन जरा सुन क्या कहते
2: हैं। ताजा खबर रेली प्रचार करू आकाशवाणी दिल्ली।

0: 愛知名古屋。
1: Hello and a very warm welcome to all the listeners of Akashwadi. दोस्तों मैं हूँ साक्षी मांडवाल और मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं मोहम्मद शाहिद आजमी. घड़ी में बज रहे हैं 4:30 और हम लेकर आ गए आपके लिए अभी के लाइव अपडेट्स ऑफ द ऑनगोइंग एशियन गेम्स 2026. आज का दिन ऑलमोस्ट समापन पर है. खासतौर से अगर हम बात करें भारतीय नजरिए से कि कौन कौन से भारतीय खिलाड़ी किस किस इवेंट के अंदर आपको खेलते हुए नजर आएंगे. रेसलिंग के अंदर एक बाउट और बचा है और अभी हमारा हॉकी का फाइनल मुकाबला चल रहा है. लेकिन ये फाइनल मुकाबला कोई छोटा मोटा मुकाबला नहीं है दोस्तों, बिकॉज इंडिया इज अप अगेंस्ट मलेशिया इन द मेंस हॉकी फाइनल्स फाइटिंग फॉर द गोल्ड मेडल. यस सर, इंडिया ऑलरेडी हैज अ लीड ऑफ 1 ओवर मलेशिया. द प्रेजेंट स्कोर लाइन रीडिंग 2-1. जी हाँ, और अभी फर्स्ट क्वार्टर अभी इनफैक्ट ओवर भी नहीं हुआ है. फर्स्ट क्वार्टर में अभी 2 बचे हुए हैं और भारत ने अगर हम बात करें तो माफी चाहूंगी, फर्स्ट क्वार्टर थर्ड क्वार्टर इनफैक्ट अभी चल रहा है एंड भारत 2-1 से मलेशिया से अभी बढ़त बनाकर आगे चली रहा है. वी विल हैव टू सी हाउ दिस टर्न्स आउट. भारत की तरफ से बता दूं कि 11वें मिनट में हरमनप्रीत सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्ट किया और उसके बाद हमने देखा कि जुगराज सिंह ने भी पीसी को कन्वर्ट करके भारत के नाम 2 करवाए थे. वहीं पर अगर मलेशिया की बात करें तो शैलो सिल्वरस ने मलेशिया को 1 करवाया. द मैच इज स्टिल ऑन, वी विल हैव टू सी हाउ दिस गोज टुवर्ड्स द एंड, बट शायद डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग लीड.
2: बिल्कुल, 2 भारत के पक्ष में आ सकता है. हॉकी की जैसा आपने बात की, भारत यहाँ पे लीड में. दूसरा जो आपने बताया कुश्ती का मुकाबला एक बाकी. जी हाँ, उस मुकाबले में भी अंतिम पंगाल अगर जीती थी तो भारत के खाते में गोल्ड आ जाएगा. लेकिन हाँ, एक पदक भारत के खाते में जरूर जुड़ा है ब्रॉन्ज मेडल की शक्ल में. भारत के दीपक पुनिया ने एशियन गेम 2026 के पुरुषों के फ्रीस्टाइल 97 वर्ग में जो कांस्य पदक का मुकाबला था वहां कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है. इस मुकाबले में दीपक ने मंगोलिया के गंगखुयाग गनबातार को कड़े मुकाबले में 2-1 से हराया. दीपक ने शुरुआत में 2-0 की बढ़त बनाई लेकिन बाद में उन्हें पैसिविटी के कारण 1 गंवाना पड़ा और अंतिम क्षणों में उन्होंने संयम बनाए रखा और 2-1 से मुकाबला अपने नाम कर लिया. इस कांस्य के साथ दीपक पुनिया ने लगातार दूसरे एशियन गेम्स में पदक जीता है. इससे पहले उन्होंने हांगझोउ 2023 में रजत पदक हासिल किया था. इससे पूर्व सेमीफाइनल में जैसा कि दीपक पुनिया ने प्रदर्शन किया था और सेमीफाइनल में उज्बेकिस्तान के सरजोद पोनेवा के हाथों 8-9 से हार गए थे, जिस वजह से उन्हें कांस्य पदक का मुकाबला खेलना पड़ा.
1: जी, एंड सम गुड न्यूज ऑल्सो, बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज द लास्ट डे इन द ऑनगोइंग एशियन गेम्स 2026 व्हेन इट कम्स टू सीइंग आवर इंडियन प्लेयर्स आवर इंडियन एथलीट्स रिप्रेजेंट इंडिया इन डिफरेंट इवेंट्स व्हेन इट कम्स टू इन द स्पोर्टिंग अरीना. सो दे स्टार्टेड ऑफ ऑन अ गुड नोट वेयर वी हैड आवर इंडियन गोल्फर प्रणवी उड्स क्रिएटिंग हिस्ट्री बाय क्लिंचिंग द गोल्ड फॉर इंडिया द एशियन गेम्स 2026. दिस केम आफ्टर अ 24-year-old लॉन्ग वेट. द लास्ट टाइम एन इंडियन वन एन इंडिविजुअल गोल्ड इन गोल्फ वॉज शिव कपूर 2002 में. जी हाँ, और आपको ये भी बता दें कि हमारी गोल्फ की महिलाओं की टीम ने भी इन द टीम इवेंट, मैं बात कर रही हूँ अदिति अशोक दीक्षा डागर और प्रणवी उड्स की, उसमें भी उन्होंने भारत को आज सिल्वर मेडल दिलवाया है. आर्चरी की बात करें तो कुमकुम महोद ने भी शी ऑल्सो मेड इंडिया प्राउड बिकॉज शी क्रिएटेड हिस्ट्री बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन वुमेन्स रिकर्व आर्चर टू विन अ गोल्ड मेडल एट द एशियन गेम्स. इन अ थ्रिलिंग फाइनल शी बीट हर कोरियन ओपोनेंट ओ ही जिन बाय अ शूट ऑफ एंड देयरबाय वी सॉ हर ब्रिंगिंग द कोवेटेड गोल्ड क्रिएटिंग हिस्ट्री.
2: जी, एक और कांस्य पदक भारत के खाते में आते आते रह गया है. सागर जगलान अपना कांस्य पदक का मुकाबला हार गए, वहीं अमन सहरावत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीत लिया. जहां अमन ने फाइनल में उत्तर कोरिया का हान चोंगसोंग को 11-7 से हराया. मुकाबले की शुरुआत में अमन 4-1 की बढ़त बना ली थी लेकिन चोंगसोंग ने जोरदार वापसी

0: करके गोल्ड मेडल पर अपना नाम लिखवा लिया
1: जी। और आज श्री केंद्र आपको ये भी बता दे कि हमने देखा कि कैसे दो भारतीयों का भी आज एक मुकाबला हो गया फॉर द ब्रॉन्ज मेडल। मैं बात कर रही हूँ नीरज चौहान और धीरज बोम्मा देवारा की, जिसमें नीरज चौहान ने धीरज को 6-4 से मेंस इंडिविजुअल रिकर्व में हराकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही ब्रॉन्ज मेडल भारत का ही नाम रहा क्योंकि दो भारतीय थे। द गुड न्यूज और द बेस्ट पार्ट वॉज दैट इट केम बैक टू एन इंडियन एंड इन दिस केस दिस वॉज धीरज। एंड उसके बाद वी हैव टैक्वांडो के अंदर भी, जहां कशिश मलिक हैज बोर्ड आउट ऑफ द वुमेन्स 56 kg राउंड ऑफ 16 इवेंट एट द एशियन गेम्स 2026 इन

0: पूर्णिमा के नाम से जानी
1: बहुत
0: जाती है।
1: बहुत मुश्किल है मंदाकिनी जी यहाँ सेकेंड इनिंग्स मिलना, सेकेंड इनिंग्स, थर्ड इनिंग्स अभी भी गा रही हूँ
0: जी।
1: यहाँ तो आप आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और आज ये सोशल मीडिया में मैं बिल्कुल ही एक्टिव नहीं हूँ, मुझे होना भी नहीं, मुझे पसंद नहीं। फिर भी आप जैसे लोग इतनी इज्जत से बुला रहे हैं
0: जी।
1: जिस फिल्म का मैंने जिक्र अभी किया
0: जी,
1: मराठी फिल्म का कब्बशी, उसकी दो लाइन्स में महाराष्ट्र के मराठी ऑडियंस तुमच्यासाठी अगदी खास हे गाणं मी गाती आता, नवीन माझ्यात पिक्चर आहे कब्बशी, त्याच्यातलं दिसला बाई दिसला मला सापडला कुठला देव बाई पाला जीवच गहिवरला उरात धड धड वाढली ठोका सजा चुकला छो मंत।
0: क्या बात है क्या बात है।
1: तो ये गाना मंदाकिनी जी उस डायरेक्टर वैभव का जब कॉल आया मैंने मना कर दिया। वो बोले उत्तम सिंह जी म्यूजिक देंगे, हमको वही फ्लेवर चाहिए, दिल तो पागल है। और बस मुझे यही था कि मैं जब फिल्म डायरेक्ट करूंगा आप ही से गवाऊंगा
0: जी।
1: पर मैंने कहा देखो भाई अब मेरी उम्र 60 मैं क्रॉस कर चुकी हूँ, अभी सितंबर में मैं 67 पूरा करूंगी
0: जी।
1: अभी, ये एक साल पहले रिकॉर्डिंग हुई थी, तो मैंने कहा कि अब मैं उस सुर में नहीं गा सकती हूँ, मेरे सुर मैंने नीचे किए हैं, और उत्तम भाई से मैं इतनी बेबाकी से नहीं बोल सकती कि भैया आप मेरे सुर में कंपोज कीजिए, इतनी बदतमीजी मैं नहीं करूंगी। ये खत्म हुई, फिर एक हफ्ते वो फोन करते रहा, मैंने मना किया, फिर कुछ 15 दिन के बाद फोन बजा और उसने कहा आपसे कोई बात करना चाह रहे हैं। तो उत्तम भैया आए लाइन पे, बोले बेटा बाजा मेरे पास, वो मुझे हमेशा बेटा ही कहते, बेटू बाजा मैंने है देखा, मैं बजा बाजा मैं तुझे कॉम्पोजिशन सुना रहा हूँ, तू मुझे बोल तेरा सुर क्या है, अब हम उसी सुर में ट्रैक बनाएंगे पर गाना तो तुझे ही है, सवाल ही नहीं कि हम किसी और से ये गाना गवाएंगे। तो ये कितनी बड़ी बात है, ये अहोभाग्य मैं कहूंगी
0: जी।
1: ये किसको मिलता है कि ये गाना आपका है, इसे और कोई टच नहीं करेगा। तो उन 100 गानों में वो एक गाना अगर मेरा है जिसे कोई छू नहीं सकता या नहीं छुएगा,
0: ये बड़ी बात है,
1: तो इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है मंदाकिनी जी।
0: बिल्कुल,
1: वो सारे 100 गाने एक तरफ और ये मेरा एक गाना एक,
0: बिल्कुल सही कहा। तो एक मराठी गाना सुन ले, बताइए।
1: मेरे बचपन में जब सुषमा श्रेष्ठा के नाम से, उस वक्त के लोग जरूर याद रखते होंगे, श्रीनिवास खड़े जी हमारे दिग्गज म्यूजिक डायरेक्टर मराठी के, और शांता शेळके जी दिग्गज लिरिसिस्ट, उन्होंने लिरिक्स लिखे थे और खड़े साहब ने, तो मेरा बाल गीत सबसे पहला एल्बम HMV ने
0: जी,
1: उसका एक गाना, उसके कई रिमिक्सेस बने हैं पर आज सबको बोलूं कि ओरिजिनल मेरा है
0: जी।
1: किल बिल पक्षी बोलती झुड़ झुड़ झुड़ झुड़ झरे वाहती पानो पानी फूले बहरती फूल पाखरे वर बिर बिरती स्वप्न।

0: बहुत सुंदर, क्या बात है।
1: तो मराठी गाने, बस मराठी में तो मैं बहुत ही कंफर्टेबल हूँ आई की वजह से, बहुत ज्यादा। लेकिन लैंग्वेजेस में कभी दिक्कत नहीं आई, ये ईमानदारी की बात है।
0: अब जब आ गए हैं हम अन्य भाषाओं के आपके गाए गीतों पर, तो पूर्णिमा जी आपने कई भाषाओं में गाने गाए, जैसे कि बंगाली, नेपाली, मराठी, भोजपुरी, असमिया, हरियाणवी और गढ़वाली भाषा में भी आपने गाया।
1: बिल्कुल।
0: इनमें किस भाषा के गीत ज्यादा आपके लिए चैलेंजिंग थे, और साथ ही अलग अलग भाषाओं के उच्चारण यानी जो डिक्शन आप करते हैं और इमोशन को एक गायक के रूप में ढालने में

0: तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि
1: मंदाकिनी जी, मैं फिर दोहराती हूँ कि जिसको कुदरत बनाना चाहता है वो उसे एक अलग ढांचे में ढालता है। मुझे लगता है मैं बचपन से एक अलग अलग ढांचे में ढल के आई हूँ। मुझे कभी मुश्किल नहीं हुई किसी भी भाषा में गाने के लिए, कभी नहीं। मैं साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में मैंने कितने जिंगल्स किए, और हिंदी में ऑफकोर्स लिखती थी, और जो उनके इंटोनेशंस हैं लैंग्वेज की उन्हें मैं मार्क करती थी, पर एक दो टेक में ही ओके हो जाता था। मुझे कभी नहीं मुश्किल हुई, पता नहीं कैसे क्या, मैं नहीं, इस बात का जवाब मेरे पास नहीं
0: जी,
1: पर गिफ्ट। ये गॉड गिफ्ट, ये एक गॉड गिफ्ट मेरी आई को था। वो हर भाषा को ना एकदम से उसमें मोल्ड हो जाती थी, तो शायद ये आई से जैसे आवाज मिली वैसे ये भी गिफ्ट मिला होगा। मंदाकिनी जी सॉरी, लेकिन मुझे ना मेरा एक और गाना याद आ रहा है, जब मैंने जब रिमिक्स की बात की ना, नहीं हिंदी गाना, उस गाने का भी रिमिक्स बना और एक किसी ने गाया, पर वो गाना एक्चुअली मेरा है। ये जेंजी क्राउड को पता पड़ना बहुत जरूरी है। ऊंची है बिल्डिंग टाडा टाडा टाडा, लिफ्ट तेरी बंद है टाडा टाडा टाडा, कैसे मैं आऊं टाडा टाडा टाडा टाडा टाडा टाडा, आजा आजा आजा बैंड बाजा। तो ये ओरिजिनल तो मैंने गाया था
0: अनु मलिक के साथ,
1: बिल्कुल जुड़वा फिल्म के लिए है ना, पर वो रीमिक्स से मुझे याद आया।
2: ऊंची है बिल्डिंग, अरे लिफ्ट तेरी बंद।

0: पूर्णिमा बनने के बाद आपने बहुत सारे संगीतकारों के साथ काम किया
1: जी,
0: तो पुराने संगीतकारों के साथ काम करना और फिर से नए संगीतकारों के साथ काम करना, इनमें क्या अंतर महसूस किया?
1: मैंने जैसे मदन मोहन जी से के साथ या नौशाद साहब के साथ, दादू पंचमदा के साथ, वसंत देसाई जी, सबके साथ काम किया। जैसे वो सिखाते थे, जिस तरह से वो समझाते थे, वैसे ही आनंद मिलिंद ने समझाया, वैसे ही अनु मलिक ने समझाया, वैसे ही राजेश रोशन जी ने समझाया, जतिन ललित, उनका एक बहुत बेहतरीन गाना गाया था, दिल में है तू, धड़कन में तू, ओ माय जानू आई लव यू, वो ही सब। देखिए क्या होता है, फर्क सिर्फ माहौल में हुआ, माहौल एज इन रिकॉर्डिंग करने का तरीका। उस वक्त ये था कि भाई लाइव म्यूजिशियंस हैं।
0: अब और सिंगल ट्रैक रिकॉर्डिंग होती थी पहले,
1: बिल्कुल बिल्कुल। और क्या होता था मंदाकिनी जी, फर्क ज्यादा मुझे अब महसूस हो रहा है, यानी 90s के बाद का जो दौर आया, और मुझे, मैंने जब एनालाइज किया तो मुझे लगता है उसका एक ही कारण हो सकता है, हम भी जब तक गाते थे, भले हम ट्रैक्स पे गाते थे, लेकिन हम जितने हम सिंगर्स आए थे या जितने हम म्यूजिक डायरेक्टर्स हमारे आए, उनकी सबकी जो एक

0: उनका जो एक बैकग्राउंड था बहुत सॉलिड था,
1: सॉलिड
0: नींव उनकी हम सबकी बहुत सॉलिड थी,
1: बेसिक्स बहुत,
0: हम सब म्यूजिकल बैकग्राउंड्स को बिलोंग करते थे, करते हैं, है ना। अब के बच्चे, बुरा लगता है उनके लिए, सच में बुरा लगता है। एक गाना दस दस बच्चों से गवाते हैं, उन बच्चों को बेचारों को मालूम ही नहीं कि ये गाना मेरा रहेगा भी के
1: या नहीं,
0: है ना। अब आप बोलोगे क्या रे तुम, अरे कैसे मना करेंगे, हर कोई चाहे ना कि भाई चांस मिल रहा है, कैसे ना बोल। अब पहले ये होता था, स्पेशली जब 70s और 80s तक भी एक हद तक हम रिकॉर्ड करते थे मंदाकिनी जी, तो आप सोचिए कि पूरे रिकॉर्डिंग रूम में कम से कम 70-80 लोग म्यूजिशियंस, फिर सिंगर्स कैबिन में या तो मैं अकेली सोलो सिंगर कोई भी या हम दो, है ना, तो कम से कम आप सोचिए कि, और फिर अंदर कॉन्सोल्स में लोग बैठे, तो एक कम से कम नहीं नहीं तो 80-90 लोगों की पॉजिटिविटी उस गाने के साथ जुड़ी है।
1: माहौल वैसे ही होता था, वो गर्माहट।
0: क्यों? क्योंकि अगर एक ने गलती की तो शुरुआत से गाना शुरू करना पड़ेगा। तो सब लोग इतने चौकन्ने होकर काम करते थे कि हमसे कोई गलती
1: जाए,
0: कोई गलती नहीं होनी चाहिए। वो चौकन्नापन, वो पॉजिटिविटी, एक गाने में सोचिए ना सबकी पॉजिटिविटी कि दिस इज इट, ये टेको के होना चाहिए। तो वो पॉजिटिविटी जो हम देते थे ना, उसकी सिर्फ कमी मैं आज महसूस करती हूँ।
1: आज जो तकनीकी बदलाव आ गए हैं गानों की धुन पर,
0: जबकि बच्चे बहुत मेहनत से काम करते हैं, मैं बहुत सराहना करती हूँ उनकी, जो लिमिटेड उनको, इनफैक्ट मुझे लगता है आज के जिस माहौल या दौर में वो काम कर रहे हैं वो हमसे भी ज्यादा मुश्किल है
1: जी।
0: अगर वो बोलेंगे भी कि नहीं हमको गाना फिर से करना है, तो भी उनको ऐसे देखते हैं लोग, मुझे मालूम है कि ये क्या बोल रहे हैं, पंचिंग का जमाना है, क्या पूरा गाना गाने पे
1: तुला हुआ है।
0: अरे यार वो वर्ड पंच कर दो, छोड़ो ना यार, कहा अभी मैंने देखा है,
1: मतलब संगीत की ये हालत अगर हो जाएगी तो एक नया सिंगर
0: तो वो पॉजिटिविटी आएगी,
1: वो सीखेगा कहाँ से आगे के लिए।
0: टुकड़ों में थोड़ी ना पॉजिटिविटी, सकारात्मक जो ऊर्जा होती है वो टुकड़ों में थोड़ी ना बटी जाएगी, है ना। मुझे कमी सिर्फ ना मेहनत में कमी है, ना उनकी नीयत, शायद हो सकता है नीयत में, ईमानदारी में थोड़ा सा ऊंच नीच हो, वो भी मैं बोलूंगी बिकॉज ऑफ द सिचुएशन टुडे, आज का जो माहौल, जिस माहौल में ये बच्चे काम कर रहे हैं,
1: रातों रात स्टार,
0: इतना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, क्या करेंगे वो। तो हमने सराहना करनी चाहिए बच्चों की, जितना हो सके उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, और हो सके तो उनको अच्छी सीख दो भाई
1: जी, ताकि आगे चलकर एक
0: उनको
1: करियर जो बनता
0: है, हर बार उनका उस्ताद बनने की कोशिश मत करो ना, ये बात गलत है। हमें अच्छा लगता था उनकी उम्र में जब हम थे, हम वो जो हमारा वक्त था, हमें नहीं अच्छा लगता था कोई उस्ताद बनने की कोशिश अगर, लेकिन हमारा तरीका अलग था उसको जताने का, इनका तरीका अलग है, क्योंकि आज वक्त बदल गया है। तो बदलते वक्त के साथ जो बदले अपने आप को, वो एक्सेप्ट करके बदले, मुझे लगता समझदारी उसी में
1: जी। एक गाना सुन लिया जाए,
0: कौन सा बताइए,
1: आप बताइए आपकी पसंद चल रही है, हमें तो आपके सभी गाने पसंद है।
0: हकीयत मिला ले राजा, आए हैं दिन बहार के, हकीयत चुरा न राजा, जाए न दिन ये प्यार के, मिसलो वलो व तेरी आंखों का जादू, मिसलो वलो व तेरी। उसने जैसे उसको ब्लेंड किया ना, मेरी आवाज में इतना मुझे दर्द हो रहा है कि पत्ती आ रही है मेरी आवाज में, मतलब थोड़ी थोड़ी फट रही है, मैं अपने श्रोताओं से माफी चाहूंगी इसके लिए।
1: नहीं नहीं बिल्कुल,
0: पर आज का ये मौका मैं नहीं गवाना नहीं चाहती,
1: और हम भी मौका नहीं गवाना चाहते, तभी तो आपकी पसंद का ये गीत हम सुनते हैं।

0: ये जाए।
1: तो पूर्णिमा जी, आज तो हम आपकी बातों का और आपके गानों का रसा स्वादन कर रहे हैं और हमारे श्रोता भी। अब बस हम ये जानना चाहते हैं चलते चलाते कि आज भी क्या आप फिल्मों में गा रही हैं, एक्टिव हैं और लाइव स्टेज शोज तो आप कर ही रही हैं, तो आगे आने वाले आपके नए प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं?
2: फिलहाल तो वैसे कोई खास नहीं है। ये जो मैंने अभी जिक्र किया जिसका मराठी फिल्म का, उसमें मैंने अभी गाया। और स्टेज शोज तो बहुत करती हूँ, बहुत। और अगर मैं बहुत ईमानदारी से बोलूँ तो मुझे स्टेज शोज करने में ज्यादा मजा आता है, पता नहीं क्यों। इसका मेरे पास कोई आप पूछेंगे तो कोई आंसर नहीं
1: जी।
2: पर मुझे लगता है वो मेरे ऑडियंस के साथ वन टू वन होना और मैं परफॉर्म करती हूँ स्टेज पे तो मुझे बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है।
1: वहाँ पे कौन सी फरमाइश आती है सबसे पहले, क्या सुनना चाहते हैं उस वक्त?
2: शाम है, धुआं धुआं, कम से कम चार बार गाना पड़ता है।
1: बिल्कुल, युवा दर्शक होते होंगे और वो भी इस गाने को सुनना
2: बिल्कुल
1: पसंद करते।
2: बिल्कुल, और तू मेरा हीरो नंबर, पर शाम है धुआं धुआं ज्यादा, और तेरा मुझसे है पहले का। बस खास तो कुछ नहीं कर रही हूँ, गा रही हूँ बस,
1: यही खास
2: स्टेज
1: है।
2: पे यही से मेरे लिए तो यही खास है
1: जी।
2: इसके अलावा मैंने कुछ किया ही नहीं जिंदगी में, है ना। और ना जब कोई पूछता है कि आप अभी भी गाती हैं, ये सवाल मुझसे करते हैं लोग।
1: अच्छा,
2: उनसे मैं कहना चाहूंगी कि हम लोग जो है ना, हम लोग शापित गंधर्व हैं, है ना, हम इसे ऊपर से लेकर आए हैं। तो ये कोई गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं कि भाई 60 साल के बाद आप रिटायर हो जाओगे। ये तो हमारे, मुझे लगता है हमारे रगों में खून कम और संगीत के सुर ज्यादा बहते
1: जी,
2: हैं
1: जी।
2: तो ये हमसे उसी वक्त शायद ये सुर

0: अलग होंगे जब चीता की आग जलेगी
1: जी।
0: तो ये सवाल प्लीज मत पूछा कीजिए किसी भी कलाकार से।
1: पूर्णिमा जी एक गीत और सुन लेते हैं आपकी पसंद
0: प्लीज। चने के खेत में
1: अरे
0: 18 बरस की कंवारी कली थी, घूंघट में खड़ा छुपा के चली थी, फसी गोरी चने के खेत में, रहू चोरी चने

0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो पूर्णिमा जी, और मैं तो कहूंगी सुषमा श्रेष्ठा जी भी
1: और अभी पूर्णिमा श्रेष्ठा जी,
0: आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका तहे दिल से शुक्रिया और बहुत बहुत आभार।
1: तो आप सबको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे श्रोताओं को मेरा सादर नमन। बॉम्बे टॉकीज इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गायिका सुषमा श्रेष्ठ यानी पूर्णिमा से मंदाकिनी जोशी की ये बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस बातचीत का तीसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिद्धल, संपादन सहयोग अंबालिका सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

प्रस्तुत है छाया गीत। छाया गीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को पूजा नारायणिया का नमस्कार। खत और कलम लिए बैठे हैं, सोच में डूबे हुए कि क्या लिख दें उन्हें दिल का हाल। पर कलम जैसे ही खत की ओर बढ़ती है, लफ्ज जैसे हवा में कहीं तैरने लगते हैं। कैसे उन्हें खत में कैद करें, कैसे उन्हें लिख भेजें दिल का हाल। ये हवाएं अपने साथ ले उड़ती हैं और हम गुम हो बैठते हैं उनके ख्यालों में।

ख्यालों का बुलबुला जब अचानक फूट पड़ता है तो याद आता है कि लिखने बैठे थे दिल का हाल, पर अब तक एक शब्द भी नहीं लिख पाए। दूरी है जो परेशान कर रही है, तो क्या दूरी का यह एहसास लिख दें, या यूं लिख दें कि बे इंतहा मोहब्बत है तुमसे, अपनी मोहब्बत का इजहार ही लिख दें। तुमसे हुई हर मुलाकात याद आती है, तुम याद आते हो, क्या उन मुलाकातों का हसीन ख्याल लिख दें।

बार बार सोचते हैं कि तुम्हें क्या लिख दें, कैसे लिख दें, कहां से शुरू करें। दिल में तुम्हारे लिए इतना सारा प्यार है कि कोई भी शब्द उसे पूरा ही नहीं कह पाएगा। मन करता है कि इस खत में अपना पूरा दिल ही रख दें, तुम्हें बता दें कि तुम्हारे बिना हर दिन कितना अधूरा है, हर शाम कितनी बेचैन है, हर रात कितनी खाली है। सिर्फ तुम्हारा नाम ही लबों पर हर पल रहता है। इस खालीपन में जब भी कलम चलाने लगते हैं तो सारे शब्द चुप्पी की चुनर ओढ़ लेते हैं और सिर्फ लिख पाते हैं तुम्हारा नाम।

देखो ना, खत हमेशा साथ देने के लिए राजी हो जाता है, पर कलम पता नहीं क्या हो जाता है, इसे साथ ही नहीं देती। फिर बस खत को देखते हैं और मन ही मन तुमसे बातें करते रहते हैं। शायद प्यार ऐसा ही होता है, जहां सबसे ज्यादा कहने वाला दिल ही सबसे ज्यादा चुप हो जाता है। अब दिल में तुम जो रहने लगे हो, तो आंखें खुली हो या हो बंद, सिर्फ तुम्हें देखते हैं, तुम्हें

जानते हो, अब तो दुनिया की हर छोटी सी खुशी भी तुमसे जुड़ गई है। कोई भी बात हो, तुम्हारा जिक्र आते ही मन खिलखिला उठता है। कोई भी गीत सुनते हैं तो तुम्हारी याद उस गीत के साथ जुड़कर उसे और भी खूबसूरत बना देती है। कहीं ठंडी हवा चलती है तो लगता है जैसे तुम्हारा स्पर्श पास से गुजरा है। चांद में भी अब तुम ही नजर आते हो तो मैं ऐसे सोचते हुए होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। कई बार लगता है कि काश तुम सामने होते तो शायद कुछ कह नहीं पाते हम, बस तुम्हें देखते ही रहते।

खत मिली तो उसे खाली मत समझ बैठना। समझ लेना, जो तुम्हें लिख नहीं पाए हम, उस खाली खत के हर खाली कोने में प्यार लिखा पाओगे, हर धड़कन धड़कती पाओगे, हमारा इंतजार का हर लम्हा पाओगे, और सबसे ज्यादा सिर्फ तुम्हारा नाम लिखा पाओगे।

कितना प्यारा है ये प्यार का रिश्ता। इसमें खुशी भी होती है, दर्द भी होता है, दूरियां होती हैं तो पास होने का खूबसूरत एहसास भी होता है, शिकवे शिकायतें भी होती हैं तो माफी का खास अंदाज भी होता है, इंतजार भी होता है तो मिलने की गुदगुदी भी होती है। एक अदृश्य डोर से बंधे दो दिल एक अटूट विश्वास के रिश्ते में अपना संसार बसाने लगते हैं। इसीलिए कभी अगर तुम्हें कोई खाली

छाया गीत का आज का सफर आपने तय किया पूजा नारायणिया के साथ। छाया गीत के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। अब दीजिए आज्ञा, नमस्कार।

वॉर्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी. मैं हूं साक्षी मांडवाल. मेरे साथ इस वक्त यहां पर मौजूद है मोहम्मद शाहिद आजमी. हम लेकर आ गए हैं आपके लिए शाम के 5:30 बजे की लाइव अपडेट्स ऑफ द ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026. तो दोस्तों, आपको इस अपडेट को शुरू करने से पहले बता दें कि भारत का सफर एशियन गेम्स 2026 के अंदर आकर अब ऑफिशियली समाप्त हो चुका है. जी हाँ, भारत के सारे स्पोर्टिंग इवेंट्स अब यहाँ पर आकर समाप्त हो गए हैं आज. चलिए आपको

0: भारत ने अपने एशियन गेम्स का सफर समाप्त किया वो है एक मीठे से गोल्ड मेडल के साथ। जी हाँ, जो कि आया हॉकी में, जहाँ भारत ने मलेशिया को 5-1 से आज हरा दिया। एंड दिस इनफैक्ट मार्क्स अ लॉट ऑफ माइलस्टोन्स फॉर द इंडियन मेंस हॉकी टीम। फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर द डिफेंडिंग चैंपियंस, लेट्स नॉट फॉरगेट, एंड दिस इज बैक टू बैक एशियन गेम्स गोल्ड मेडल फॉर द इंडियन मेंस हॉकी टीम। लेट्स ऑल्सो नॉट फॉरगेट दैट द इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम गॉट अस द गोल्ड यस्टरडे बाय डिफीटिंग द डिफेंडिंग चैंपियंस चाइना 1-0, and as a result, this is for the first time when both the men and women's hockey team have gone on to win the gold in the Asian Games. A lot of points being broken out there, milestones being set. Also, with this win, now India have booked their place for the LA 2028 Olympics, the big one. Quickly taking you down through the journey of who scored the goals for India. Harmanpreet Singh scored the goal in the 11th minute, when Elvi Connor conversion, then Yuvraj Singh in the 23rd minute. Hardik Singh, Shilanand Lakra, and finally in the 57th minute, Harmanpreet Singh once again came back to convert a penalty corner. Malaysia ki taraf se Sheila Silveres ne sabhi ko goal score kiya. Aaj ek se Bharat ne jab Malaysia ko haraya, pehle quarter mein ek ki barabari ho gayi thi. Dusre half time mein humne dekha ki Bharat ne ek aur goal se badhak banayi. Third quarter mein Bharat ne phir se ek aur goal se badhak banayi aur finally last quarter ke andar Bharat ne 2 goal mare. Aaj ek se Malaysia ka chukra
1: bilkul hara diya aur yahan par ek padak ki aur ummeed thi अंतिम पंगाल से कि गोल्ड लाएंगे, लेकिन वो गोल्ड से चूक।

0: न भुलाए।
1: 1 मार्च को नजर मिलाई, 4 अप्रैल को मैं मिलने आई, 21 मई को तुमने छुआ था, 6 जून मुझे कुछ हुआ था।
2: लड़कों का क्या है, किसी भी मोड़ पे वो मुड़ जाए, अभी किसी के हैं, अभी किसी और से वो जुड़ जाए।
3: तुम्हारे मम्मी डैडी घर पर नहीं, ग्रेट, मैं आ जाऊँ। तुम्हारी फ्रेंड अकेली घर जा रही है, बेचारी मैं छोड़ाऊँ।

0: झगड़ने की क्या बात है यार?
1: पहले पहले भवरे जैसे पास पास मंडरा है, फिर बिजी हूँ ये कहकर तुमको वो टरका। समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम है, दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है। जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो जाए, कुछ ही दिन में नजरें इनकी इधर उधर मंडरा। सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती, तुम इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
0: ओके दैट्स इट।
2: અલખા યાજ્ઞિક શાન અને સાથીઓને આપ સાંભળી રહ્યા હતા, ફિલ્મનું નામ હતું હમ તુમ।

अभी आपने आतिफ असलम और पलक मुच्छल को सुना। फिल्म थी रुस्तम, तर्ज बनाई थी जीत गांगुली ने, बोल लिखे थे मनोज मंतसर ने। अब सुनिए जाने अनजाने फिल्म का गीत, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में। हसरत जयपुरी के लिखे इस गीत की धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

अगला गीत तमाशा फिल्म से, जिसे गाया है अलका याग्निक और अरिजीत सिंह ने। इरशाद कामिल के लिखे इस गीत की धुन बनाई है ए आर रहमान ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा।
1: कार्यक्रम रिले करे सुनाइलु विविध भारती विज्ञापन प्रसारण सेवा दिल्ली रो आकाशवाणी बारिपदा स्टूडियो घड़ी रे समय वर्तमान संध्या छटा। श्रोताबंधु आपण माने कार्यक्रम सुनुछंती आकाशवाणी बारिपदा केन्द्र रो प्रचारित होउछि एफएम बेंड रे 102.9 मेगाहर्ज जोगे। आसंतु सुनिबा गीतटी भक्ति गीत। कार्यक्रम आरंभ रे कंठशिल्पी वरुण मिश्र गायछंती निर्मला पंडा रचनारू।

0: Biz Aycin Oğuz'a.
1: वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी. मैं हूँ दोस्तों साक्षी मांडवाल. मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है मोहम्मद शाहिद आजमी और हम लेकर आ गए हैं शाम के 6:30 बजे की लाइव अपडेट्स ऑफ द एशियन गेम्स 2026. आप सबको बता दें कि भारत का ऑफिशियली जो सफर था 2026 के एशियन गेम्स में अब आकर समाप्त तो हो चुका है. जी हाँ, ऑल द इवेंट्स हैव ऑफिशियली कंक्लूडेड फॉर द इंडियन कंटिंजेंट इन द ऑनगोइंग एशियन गेम्स 2026 एंड विद दैट इंडिया हैज फिनिश्ड देयर प्लेस ऑन द फोर्थ स्पॉट इन द मेडल टैली. जी हाँ, चौथे स्थान पर भारत ने अपना सफर मेडल टेबल पर खत्म किया है. कुल मिलाकर भारत के पास है 85 मेडल्स, 21 गोल्ड, 27 सिल्वर, 37 ब्रॉन्ज. द डे स्टार्टेड फॉर इंडिया टुडे ऑन अ स्वीट नोट. सबसे पहले हमने देखा हमारे पास गोल्ड आया गोल्फ से, जहां पर एक रिकॉर्ड या हिस्ट्री भी बनी. उसके बाद आर्चरी से आया, फिर क्रिकेट ने हमें दिया और फाइनली हमें हॉकी ने गोल्ड देकर दिन की समाप्ति भी करी. लेट्स नॉट फॉरगेट दैट रेसलिंग में भी हमें आज एक

0: कोविड मिला है। इस सब के बारे में तो शायद आपको बताएंगे, बट मैं आपको एक सरसरी नजर से लेकर चलती हूँ कि मेडल टेबल के अंदर जो हमारे मेडल्स आए हैं वो किस इवेंट में कितने कितने आए। आर्चरी के अंदर हमने पाए हैं टोल कुल मिलाकर 9 मेडल्स, जिसमें से 5 गोल्ड, 2 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज है। एथलेटिक्स में 1 गोल्ड, 9 सिल्वर, 14 ब्रॉन्ज। एक ऐसा ये स्पोर्ट रहा जिसमें सबसे ज्यादा मेडल्स भारत ने कमाए अपने लिए, 24 टोटल। बैडमिंटन में 1 ब्रॉन्ज आया, बॉक्सिंग में 3 गोल्ड और 3 ब्रॉन्ज। क्रिकेट में महिलाएं और पुरुष दोनों ने ही T20 क्रिकेट के अंदर 2 गोल्ड भारत को एशियन गेम्स में दिलवाया। गोल्फ में 1 गोल्ड, 1 सिल्वर। हॉकी में 2 गोल्ड, महिलाएं और पुरुष दोनों ने भारत को अब की बार गोल्ड मेडल दिलवाया। कबड्डी में 2 गोल्ड, कुराश में 1 ब्रॉन्ज, मिक्स मार्शल आर्ट में 1 ब्रॉन्ज, रोइंग में 1 ब्रॉन्ज, सेलिंग में 1 गोल्ड, सॉरी 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज, सेपक तक्रो में 1 ब्रॉन्ज, शूटिंग में कुल मिलाकर 15 मेडल, 3 गोल्ड, 8 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज।
1: जी, और आज 3 स्वर्ण पदक एक ही दिन में आए। सबसे पहले बात करेंगे तीरंदाजी की। कुमकुम अनिल मोहोद ने महिला रेकर व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। फाइनल में कुमकुम ने कोरिया की ओएनजीन को 5-6 के यानी 6-5 से कड़े मुकाबले में शिकस्त दी। और हॉकी में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने तो कमाल ही कर दिया, स्वर्ण पदक जीत लिया। यहाँ पर मलेशिया को 5-1 से शिकस्त देकर खिताब अपने नाम किया। महिलाओं ने भी खिताब अपने नाम किया, पुरुषों ने खिताब अपने नाम किया। यानी जिस तरह क्रिकेट में 2 पदक आए हैं गोल्ड, इसी तरह हॉकी में 2 गोल्ड आए हैं। कुश्ती में अमन सहरावत ने पुरुषों की फ्रीस्टाइल 57 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। फाइनल में अमन ने उत्तर कोरिया के हान चोंग सोंग को 11-7 से हराया। वहीं अंतिम पंघाल ने महिलाओं के 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता है। फाइनल में उन्होंने जापान की मोए क्योका को 1-9 से, उनसे जो मुकाबला था क्योका से, अंतिम पंघाल को 1-9 से हार का सामना करना पड़ा। कुश्ती में दीपक पुनिया ने भी पुरुषों की फ्रीस्टाइल 97 किलोग्राम में कांस्य पदक अपने नाम किया। यानी भारत के नजरिए से देखा जाए तो जब भारत के तमाम खेल खत्म हो गए, आज के दिन 3 स्वर्ण पदक बेहद महत्वपूर्ण है।
0: जी, और क्योंकि हम आपको मेडल टेबल में बता रहे थे तो थोड़ा आगे चलते कुछ और इवेंट्स जो बचे हुए हैं उसमें है सॉफ्ट टेनिस, जिसमें 1 ब्रॉन्ज आया। स्क्वॉश में हमने 2 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज कमाए हैं। टेबल टेनिस में 1 ब्रॉन्ज, वेट लिफ्टिंग में 1 सिल्वर, रेसलिंग में कुल मिलाकर 6 मेडल्स भारत ने कमाए, 2 गोल्ड, 2 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज, और वुशु में 1 सिल्वर भारत ने कमाया। तो इसलिए भारत ने अपना 2026 का एशियन गेम्स का सफर कुल मिलाकर 85 मेडल्स पर समाप्त किया, 21 गोल्ड। एंड होपफुली व्हेन टुमारो देयर इज एन इवेंट उज़्बेकिस्तान, क्योंकि अभी हमारे साथ 21 गोल्ड पर रिटायर्ड है। उज़्बेकिस्तान का भी एक और इवेंट बचता है कल इक्वेस्ट्रियन के अंदर, तो देखना होगा कि क्या इक्वेस्ट्रियन के अंदर उज़्बेकिस्तान कल गोल्ड अपने लिए ला पाता है कि नहीं। चांसेस उसके कैसे हैं, हाईली अनलाइकली कह रहे हैं लोग, लेकिन एक्सपर्ट्स खासतौर से, बट वी हैव टू सी टिल इट गेट्स ऑफिशियल। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर भारत को माना जाएगा शायद कि हम 4th स्थान पर ही बैठे।
1: होप कि हम 4th स्थान पर खत्म करेंगे, लेकिन हम उन खिलाड़ियों की भी बात, श्रोताओं तक बात पहुंचा कि जिन्होंने एक से ज्यादा भारत के लिए मेडल जीते। भारत की बात करें तो आर्चर कुमकुम मोहोत के खाते में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक आया, जबकि निशानेबाज नीरू ढांडा ने भी 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता है। जी हाँ, 3 पदक इन दोनों खिलाड़ियों ने जीते, दोनों संयुक्त रूप से टॉप पर है। नीरू ने निशानेबाजी ट्रैप व्यक्तिगत और मिश्रित टीम स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता, वहीं ट्रैप में महिलाओं की टीम स्पर्धा में सिल्वर मेडल हासिल किया। वहीं कुमकुम मोहोत ने रेकर व्यक्तिगत और टीम में गोल्ड मेडल जीता, जबकि मिश्रित टीम स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता। इसी तरह तीरंदाज तिरुमुरु मणिरत्नम ने तीसरे स्थान पर रहते हुए कंपाउंड पुरुष टीम और कंपाउंड मिश्रित टीम स्पर्धा में गोल्ड, जबकि कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। इसी तरह एथलीट विद्या रामराज ने 1 गोल्ड, 3 इसके अलावा सहित 3 पदक जीते, जबकि निशानेबाज रुद्रांश पाटिल ने 2 रजत पदक समेत 3 पदक जीते हैं। ये भारत के वो खिलाड़ी जिन्होंने एक से ज्यादा पदक जीते हैं। लेकिन अगले 1 घंटे बाद क्या कुछ और नया ताजा आता है और भारत का क्या कुछ ओवरऑल प्रदर्शन था, हम अगले 1 घंटे बाद आपको बताएंगे। फिलहाल मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी और साक्षी मांडवाल को ठीक 7:30 बजे तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।

0: ଅପହଞ୍ଚ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚେ ଆକାଶବାଣୀ, ଏଇ ତାର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟର କାହାଣୀ।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
2: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
3: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जनसेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना अन्नदाता के परिश्रम को संबल पेंशन से सुरक्षित उनका कर
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी
3: हाँ, हाँ।

0: ଆକାଶବାଣୀ ବାରିପଦା ଷ୍ଟୁଡିଓ ଘଡ଼ିରେ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି 8:45 ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ଶୁଣାଉଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, पिछले एक दशक में राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश और निरंतर सुधारों के माध्यम से भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारतीय न्याय संहिता का पूर्ण कार्यान्वयन भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में परिवर्तन लाएगा। आंध्र प्रदेश में श्री सिटी के एक निजी औद्योगिक इकाई में बॉयलर फटने से 4 श्रमिकों की मौत। एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी और क्रिकेट टीमों ने स्वर्ण पदक जीते। पहलवान अमन सहरावत, तीरंदाज कुमकुम मोहोत और गोल्फर प्रणवी उर्स ने भी स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत ने आज 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। 21 स्वर्ण सहित 85 पदकों के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश, बैंकिंग सुधार, बेहतर वितरण तंत्र और निरंतर सुधारों के संयोजन से पिछले एक दशक में भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। नई दिल्ली में आज 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने जीएसटी, दिवालियापन संहिता और 4 श्रम संहिताओं के माध्यम से राष्ट्रीय ढांचों को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 4 वर्षों में वैश्विक संकटों के बावजूद अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखा है।
2: रियल जीडीपी ग्रू 7.8% इन क्वार्टर 1 ऑफ FY।
3: वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद बढ़कर 7.8% हो गया। वहीं अगस्त 2026 में खुदरा महंगाई दर 4.82% रही। पहली तिमाही में चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 0.5% रहा।
2: इन क्वार्टर 1 ग्रॉस एनपीएस ऑफ बैंक्स आर एट मल्टी डिकेडनल लो।
1: अवसंरचना विकास पर वित्त मंत्री ने कहा कि इस वित्त वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में लगभग 61% का विस्तार हुआ है और 2014 से परिचालन में आने वाले हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है। उन्होंने ये भी बताया कि पीएम मुद्रा योजना के तहत 52 करोड़ से अधिक बिना गारंटी वाले ऋण स्वीकृत किए गए हैं। गृह और सहकारिता मंत्री

0: शाह ने कहा है कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी। श्री शाह ने आज भोपाल में राज्य स्तरीय गौ पालक सम्मेलन में ये बात कही।
1: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए, और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, FSL के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
0: श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक मामलों का निपटारा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा। गृहमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए पशुपालन से जुड़ी व्यवस्था विकसित कर रही है। इसमें गोबर से बायोगैस और जैविक खाद बनाने से लेकर दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने के प्रयास शामिल हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज भोपाल के भेल दशहरा मैदान में राज्य स्तरीय गोपालक सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने 11 जिलों के करीब 35,000 गोपालकों के इस सम्मेलन में गौशालाओं के लिए 101 करोड़ रुपए दिए। श्री शाह ने उज्जैन में 255 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले डेयरी प्लांट का वर्चुअली भूमि पूजन भी किया। श्री शाह ने कहा कि भोपाल में 12 करोड़ की लागत से केंद्रीय प्रयोगशाला बनाई गई है और शिवपुरी में मिनी डेयरी प्लांट बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें गोवंश और भैंस की नस्ल सुधार का काम होगा। गोपालक सम्मेलन से पहले केंद्रीय मंत्री ने भेल दशहरा मैदान में ही नए आपराधिक कानूनों पर मध्य प्रदेश पुलिस की प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि अंग्रेजों के बनाए कानून अपनी सरकार और प्रशासन को बचाने के लिए थे, लेकिन अब नए कानून नागरिकों के सम्मान, संपत्ति और शरीर की रक्षा के लिए हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: सरकार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कुख्यात सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से सफलतापूर्वक भारत वापस लाई है। देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की इस उपलब्धि पर श्री अमित शाह ने कहा कि नवप्रीत सिंह नवाब विर्क की फर्जी पहचान से तुर्की की नागरिकता हासिल करके अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करता था। गृहमंत्री ने बताया कि नवप्रीत सिंह को नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराधों से जुड़े कई मामलों में जेल भेजा गया है। श्री शाह ने कहा कि 2019 से इस वर्ष अगस्त तक 36 देशों के कुल 288 भगोड़ों को भारत वापस लाया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आंध्र प्रदेश के सत्यवेदु मंडल की श्री सिटी स्थित एक निजी औद्योगिक इकाई में आज बॉयलर फटने से 4 श्रमिकों की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से बात की और आवश्यक उपाय करने तथा शोक संतप्त परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया। राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायल श्रमिक के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान विभिन्न विषयों पर सार्थक बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि बैठक में लोगों की बेहतर सेवा करने और जन कल्याण के लिए और अधिक प्रभावी ढंग से काम करने पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको बता रहे हैं कि इस सोच को नए संसद भवन और सेंट्रल विस्टा के रूप में किस तरह साकार किया गया है।
4: सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना भारत के नई दिल्ली स्थित केंद्रीय प्रशासनिक और नागरिक

0: क्षेत्र को नए रूप में विकसित करने की एक वृहद परियोजना है। इसके प्रमुख घटकों में नया संसद भवन, कर्तव्य पथ और एकीकृत केंद्रीय सचिवालय शामिल हैं। इसका उद्देश्य अत्यधिक कार्यात्मक और उद्देश्यपूर्ण बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराकर प्रशासनिक दक्षता तथा कार्यकुशलता को और मजबूत करना है। केंद्र सरकार के सभी 51 मंत्रालयों को 10 एकीकृत केंद्रीय सचिवालय भवनों में एक साथ लाने से कर्मचारियों, दस्तावेजों और संसाधनों की आवाजाही सुगम होगी। नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। नए संसद भवन के निर्माण में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के तहत देश के विभिन्न राज्यों से सामग्री मंगाई गई थी। नए संसद भवन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह केवल एक भवन नहीं है बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है।
1: ये नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। ये नया भवन विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि होते हुए देखेगा। ये नया भवन नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का भी आदर्श है।
0: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र सुधांशु रघुवंशी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि नए संसद भवन में देश की कला, संस्कृति और विविधता को दर्शाया गया है।
2: भारत की नई संसद सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत उसने भारतीय संस्कृति को पुनः एकमेक करने का प्रयास किया है।
0: पर्यावरण संतुलन सेंट्रल विस्टा मास्टर प्लान के केंद्र में है। इन परियोजनाओं के परिणाम स्वरूप हरित क्षेत्र में समग्र रूप से वृद्धि होगी। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में भारत रूस संबंधों पर परामर्श समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, संपर्क, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संबंधों सहित भारत और रूस के बहुआयामी सहयोग के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख किया। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने यूक्रेन संघर्ष समाप्त करने के लिए संवाद और कूटनीति के प्रति भारत के सक्रिय समर्थन का भी उल्लेख किया। यूक्रेन ने रूस के साथ संभावित युद्ध विराम के लिए भारत के प्रस्ताव को अब तक मिले प्राप्त 4 प्रस्तावों में सबसे व्यापक बताया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा ने कहा कि यूक्रेन ऊर्जा अवसंरचना और काला सागर को शामिल करने वाले युद्ध विराम प्रस्ताव पर विचार करने के लिए तैयार है। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार यूक्रेन संघर्ष के पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए बहुत अच्छे हैं। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले में 5 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दूतावास ने MT काजिमा 3 पर सवार 5 भारतीयों के बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों से समन्वय किया। दुबई के युवराज हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने आज भारतीय पायलट स्मित के साहस की सराहना की। अस्पताल में कैप्टन से मुलाकात के दौरान उन्होंने संभावित बड़े हादसे को टालने के लिए स्मित की प्रशंसा की। बुधवार को दुबई से तलवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान के कॉकपिट में कैप्टन स्मित हमले में गंभीर रूप से घायल हुए थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डीजल के निर्यात पर रोक लगाने की संभावना से इंकार किया है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय देशों ने बाजार में ईंधन की उपलब्धता बढ़ाने का आश्वासन दिया है, इससे ऊर्जा की कीमतें कम करने में मदद मिलेगी। अमेरिका ने 50 देशों के नागरिकों के लिए पर्यटक और कारोबारी वीजा पर $20,000 तक की जमानत राशि तय की है। इस व्यवस्था से भारत को छूट दी गई है, जबकि बांग्लादेश, भूटान और नेपाल सहित दक्षिण एशिया के कई देश इसमें शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
3: ये आकाशवाणी है। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक हासिल किए। और अधिक जानकारी दे रहे हैं प्रशांत कुमार।
5: भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को हराकर स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस जीत के साथ ही भारत ने 2028 ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। कुश्ती के 57 किलोग्राम पुरुष वर्ग में अमन सहरावत ने स्वर्ण और 97 किलोग्राम वर्ग में दीपक पूनिया ने कांस्य पदक जीता। अंतिम पंघाल ने महिला 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक हासिल किया।

0: उधर गोल्फ में प्रणवी उर्स ने महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जबकि टीम स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। महिला रिकर्व तीरंदाजी में कुमकुम मोहोद ने स्वर्ण और नीरज चौहान ने पुरुष रिकर्व स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 21 स्वर्ण 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है।
1: कर्नाटक में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए एक उच्चस्तरीय केंद्रीय दल आज बेंगलुरु पहुंचा। कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव अजीत कुमार साहू के नेतृत्व में ये दल 6 अक्टूबर तक सूखा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगा। मौसम विभाग ने कल केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, केरलम में कल तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश हो सकती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, पिछले एक दशक में राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश और निरंतर सुधारों के माध्यम से भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, भारतीय न्याय संहिता का पूर्ण कार्यान्वयन भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में परिवर्तन लाएगा। आंध्र प्रदेश में श्री सिटी के एक निजी औद्योगिक इकाई में बॉयलर फटने से 4 श्रमिकों की मौत। एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी और क्रिकेट टीम ने स्वर्ण पदक जीते। पहलवान अमन सहरावत, तीरंदाज कुमकुम मोहोड और गोल्फर प्रणवी उर्स ने भी स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत ने आज 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। 21 स्वर्ण सहित 85 पदकों के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

दौर के सदाबहार गानों की महफिल। दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
0: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

और यह है कार्यक्रम की अंतिम पेशकश अनामिका फिल्म से। आशा भोसले ने इस गीत को गाया है, लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत तैयार किया है आरडी बर्मन ने।

इस गीत के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आज का सफर आपने तय किया प्रीति मिश्रा के साथ, अब दीजिए इजाजत।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन की रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में पल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

ज्योति प्रकाश दत्ता यानी जेपी दत्ता का जन्म 3 अक्टूबर 1949 को एक पंजाबी परिवार में हुआ। आपके पिता श्री ओपी दत्ता फिल्म निर्देशक और कहानीकार थे, यानी जेपी दत्ता को फिल्मी माहौल विरासत में मिला। तो ये तो शायद उनके बचपन में ही तय हो गया होगा कि उन्हें फिल्मों में ही अपना करियर बनाना है।

उन्हें 1998 में नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन फ्रॉम प्रेसिडेंट फिल्म बॉर्डर के लिए सम्मानित किया गया।

उनके परिवारजनों और तमाम देशवासियों के बीच ये गीत बहुत लोकप्रिय है। जेपी दत्ता द्वारा बनाई गई, निर्देशित की गई वॉर फिल्में हैं बॉर्डर, LOC और बॉर्डर 2। जेपी दत्ता ने बंटवारा, यतीम और गुलामी जैसी जो फिल्में बनाई वो भी लीक से हटकर फिल्में रही हैं। जेपी दत्ता द्वारा बनाई फिल्म रेफ्यूजी, इस फिल्म से अभिषेक बच्चन और करीना कपूर ने अपना करियर शुरू किया। रेफ्यूजी में सीमा विवाद को जेपी दत्ता ने बहुत ही खूबसूरती के साथ अपनी फिल्म रेफ्यूजी में पिरो दिया और दर्शकों के सामने एक अलग तरह की फिल्म के रूप में पेश किया।

0: फिल्म निर्माता और निर्देशक जेपी दत्ता पर केंद्रित रमेश गोखले द्वारा प्रस्तुत आज के इस कार्यक्रम में आलेख और स्वर अमरकांत का था। अब नमस्ते।
1: आज के फनकार।

0: Hapis Aytun'da Goya.
1: बीसवें एशियाई खेलों की स्पर्धाएं आज तकरीबन समाप्त हो गई। दो सप्ताह का खेल मेला, शानदार जानदार प्रदर्शन की खुशी तो कहीं चूक जाने का गम, या फिर अपने तई हर संभव प्रयास ना कर पाने का मलाल, यही तो खेल है। खेलों का रोमांच है, खेलों का जुनून है, उनका जादू है। खेल आपको खुद को साबित करने का दूसरा मौका भी जरूर देता है, किसी दूसरी जगह किसी दूसरे समय। एक और बड़ी बात, ऐसे खेल मेले दूर दराज के खिलाड़ियों से मिलने, सोच को साझा करने, आत्मीयता जगाने का भी अवसर देते हैं और अपनी संस्कृति को दूसरे तक पहुंचाने का भी। आईची नगोया एशियाई खेलों पर अपनी दैनिक हाइलाइट्स के साथ उपस्थित हैं हम। नमस्कार, मेरा नाम है अनुपम पाठक। आज की हेडलाइंस। पुरुष हॉकी में भी स्वर्ण पदक आया और 2028 ओलंपिक का टिकट भी। क्रिकेट में भारत की बादशाहत बरकरार, बना चैंपियन। कुश्ती में आज तीनों रंग के एक एक पदक आए। गोल्फ में हुआ कमाल, प्रणवी ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा, टीम रजत भी। आर्चरी में कुमकुम का कमाल, महिला स्वर्ण पदक पे निशाना लगाया। पुरुष हॉकी में भारत ने आज गजब का फाइनल खेला मलेशिया के विरुद्ध, 5-1 से धमाकेदार जीत, और एशियन गेम्स के इतिहास में पहली बार बैक टू बैक गोल्ड मेडल पाया, और पहली बार महिला और पुरुष दोनों गोल्ड मेडल भारत ने एक ही गेम में जीते। लेकिन पहले बात करते हैं क्रिकेट की। क्रिकेट में चिर प्रतिद्वंदी थे आमने सामने भारत और पाकिस्तान। पिछले काफी समय से भारत इस प्रतिद्वंदिता में लगातार हैवीवेट बना रहा है और आज भी कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ। भारत की जीत स्वर्ण पदक की पूरी आशा थी जो खिलाड़ियों ने आसानी से पूरी कर दी। पहले बैटिंग कर 200 प्लस का स्कोर खड़ा करके मैच की मीमांसा मेघा से।
2: इंडिया हैव कंप्लीटेड अ गोल्डन डबल इन क्रिकेट एट द एशियन गेम्स। द इंडियन मेंस टीम डिफीटेड पाकिस्तान बाय 19 रन्स इन द फाइनल टू सक्सेसफुली डिफेंड देयर एशियन गेम्स टाइटल। बैटिंग फर्स्ट, इंडिया पोस्टेड एन इंपोजिंग 211 फॉर 6। अभिषेक शर्मा लेड द चार्ज विद अ ब्लिस्टरिंग 61 ऑफ 28 डिलीवरीज इंक्लूडिंग 7 सिक्सेस एंड 3 फोर्स। ही ब्रॉट अप half century in only 20 balls. Tilak Varma provided the finishing flourish with an unbeaten 51 of 22 balls, helping India cross the 200 mark. Pakistan's streak

0: got off to a difficult start as India spinners made early inroads. Akshar Patel picked up two important wickets, leaving Pakistan struggling at 76 for 3 at the halfway stage. Hasan Nawaz kept Pakistan's hopes alive with a fighting 96, but India held their nerve to restrict Pakistan to 192 for 6. This victory completes India's cricket double at the Games. The women's team had earlier defeated Sri Lanka by a commanding 147 runs in the final. Two teams, two gold medals, and another successful Asian Games campaign for Indian cricket.
1: हॉकी में कल हमने महिलाओं का हुनर देखा तो आज पुरुषों की बारी थी। हाँ, रणनीति कल से अलग थी, सिर्फ रक्षण नहीं, आक्रमण से भरपूर टीम पूरा चढ़कर खेली और दिखाया कि हमारी जो आज की नीति है, आक्रमण करो गोल कमाओ। एक परफेक्ट मैच खेला भारत ने आज, खासकर हाफ टाइम के बाद के दोनों क्वार्टर्स में तो भारतीय हॉकी की धनक पूरे मैदान में गूंज रही थी। हुटर बजा तो वो भारत के इन एशियन गेम्स में 5-1 से अपने 5वें स्वर्ण पदक का जयघोष था। पहले क्वार्टर की शुरुआत संयत तरीके से हुई, एक दूसरे को आंकने में ज्यादा मूव नहीं बने। खेल ने रंग पकड़ा करीब 10 मिनट के बाद पहला पेनल्टी कॉर्नर रोक दिया गया। फिर हरमन ने दिखाया कि क्यों उन्हें पेनल्टी कॉर्नर्स और ड्रैग फ्लिक का किंग कहा जाता है, लेकिन हॉकी प्रेमी इस लीड का आनंद ले पाते तब तक प्रत्याक्रमण हुआ मलेशिया का। शैलो सिल्वेरियस ने शानदार फील्ड गोल कर दिया, बिल्कुल हाफ वॉली स्टाइल में उन्होंने शॉट मारा। सेकेंड क्वार्टर में मलेशिया ने हमले बनाए लेकिन डिफेंस बहुत अच्छा किया भारत ने। दो पेनल्टी कॉर्नर भी उन्हें मिले लेकिन रक्षण ने बेकार कर दिए। फिर भारत के हमले हुए, पेनल्टी कॉर्नर मिला, इस बार जुगराज ने लिया। उन्होंने अपनी ड्रैग फ्लिक की स्पीड दिखाई, दाहिनी ओर के गोल पोस्ट को खड़का दिया। हाफ टाइम का स्कोर 2-1। तीसरे क्वार्टर से भारतीय टीम पूरे रंग में आ गई और मलेशिया को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। एक के बाद एक मूव बनाए, हरमन का एक पुश मनदीप को गया और उनका शॉट मलेशिया के डिफेंडर के शरीर से लगकर गोल के सामने और पेनल्टी स्ट्रोक मिला। हार्दिक ने गोलकीपर को छकाता हुआ सन्नाटेदार शॉट लगाया और भारत 3-1 से आगे। अब भारतीय फैंस को थोड़ी राहत की सांस मिली क्योंकि हॉकी में एक गोल का अंतर तो आप जानते हैं, आप चैन से नहीं बैठ सकते। फोर्थ क्वार्टर में मलेशिया के पास एक ही च्वाइस बची थी, ऑल आउट अटैक पर जाने की। शुरुआत उन्होंने ऐसे ही की लेकिन भारतीय रक्षण पूरी तरह मजबूत और अभेद्य था और बहुत जल्द ही भारतीय ही पूरे मैदान पर छा गए। एक के बाद एक आक्रमण करते हुए मलेशिया मैच में दिखा ही नहीं, एक बार तो 4 पेनल्टी कॉर्नर्स एक के बाद एक मिले। फिर एक भारतीय हमले में अभिषेक ने एक शानदार दौड़ लगाई, गेंद के साथ बिल्कुल बेस लाइन के पैरेलल और उसके बाद पास भेजा गोल के सामने खड़े हुए शिलानंद लागरा को, जिन्होंने कोई गलती नहीं की और भारत 4-1 से आगे। स्वर्ण पदक तो बिल्कुल पक्का सा हो गया लेकिन हमले जारी रहे और पेनल्टी कॉर्नर आया तो हरमन ने डी पर इस बार सिर्फ 3 खिलाड़ी रखे, समय उनको पूरा मिला और सीधा गोली की तरह जन्नाटेदार शॉट लगाया उन्होंने, स्कोर को कर दिया 5-1। इत्तेफाक से ये वो समय था जब भारतीय इन गेम्स में अंतिम बार किसी मैदान में थे, यानी खेलों से शानदार विदाई ली 5-1 से सुनहरी जीत के साथ और ओलंपिक खेल 2028 के प्रवेश टिकट के साथ। जय हो भारतीय हॉकी की। गोल्फ में कल ही प्रणवी ने लीड बना ली थी, पहले स्थान पर आ गई थी। आज 10वें होल से उन्होंने शुरुआत की और संयम, एकाग्रता, सटीक स्ट्रोक्स और खुद पर पूरा काबू रखते हुए अपने लीड को बनाए रखा और इतिहास रच डाला। एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर प्रणवी अर्श के अर्श तक पहुँचने की कहानी साक्षी मंडवाल से।
2: प्रणवी ओर्स क्रिएटेड हिस्ट्री बाय क्लिंचिंग द गोल्ड फॉर इंडिया एट द एशियन गेम्स 2026। प्रणवी, Aditi and Deeksha also claimed the silver medal in the women's team event in golf. No Indian has won an individual gold in golf since Shiv Kapoor in 2002. The 24-year-old long wait finally came to an end with Pranavi Ur getting the gold medal for India at the Asian Games 2026. Pranavi Ur's held her nerves to win the women's individual golf gold medal, finishing the 4-round competition at 15 under par. She made par on the final hole, as did Singapore's Shannon Tan and China's Jin Ruoning, who finished on 14 under to share the silver medal. Aditi Ashok and Deeksha Dagar celebrated by dousing Pranavi with water on the course after a memorable victory. Let's remind all of you once again that Pranavi Urs, Aditi Ashok and Deeksha Dagar also claimed the silver medal in the women's team event in golf today.
1: लड़कियों का जादू तीरंदाजी में भी बना रहा, वो कथा तो सबको पता है, अर्जुन और मछली की आंख की। अमरावती महाराष्ट्र की 17 बरस की कुमकुम

0: को भी लगता है बस टारगेट बोर्ड का सेंटर ही दिख रहा था। आज तीसरा पदक, वो भी व्यक्तिगत स्वर्ण पदक। कुमकुम के सनसनाते तीरों का बयान कर रही हैं मेघा।
1: इंडियन आर्चरी हैज साइंड ऑफ फ्रॉम द एशियन गेम्स विद अनदर हिस्टोरिक परफॉर्मेंस एंड एट द सेंटर ऑफ इट इज 17 ईयर ओल्ड कुमकुम अनिल मोहन। कुमकुम क्लिंच्ड द गोल्ड इन द वुमेन्स इंडिविजुअल रिकर्व इवेंट, डिफीटिंग साउथ कोरियाज ओयजिन इन अ ड्रामेटिक शूट ऑफ। विद अ स्कोर टाइड एट 5 ऑल, द इंडियन टीनेजर प्रोड्यूस्ड अ परफेक्ट 10 व्हाइल आवर ओपोनेंट मैनेज्ड एन 8। अर्लियर कुमकुम हैड डिफीटेड रेनिंग गोल्ड चैंपियन कैंग चायोंग in the quarterfinals and China's Zhu Xingyi in the semifinals. Her victory makes her the first Indian archer to win an individual recurve gold medal at the Asian Games. She's also secured an individual recurve quota place for India at the Los Angeles 2028 Olympics. And there was more to celebrate in the men's competition. Neeraj Chauhan defeated compatriot Dheeraj 6-4 in an all-Indian bronze medal contest. Neeraj fought back from 4-2 down to secure his place on the podium. For Kumkum, this was her third medal of the games, following gold in women's recurve team event and silver in mixed team event. India's archery contingent finishes with 9 medals, 5 gold, 2 silver and 2 bronze, a campaign that underlines India's growing strength across both recurve and compound category.
0: पहलवानों ने भी भारतीय पदकों का ढेर बड़ा करने का बीड़ा उठा रखा था। आज 5 पहलवान थे, 2 रेसलर फाइनल में पहुंचे तो 2 कांस्य पदक के मैट पर। दाव पेंचों का सारा विवरण शाहिद आजमी से।
2: एशियन गेम्स 2026 में भारतीय कुश्ती का अभियान शानदार अंदाज में समाप्त हुआ। भारत ने कुश्ती में कुल 6 पदक अपने नाम किए, जिनमें 2 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल है। इनमें सबसे बड़ी उपलब्धि रही अमन सहरावत की, जिन्होंने पुरुषों के फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया। फाइनल में अमन का सामना उत्तर कोरिया के हान चोंग सोंग से हुआ। अमन ने मुकाबले की शुरुआत शानदार अंदाज में की और 4-1 की बढ़त बना ली। हालांकि चोंग सोंग ने वापसी करते हुए स्कोर 7-6 कर दिया। मुकाबले के आखिरी मिनट में रोमांच अपने चरम पर था। दबाव के इस दौर में अमन ने बेहतरीन टेकडाउन लगाकर 4 अंक हासिल किए और स्कोर 11-7 कर दिया। इसके बाद उन्होंने बढ़त कायम रखी और भारत के लिए स्वर्ण पदक सुनिश्चित कर दिया। पूरे टूर्नामेंट में अमन का प्रदर्शन प्रभावशाली रहा। उन्होंने जापान के यामातो ओगावा को 20-9 और कजाकिस्तान के नूरदानात एतानो को 12-1 से हराया। सेमीफाइनल में 2-6 से पिछड़ने के बाद ताजिकिस्तान के एयाल बेलोबेउस्की के खिलाफ शानदार वापसी करते हुए 14-8 से जीत दर्ज की। हांगझोउ एशियन गेम्स में कांस्य पदक जीतने वाले अमन ने इस बार अपने पदक का रंग बदल कर स्वर्ण कर दिया। वहीं महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में अंतिम पंखाल ने रजत पदक जीता। फाइनल में उन्हें जापान की मोए क्योका से 1-9 से हार का सामना करना पड़ा। अंतिम ने क्वार्टर फाइनल में उज्बेकिस्तान की साकिब जमाल सिनोवा को 8-0 से और सेमीफाइनल में चीन की जिन जांग को 6-1 से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। इस रजत के साथ अंतिम ने एशियन गेम्स में अपना दूसरा पदक हासिल कर लिया। आपको बता दें हांगझोउ में उन्होंने कांस्य पदक जीता था। उधर पुरुषों के 97 किलोग्राम फ्री स्टाइल में दीपक पुनिया ने कांस्य पदक अपने नाम किया। कांस्य पदक मुकाबले में दीपक ने मंगोलिया के गखुया गनबातार को 2-1 से हराया। सेमीफाइनल में 8-9 की करीबी हार के बाद दीपक ने शानदार वापसी की और लगातार दूसरे एशियन गेम्स में पदक जीतने का सिलसिला कायम रखा। हालांकि 74 किलोग्राम वर्ग में सागर जगलान कांस्य पदक से चूक गए। उन्हें कजाकिस्तान के नुरकोजा कैपानो ने 5-0 से हराया और सागर चौथे स्थान पर रहे। इससे पहले रेपेचाज में उन्होंने उज्बेकिस्तान के ओलंपिक चैंपियन रजामबेक जमालो को 7-3 से हराकर कांस्य पदक मुकाबले में जगह बनाई थी। महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में मनीषा क्वार्टर फाइनल तक पहुंची, जहां उन्हें जापान की अकारी फुजिनामी से 0-3 से हार का सामना करना पड़ा। इस तरह भारतीय कुश्ती ने कुल 6 पदक के साथ अपना अभियान पूरा किया। आपको बता दें पिछले एशियन गेम्स में भारतीय पहलवानों ने 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज समेत कुल 6 पदक जीते थे।
0: वॉलीबॉल में 5वें छठे स्थान के लिए भारत की भिड़ंत थी थाईलैंड से। कड़ा मुकाबला हुआ, 5 सेट तक चला। सेट पॉइंट्स की कहानी प्रेरणा शर्मा से।
1: एशियन गेम्स 2026 में भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम को 5वें स्थान के मुकाबले में थाईलैंड के खिलाफ 2-3 से हार का सामना करना पड़ा। करीब 1 घंटे 56 मिनट तक चले इस 5 सेट के रोमांचक मुकाबले में थाईलैंड ने निर्णायक सेट 17-15 से जीतकर 5वां स्थान हासिल किया, जबकि भारत छठे स्थान पर रहा। मुकाबले की शुरुआत थाईलैंड ने बेहतर तरीके से की। उसने पहला सेट 25-19 से अपने नाम किया। भारत ने हालांकि दूसरे सेट में तुरंत वापसी की और 25-17 से जीत दर्ज करते हुए स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। तीसरे सेट में थाईलैंड ने फिर बढ़त हासिल की और 25-21 से सेट जीतकर मुकाबले में 2-1 की बढ़त बना ली। भारत के सामने अब मुकाबला बचाने की चुनौती थी और

0: ने चौथे सेट में एक बार फिर दमदार वापसी की। भारत ने यह सेट 25-17 से जीता और मुकाबला 2-2 की बराबरी पर पहुंच गया। इसके बाद फैसला पांचवे और निर्णायक सेट में होना था। यहां दोनों टीमों के बीच एक एक अंक के लिए कड़ा संघर्ष देखने को मिला। भारत के पास मैच पॉइंट के मौके भी आए, लेकिन टीम उन्हें जीत में बदल नहीं सकी। थाईलैंड ने आखिरी पलों में धैर्य बनाए रखा और निर्णायक सेट 17-15 से अपने नाम कर लिया।
1: रग्बी सेवन में भी महिलाएं क्लासिफिकेशन रैंक के लिए खेल रही थी। दो मैच खेले, दोनों का विवरण साक्षी मंडवाल से।
2: इंडियन वुमेन डिफीटेड सिंगापुर फॉर द 5th to 8th प्लेसिंग 22-5। इंडिया वन द फर्स्ट हाफ कन्विंसिंगली एंड कमांडिंगली बाय डिफीटिंग सिंगापुर 17-5 एंड ऑल्सो ओन्ड द सेकंड हाफ बाय कम्प्लीटली डिमोलिशिंग सिंगापुर 5-0, thereby winning the match in straight games 2-0. The Indian women's match in rugby sevens for the 5th-6th placing later happened with Kazakhstan, in which Kazakhstan easily defeated India 20-0. Both the halves went to Kazakhstan with the scoreline reading 10-0, 10-0, and finally the Indian women finished on the 6th place.
1: ताइक्वांडो में दो लड़कियां थीं, कल से संघर्ष में जुटी हुई कशिश मलिक और दूसरी ज्योति यादव। पदक की उम्मीद तो कम ही थी, लेकिन संघर्ष की उम्मीद जरूर थी। हुआ क्या, जानते हैं साक्षी मंडवाल से।
2: कशिश मलिक बोर्ड आउट ऑफ द वुमेन्स 56 kg राउंड ऑफ 16 इवेंट एट द एशियन गेम्स 2026 इन ताइक्वांडो। शी वाज डिफीटेड बाय किम यूजन ऑफ साउथ कोरिया इन दिस राउंड। इन द वुमेन्स 67 kg राउंड ऑफ 16 इन ताइक्वांडो, ज्योति यादव लॉस्ट टू कैनेला 0-2। शी वाज दस नॉक्ड आउट एंड India's campaign in the sport ended with this loss.
1: सेलिंग में भारत ने 3 पदक पाए हैं। आज गर्ल्स डिंगी में माही वर्मा थी। माही की नाव कितना भागी, जानते हैं मेघा से।
3: इन सेलिंग 16-year-old माही वर्मा फिनिश्ड 6th ओवरऑल इन द गर्ल्स डिंगी इवेंट एज अ कंपटीशन कंक्लूडेड टुडे। माही कंप्लीटेड द 12 रेस ओपनिंग सीरीज विद 75 टोटल पॉइंट्स एंड 57 नेट पॉइंट्स। शी फिनिश्ड 8th इन ओपनिंग सीरीज रेस 12।
1: और अब भारत के लिहाज से पदक तालिका की फाइनल स्थिति।
3: Courtesy of a late search that saw them add 9 medals, including 5 gold, India signed off the day in 4th place with 85 medals, 21 gold, 27 silver and 37 bronze. India and Uzbekistan at the moment stand level on 21 gold medals, but India are on the 4th place thanks to their higher silver medal count. China finish on top of the table, followed by host Japan and South Korea.
1: आज सही अवसर है भारत को मिले पदकों की स्थिति पर एक विहंगम दृष्टि डालने का। कहीं उम्मीदें पूरी हुई, कहीं उम्मीद से कम रहे, तो कहीं उम्मीद से बढ़कर आए। भारतीय पदकों की विवेचना मेघा से।
3: बियॉन्ड द मेडल्स एंड द फाइनल स्टैंडिंग्स, वन ऑफ द बिगेस्ट पॉजिटिव्स फॉर इंडिया एट दिस एशियन गेम्स हैज बीन द इमर्जेंस ऑफ अ न्यू जनरेशन। ऑफ द 310 एथलीट्स मेकिंग देयर एशियन गेम्स डेब्यू, 83 हैव वन मेडल्स, 43 वुमेन एंड 40 मेन। दैट मींस मोर देन वन इन एवरी 4 इंडियन डेब्यूटेंट हैज रिटर्न्ड विद अ मेडल। बिटवीन देम दीस फर्स्ट टाइमर्स हैव कंट्रीब्यूटेड 41 मेडल्स across 12 sports, 14 gold, 12 silver and 15 bronze. And several performances have broken new ground for India. Suchika Tharyal won India's first ever Asian Games medal in mixed martial arts, taking bronze in the women's traditional 60 kg category. Jay Meena's men's singles bronze gave India its first ever medal in soft tennis. Shooting produced several breakthroughs as well. India won its first ever women's team and mixed team medals in skeet, while Suruchi Singh and Kamal Jeet Singh struck gold with an Asian Games record in the 10-meter air pistol mixed team. Neeru Dhanda and Kanan Chennai added another first, winning India's maiden mixed trap gold with an Asian Games record in the final. There were significant firsts elsewhere as well. Satnam Singh and Salman Khan delivered India's first ever Asian Games medal in the men's double sculls, while Baranika Alangova's bronze was India's first ever Asian Games medal in pole vault. In squash, Anahat Singh became the first Indian woman to reach the Asian Games singles final, eventually taking silver. And Indian archery reached another landmark. Ankita Bhakat, Kumkum Mohod and Kirti Sharma won India's first women's recurve team gold at the Asian Games. Kumkum followed it up today with individual recurve gold, becoming the first Indian archer to win an individual recurve title at the Asian Games. There were breakthroughs in sailing and boxing as well. Netra Kumaran claimed bronze in women's dinghy, while Lovlina Borgohain delivered India's first Asian Games gold in the women's 75 kg box

0: 1993, Netra's bronze was a maiden Asian Games medal in a fourth appearance. There were milestones beyond first. Mirabai Chanu's silver ended India's 28-year wait for an Asian Games medal in weightlifting. Savan Barwal brought India its first men's marathon medal in 44 years. And the women's hockey team reclaimed Asian Games gold after a 44-year wait.
1: करीब दो सप्ताह तक एशिया की सर्वश्रेष्ठ खेल प्रतिभाएं आईची नगोया में खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन की नई कहानियां रचने में लगी रहीं, बेहतर से और बेहतर होने की कोशिश करती रहीं। जो नहीं जीत पाए उनके लिए उदास होने का समय तो हो सकता है, लेकिन निराश होने का नहीं, क्योंकि खेलों का संदेश ही यही है, कल आप फिर ऊपर आ सकते हैं। और फिर विशाल एशिया की बहुरंगी संस्कृतियों का मिलन स्थल भी तो था ये। भारत ने अपनी बहुआयामी सांस्कृतिक छाप भी जरूर ही छोड़ी। अब कल इन खेलों के अवसान का दिवस है। नगोया के पालोमा मिजुहो पार्क स्टेडियम में भव्य रंगारंग समापन समारोह होगा, लेकिन ये खेल आंदोलन तो शाश्वत है, चलता ही रहेगा। खेल ज्योति विदा लेगी। खेलों को सांकेतिक रूप से दोहा, जो 2030 खेलों का आयोजक है, उसे हैंडओवर किया जाएगा। जापान खासकर आईची नगोया की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा को दिखाते हुए कल्चरल प्रोग्राम होंगे। समापन उद्घोष होगा और सारे खिलाड़ी एक मेक होते हुए एक दूसरे को गलबहियां डालकर विदा देंगे, चमकती आंखों में भविष्य के प्रदर्शन के सुनहरे सपनों के साथ। समापन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी 2 स्वर्ण और 1 रजत जीतने वाली शूटर नीरू ढांडा, जिन्हें खास तौर पर फिर जापान भेजा जा रहा है भारतीय दल का ध्वजवाहक बनने। तो उम्मीद करते हैं आपने आकाशवाणी पर हर दिन हमारे इस कार्यक्रम का आनंद लिया होगा, पसंद किया होगा। कल इस श्रृंखला के अंतिम कार्यक्रम के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक मुझे अनुपम पाठक को आज्ञा दें, शुभ रात्रि। एडिटर विशाल कुमार और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शाहनवाज खान।
2: एशियन गेम्स 2026 आईटी नगोया।

0: ଏକକ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଗୀତ ଆଜି ଏ କ୍ରମରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବିଜୟପଥ ଆକାଶବାଣୀ ବାରିପଦା ଷ୍ଟୁଡିଓ ଘଡ଼ିରେ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ 11:00 ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ଶୁଣାଉଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश, बैंकिंग सुधार, बेहतर वितरण तंत्र और निरंतर सुधारों के संयोजन से पिछले एक दशक में भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। नई दिल्ली में आज 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने जीएसटी, दिवालियापन संहिता और चार श्रम संहिताओं के माध्यम से राष्ट्रीय ढांचों को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 4 वर्षों में वैश्विक संकटों के बावजूद अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखा है।
2: रियल जीडीपी ग्रू 7.8% इन क्वार्टर 1 ऑफ FY।
3: वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद बढ़कर 7.8% हो गया। वहीं अगस्त 2026 में खुदरा महंगाई दर 4.82% रही। पहली तिमाही में चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 0.5% रहा। बैंकों का ग्रॉस एनपीए कई दशकों के निचले स्तर पर है और विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 766 अरब डॉलर है।
2: एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एट अबाउट 766 बिलियन US डॉलर।
1: संरचना विकास पर वित्त मंत्री ने कहा कि इस वित्त वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक निर्धारित किया गया है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी। श्री शाह ने आज भोपाल में राज्य स्तरीय गौपालक सम्मेलन में ये बात कही।
4: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एफएसएल के प्रावधान और कई आधुनिक।

श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक मामलों का निपटारा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा। गृहमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए पशुपालन से जुड़ी व्यवस्था विकसित कर रही है। इसमें गोबर से बायोगैस और जैविक खाद बनाने से लेकर दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने के प्रयास शामिल हैं। सरकार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कुख्यात सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से सफलतापूर्वक भारत वापस लाई है। गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि नवप्रीत सिंह को नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराधों से जुड़े कई मामलों में जेल भेजा गया है। श्री शाह ने कहा कि 2019 से इस वर्ष अगस्त तक 36 देशों से कुल 288 भगौड़ों को भारत वापस लाया गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में भारत रूस संबंधों पर परामर्श समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में डॉ जयशंकर ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, संपर्क, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संबंधों सहित भारत और रूस के बहुआयामी सहयोग के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख किया। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने यूक्रेन संघर्ष समाप्त करने के लिए संवाद और कूटनीति के प्रति भारत के सक्रिय समर्थन का भी

0: उल्लेख किया। अमेरिका ने 50 देशों के नागरिकों के लिए पर्यटक और कारोबारी वीजा पर $20,000 तक की जमानत राशि तय की है। इस व्यवस्था से भारत को छूट दी गई है, जबकि बांग्लादेश, भूटान और नेपाल सहित दक्षिण एशिया के कई देश इसमें शामिल हैं। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक हासिल किए। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को हराकर स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस जीत के साथ ही भारत ने 2028 ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी रे संवाद सुनिले रिले करी सुनाइलु आकाशवाणी दिल्ली रो आकाशवाणी बारिपदा स्टूडियो घड़ी रे समय वर्तमान राति 11:05। शुणन्तु आसन्ताकाली आम केन्द्ररु प्रचार हेबाकु थिबा कार्यक्रम सम्पर्करे सूचना। आसन्ताकाली सकाळ 6:05 शुणिबे भक्ति संगीतर कार्यक्रम वन्दना। काकली प्रचार करिबु सकाळ 7:25। हेलो बारिपदा 8:15। दिन 12:00 चहला कार्यक्रमरे शुणिबे झुमर गीत। ସନ୍ଧ୍ୟା 6:00 ଭକ୍ତି ଗୀତ ସୁଗମ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6:15 ସୂଚନା ଓ ସମ୍ବାଦ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30। ରାତି 7:00 ଶୁଣିବେ ଆଦିବାସୀ ସଙ୍ଗୀତ। ଚାଷବାସ ପ୍ରଚାର କରିବୁ ରାତି 7:30। ରାତି 8:00 ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଗୀତ। ରାତି 8:30 ଆଲୋଚନା ଖଣ୍ଡିକାଶ ଆଲୋଚକ ଶଙ୍କର ଜେନା। ରାତି 10:30 ଶୁଣିବେ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଗୀତ। ଶୁଣିଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପ୍ରଚାର ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା। ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ ଆଜିର ଅଧିବେଶନ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇବୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରାତଃ 5:55। ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍।